एफएम 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सेवा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि यह कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर ये है आकाशवाणी देहरादून। सुबह के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन, अपनत्व का सार। वाचन स्वर विभूति भूषण भट्ट का है।
2: ममता जीव का दैवी गुण है जो सीधे और सपाट रूप से अपनेपन का बोध कराती है। शब्द का यथार्थ बोध मन की भावना सहित स्वार्थ, प्यार, मोह, स्नेह आदि के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन अपनेपन की सार्थकता ये है कि इसमें प्रेम की अजस्र धारा प्रवाहित होती है, जिसमें ममता प्रदर्शित करने वाला भी डूबता है और जिसके प्रति ममता प्रदर्शित की जाती है वो भी उस प्रेम की धारा में डूब जाता है। ये एक ऐसी मूल प्रवृत्ति है जो प्रत्येक प्राणी में सुप्तावस्था में विद्यमान रहती है, लेकिन जिसका हृदय सरल, तरल और कोमल होता है, जिसके हृदय में बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसके हृदय में अपने पन के बोध का आधिक्य होता है, उसके मन में ममता सदैव जागृत रहती है। इसके विपरीत संवेदना शून्य क्रूर कर्मियों के मन में ममता सुप्तावस्था में पड़ी रहती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की सोई हुई ममता जब जागती है तो अंगुलिमाल जैसा कठोर प्रवृत्ति का व्यक्ति भी सन्यासी बन जाता है। ममता दो रूपों में परिलक्षित होती है, व्यक्तिनिष्ठ और समष्टिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ ममता की सीमा संकुचित होती है, जहां व्यक्ति ममता का प्रदर्शन केवल अपने प्रियजनों के प्रति ही करता है वो व्यक्तिनिष्ठ ममता कहलाती है। व्यक्तिनिष्ठ ममता को मोह भी कहा जाता है। स्वार्थ पूरित ऐसी ममता का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऐसी ममता तो पशु पक्षी सभी में विद्यमान होती है। महत्वपूर्ण है समष्टिनिष्ठ ममता। ममता जब सीमा के बंधन को तोड़कर व्यापक रूप ग्रहण कर लेती है, ममता प्रदर्शित करने वाला संसार के सभी प्राणियों को प्रेम के बंधन में बांधकर अपना लेता है। संसार के किसी भी पीड़ित व्यक्ति के प्रति जब उसके हृदय में करुणा का बोध होता है और उसे दूर करने का जब वो मानसिक या शारीरिक प्रयास करता है, तो वहीं समष्टिनिष्ठ ममता प्रदर्शित होती है। इसी व्यापक ममत्व के वशीभूत होकर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने राज्य पत्नी पुत्र का त्याग कर सन्यास ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद ने दरिद्र नारायण की सेवा का व्रत लिया। मदर टेरेसा संपूर्ण विश्व की मां बन गई और संपूर्ण विश्व को अपनी ममता के आंचल में समेट लिया। यही ममता का वास्तविक रूप है। जब किसी पीड़ित या दुखी व्यक्ति को देखकर यदि दर्शक के हृदय में पीड़ा की ऐसी सहानुभूति उमड़े कि दर्शक के आंखों में आंसू की अविरल धारा प्रवाहित हो उठे, तो वही सच्ची ममता होती है। बुद्ध, विवेकानंद और मदर टेरेसा के साथ ऐसा ही हुआ था। ममता हृदय को जोड़ती, करुणा को जन्म देती है। इसका सीधा संबंध हृदय से होता है। ये बुद्धि और तर्क से परे है। इसका समष्टि रूप ही विश्व में विश्व बंधुत्व और अपनापन ला सकता है, जो विश्व कल्याण के लिए आवश्यक है।
0: अभी आपने सुना आज का चिंतन, अपनत्व का सार। वाचन स्वर विभूति भूषण भट्ट का था। आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 MHz पर अब प्रस्तुत कर रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मातृ वंदना के साथ, तो लीजिए सुनिए देशगान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देशगान। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं सुमिरन विघ्नहर्ता सुखकर्ता प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश का।

जैन भजन के साथ ही श्रोताओं, भक्ति संगीत का एक कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 6:25 हुए हैं। अब प्रस्तुत कर रहे हैं गांधी कथा। वाचन स्वर कल्पना पंकज का है।

समझा था कि कौम की सेवा में पैसे लेकर न करता। इन भेंटों में से मुवक्किलों को दी गई थोड़ी चीजों को छोड़ दें तो बाकी सब मेरी सार्वजनिक सेवा के निमित्त से ही मिली थी। फिर मेरे मन में तो मुवक्किलों एवं दूसरे साथियों के बीच कोई भेद न था। इन भेंटों में साथ ही 50 गिनियों का एक हार कस्तूरबाई के लिए था, पर वह वस्तु भी मेरी सेवा के कारण ही मिली थी, इसलिए वह दूसरी भेंटों से अलग न थी। इनमें से जिस सायंकाल को मुझे भेंटे मिली थी वह रात्रि मैंने पागल की तरह जाग कर बिताई। मैं अपने कक्ष में चक्कर काटता रहा, पर उलझन किसी तरह सुलझती न थी। सैकड़ों की कीमत के उपहारों को छोड़ना कठिन ज्ञात होता था, रखना उससे भी अधिक कठिन लगता था। हरि जी ने मुझको कच्चे धागे से बांध रखा है। वे जो जो उसे खींचते हैं त्यों त्यों मैं उनकी होती जाती हूँ। मुझे प्रेम की कटारी लगी है। मन प्रश्न करता, मैं संभवतः भेंटों को पचा पाऊं, पर मेरे बच्चों का क्या होगा, औरत का क्या होगा? उन्हें शिक्षा तो सेवा की ही मिलती है। उन्हें सदा समझाया जाता था कि सेवा के दाम नहीं लिए जा सकते। मैं आवास स्थल में कीमती गहने आदि रखता न था। सादगी बढ़ती जा रही थी। ऐसी स्थिति में सोने की घड़ियों का उपयोग कौन करता? सोने की जंजीरों एवं हीरे की अंगूठियां कौन पहनता? मैं उस समय भी गहनों गांठों का मोह छोड़ने का उपदेश औरों को दिया करता था। अब इन गहनों एवं जवाहरातों का मैं क्या करता? इस निर्णय पर मैं पहुंचा कि मुझे ये चीजें रखनी ही नहीं चाहिए। पारस जी, रुस्तम जी आदि को इन गहनों का ट्रस्टी नियुक्त करके उनके नाम लिखे जाने वाले पत्र का मसौदा मैंने तैयार किया एवं सवेरे औरत पुत्र आदि से राय करके अपना भार हल्का करने का निश्चय किया। मैं यह जानता था कि धर्मपत्नी को समझाना दुष्कर होगा, बच्चों को समझाने में जरा भी कठिनाई न होगी, इसका मुझे विश्वास था। अतः उन्हें इस मामले में अधिवक्ता बनाने का मैंने निश्चय किया। लड़के तो तभी समझ गए। उन्होंने कहा, हमें इन गहनों की आवश्यकता नहीं है, हमें यह सब लौटा ही देने चाहिए, एवं जीवन में कभी हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता हुई तो क्या हम स्वयं ने खरीद सकेंगे? मैं प्रसन्न हुआ। मैंने पूछा, तो आप अपनी माँ को समझाओगे ने? अवश्य अवश्य, यह कार्य हमारा समझिए। उसे कौन ये गहने पहनने हैं? वह तो हमारे लिए ही रखना चाहती है, हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, फिर वह हट क्यों करेगी? पर कार्य जितना विचार किया था उससे अधिक कठिन सिद्ध हुआ। भले आपको आवश्यकता न हो एवं आपके लड़कों को भी न हो, बच्चों को जिस रास्ते लगा दो उसी रास्ते वे लग जाते हैं। भले मुझे न पहनने दे, पर मेरी बहुओं का क्या होगा? उनके तो ये चीजें कार्य आएंगी ना, और कौन जानता है कि कल क्या होगा? इतने प्रेम से दी गई चीजें वापिस नहीं की जा सकती। पत्नी की वाग्धारा चली एवं उनके साथ अश्रुधारा मिल गई। बच्चे अटल रहे, मुझे तो डिगना था ही नहीं। धीरे से मैंने कहा, लड़कों को ब्याह तो होने दो, हमें कौन उन्हें बचपन में ब्याहना है? बड़े होने पर तो ये स्वयं ही जो होगा करना चाहेंगे करेंगे, एवं हमें कहाँ गहनों की शौकीन बहुएं खोजनी है। पर इतने में जो कुछ कराना ही पड़ा तो मैं कहाँ चला जाऊंगा? आपको जानती हैं, मेरे गहने भी तो आपने ही लिए हैं ना। जिन्होंने मुझे सुख से न पहनने दिए वह मेरी बहुओं के लिए क्या लाएंगे? लड़कों को आप अभी से बैरागी बना रहे हैं। ये गहने वापस नहीं दिए जा सकते, और मेरे हार पर आपका क्या अधिकार है? मैंने पूछा, पर यह हार आपकी सेवा के बदले में मिला है या मेरी सेवा की? कुछ भी हो, आपकी सेवा मेरी भी सेवा हुई। मुझसे आपने रात दिन जो मजदूरी करवाई वह क्या सेवा में शुमार नहीं होगी? मुझे रुलाकर भी आपने हर किसी को आवास स्थल में ठहराया एवं उसकी चाकरी करवाई, उसे क्या कहेंगे? ये सारे बाण तीर जैसे थे, इनमें से तो कुछ चुभते न थे, पर गहने तो मुझे वापस करने ही थे। बहुत सी बातों में से जैसे तैसे कस्तूरबा की सहमति प्राप्त कर सका। 1896 में एवं 1901 में मिली हुई भेंटें मैंने लौटा दी। उनका ट्रस्ट बना एवं सार्वजनिक कार्य के लिए उनका उपयोग मेरी या ट्रस्टियों की इच्छा के अनुसार किया जाए, इस शर्त के साथ वे बैंक में रख दी गई। इन गहनों को बेचने के निमित्त से कई बार पैसे एकत्र कर सका हूँ। आज भी आपात कोष के रूप में यह धन उपस्थित है एवं उसमें वृद्धि होती रहती है।
मुझे अपने इस कार्य

पर कभी पश्चाताप नहीं हुआ। दिन बीतने पर कस्तूरबाई को भी इसके औचित्य की प्रतीति हो गई। इससे हम बहुत से लालचों से बच गए। यह मत मेरा बना है कि सार्वजनिक सेवक के लिए निजी भेंटे नहीं हो सकती। मैंने इस प्रकार देश जाने के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में मॉरिशस द्वीप पड़ता था। वहां जलयान लंबे समय तक ठहरा था, इसलिए मैं मॉरिशस में उतरा एवं वहां की स्थिति की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर ली। एक रात्रि मैंने वहां के गवर्नर सर चार्ल्स ब्रूस के यहाँ भी बिताई थी। भारत पहुंचने पर थोड़ा समय मैंने घूमने फिरने में बिताया। यह सन 1901 का युग था। उस बरस की कांग्रेस कलकत्ते में होने वाली थी। दीनशाह एटल जी बादशाह उसके अध्यक्ष थे। बम्बई में जिस गाड़ी में सर फिरोज शाह मेहता रवाना हुए, उसी में मैं भी गया। मुझे उनसे दक्षिण अफ्रीका के बारे में बातें करनी थी। उनके डिब्बे में एक स्टेशन तक जाने की मुझे अनुमति मिली थी। उन्होंने तो विशेष सैलून का प्रबंध किया था। उनके शाही खर्च एवं ठाट बाट से मैं परिचित था। जिस स्टेशन पर उनके डिब्बे में जाने की मुझे अनुमति मिली थी, उस स्टेशन पर मैं उसमें पहुंचा। उस समय उनके डिब्बों में तब के दीन शाह जी एवं तब के चिमनलाल से तलवार बैठे थे। उनके साथ इन दोनों को सर की उपाधि बाद में मिली थी। राजनीतिक चर्चा चल रही थी। मुझे देखकर सर फिरोज शाह बोले, गांधी आपका कार्य पारना पड़ेगा। आप जो कहोगे सो प्रस्ताव तो हम पास कर देंगे, पर अपने देश में कौन से अधिकार मिलते हैं? मैं तो मानता हूँ कि जब तक अपने देश में हमें शक्ति नहीं मिलती, तब तक उपनिवेशों में आपकी स्थिति सुधर नहीं सकती। मैं तो सुनकर दंग ही रह गया। सर चिमनलाल ने हाँ में हाँ मिलाई। सर दीनशाह ने मेरी तरफ दयार्थ नजरिए से देखा। मैंने उनका उपकार माना। दूसरे स्टेशन पर जो ही गाड़ी खड़ी, मैं भागा एवं अपने डिब्बे में घुस गया। हम कलकत्ते पहुंचे। अध्यक्ष आदि नेताओं को नागरिक धूमधाम से ले गए। मैंने किसी स्वयंसेवक से पूछा, मुझे कहाँ चलना चाहिए? वह मुझे रिपन कॉलेज ले गया। वहाँ बहुत से प्रतिनिधि ठहराए गए थे। मेरे सौभाग्य से जिस विभाग में मैं था, उसी में लोकमान्य तिलक भी ठहरे हुए थे।

गांधी जी के इस प्रिय भजन के साथ ही गांधी कथा का आज का अंक यहीं पर संपन्न हुआ। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए कल्पना पंकज को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आपने सुनी गांधी कथा। वाचन स्वर कल्पना पंकज का था। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 6:40 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान।

संवत 1631 के चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्या नगरी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना आरंभ की थी। भक्तजन का विश्वास है कि श्री रामचंद्र की जन्म तिथि को सारे तीर्थ अयोध्या चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सभी अयोध्या नगरी आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम की कीर्ति और यश का गान करते हैं। कुपथ, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के छल प्रपंच और कपट दंभ आदि को भस्म करने के लिए श्री राम के गुणों की तुलना प्रचंड अग्नि से की गई है और उनका चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल स्निग्ध किरणों की भांति सबको सुख देने वाला है। तुलसीदास का निवेदन है कि जिस प्रकार विस्तार से भगवान शंकर ने पार्वती जी के प्रश्नों के उत्तर दिए थे, उसी प्रकार वो भी इस अद्भुत कथा की रचना करके उसे गाकर कहेंगे। भक्त कवि की विनय है कि जिसने ये कथा पहले कभी नहीं सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य ना करे, क्योंकि हरि की भांति हरि की कथा भी अनंत है।

अभी आप आनंद ले रहे थे श्री रामचरितमानस गान का। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिनांक 3 जुलाई 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण समय संबंधी जानकारी।

प्रातःकालीन सभा में अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे फिल्मी भजन। कार्यक्रम का समय रहेगा 7:10। उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार सुनिएगा 7:20 पर, 10:30 पर, 1:05 पर और 6:30 पर। गढ़वाली में इनका प्रसारण किया जाएगा 6:50 पर और कुमाऊनी में आप सुनेंगे 7:30 पर। पर्वतीय लोकगीतों के कार्यक्रम शैल संगीत में 7:30 पर सुनिएगा कंचन के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार देहरादून प्रस्तुत करेंगे 8:30 पर। सदाबहार फिल्मी गीत सुनिएगा 9:00।

0: कार्यक्रम अनुभव के अंतर्गत सुबह के 9:30 पर आज आप सुनेंगे डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त देहरादून से रमेश चंद्रा की बातचीत। AIR न्यूज हेडलाइंस का समय रहेगा सुबह 10:00, दोपहर 12:10, अपराह्न 3:00 और शाम 4:00। सुबह 10:02 पर हम प्रस्तुत करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। AIR न्यूज है। फिल्म संगीत का समय रहेगा सुबह के 10:11, दोपहर 1:15, शाम 7:40 और रात 8:30। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:35 पर आज आप सुनेंगे गुड्डू राणा के स्वर में जौनसारी लोकगीत। फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश को प्रसारित किया जाएगा सुबह 11:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:12 पर आज आप सुनेंगे लता मंगेशकर के स्वर में शब्द। हमारी बहनों का कार्यक्रम महिला जगत प्रस्तुत करेंगे दोपहर 12:30 पर। आज के अंक में होगा श्रीमती प्रेमलता सजवाण द्वारा काव्य पाठ। दोपहर 1:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। कार्यक्रम सैनिकों के लिए सुनिएगा दोपहर 2:30 पर। गाने नए तराने आप सुनेंगे अपराह्न 3:02 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शाम 4:02 पर आज आप आनंद ले सकेंगे सुंदरलाल गंधर्व द्वारा बांसुरी वादन का। ये प्रस्तुत करेंगे राग शुद्ध धनाश्री। कार्यक्रम एक कलाकार के अंतर्गत शाम 4:30 पर सुनिएगा फिल्म अभिनेता राजकुमार के कुछ चुनिंदा गीत। शाम 5:10 पर प्रस्तुत करेंगे हमारे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुनेंगे शाम के 5:45 पर। आज के अंक में होगी पर्यटन की नए संभावना साहसिक पर्यटन, इस विषय पर श्री ओपी बडोनी से विनय ध्यानी की बातचीत। ये थी केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में, हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा।

0: प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तस्य जापानस्य समकक्षीया साने ताकाइची इत्येषा पाकिस्तानात् सीमापारे आतंकवादं समेत्य सर्वेषु रूपेषु अभिव्यक्तिषु आतंकवादस्य हिंसक उग्रवादस्य च निन्दां कृतवन्तौ। भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनस्य संयुक्त वक्तव्ये द्वौ नेतारौ गतवर्षे अप्रैल मासस्य द्वाविंशति दिनांके जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम इत्यत्र जातम् आतंक्याक्रमणं कट्वा लोचितवन्तौ। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ हिन्द प्रशान्त क्षेत्रस्य उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं विस्तारयितुं प्रतिबद्धतां पुनरुद्घाटितवन्तौ।
1: आज भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से हैं। एक फ्री प्रॉस्परस और रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक हमारी साझा प्राथमिकता है। क्षेत्र की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक और मार्केट इकोनॉमीज के रूप में आज हमने कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। इनसे हम मिलकर पूरे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
0: भारत जापान विशेष सामरिक वैश्विक सहभागित्वस्य आधारस्तंभेषु अन्यतमार्थिक सुरक्षा प्रधानतायाः विषये भारत जापान देशौ परस्परं प्रतिबद्धतां पुनः दृढ़ीकृतवन्तौ। आर्थिक सुरक्षा सहकार विषये भारत जापान संयुक्त घोषणापत्रे अवदतां यत् आर्थिक सुरक्षा सहभागित्वं परस्पर विश्वासस्य सहभागी मूल्यानां संबद्ध हितानां च आधारेण वर्तते। उभयोः पक्षयोः समृद्धिः, सुरक्षा, आर्थिक भविष्यञ्च सुदृढतया परस्परं संबद्धमस्ति इति मान्यता अस्ति। अद्यतनीकृतस्य मुक्तस्य च इंडो पैसिफिक इत्यस्य तथा च म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इन द रीजन्स महासागर इति उपक्रमस्य समन्वयः उभयोः पक्षयोः कृते आर्थिक सुरक्षा सहकारं वर्धयितुम् आवश्यकं प्रोत्साहनं प्रददाति इति घोषिता अस्ति। लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला अद्य कोलकातायां पश्चिम बंगाल विधानसभायाः नवनिर्वाचित सदस्येभ्यः द्विदिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रमस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य कार्यक्रमस्य उद्देश्यं नवनिर्वाचितेभ्यः सदस्येभ्यः समिति व्यवस्था, वित्तीय निरीक्षणं, संसदीय विशेषाधिकाराः, विधायकेषु उदयोन्मुख आंकिकीयोपक्रमाः इत्यादीनां संसदीय विधायी कार्याणां विविध पक्षेभ्यः परिचय प्रदानं वर्तते। पंचायती राज मन्त्रालयः षोडश वित्तायोगस्य अनुशंसानां विषये विचारार्थम् अद्य नवदिल्ल्यां राज्यस्य पंचायती राज मन्त्रिणाम् एकां राष्ट्रिय कार्यशालाम् आयोजयति। कार्यशालायाः अध्यक्षतां केन्द्रीय पंचायती राज मन्त्री राजीव रंजन सिंहः, केन्द्रीय राज्य मन्त्रिणः प्रोफेसर एसपी सिंह बघेलस्य उपस्थितौ करिष्यति। कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मन्त्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति। वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते। सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां सम्पूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्रयात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति। तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं, प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88.3 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति। आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद एक संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का भी उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि इस संबंध में ममता बनर्जी और पार्टी नेता ऋणव्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे गए हैं। आयोग ने कहा है कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांधरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

ये भजन आपने सुना प्रदीप के स्वर में फिल्म वामन अवतार से। गीत प्रदीप का था और संगीत अविनाश व्यास का। अब सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म काजल से ये भजन, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है रवि ने।

आइए अब सुनते हैं मन्ना डे को फिल्म सीमा से। इस भजन को लिखा है शैलेंद्र ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: फिल्मी भजन अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी देहरादून से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:20 होने को हैं। अब सुनिएगा प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे।

0: पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। पिथौरागढ़ में मनरेगा के तहत 100 कार्य दिवस पूरे करने वाली 8 महिला श्रमिकों को सम्मानित किया गया और देहरादून में जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत जापान संबंध बहुत विशेष है और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी की सफलता के कई शानदार उदाहरण मौजूद हैं। नई दिल्ली में आज भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच में श्री मोदी ने कहा कि जापान की विशेषज्ञता और निवेश तथा भारत की गति और व्यापकता एक साथ मिलने पर पूरी दुनिया को लाभ होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और जापान ने आर्थिक सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों पर समझौते किए हैं। यह समझौते दोनों देशों की साझेदारी को भविष्य के अनुकूल और असीमित बनाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है।
1: आर्थिक दुनिया सप्लाई चेन में रुकावटें, ट्रेड में अनिश्चितता और ग्लोबल डिमांड में गिरावट से जूझ रही है, लेकिन जैसे कहा जाता है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। भारत विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। इतना ही नहीं, पिछले 12 वर्षों में हम भारत में काइजन फिलोसॉफी यानी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट अपनाते हुए अपने इकोनॉमिक डीएनए को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के समय में सामूहिक विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है और भारत जापान की द्विपक्षीय साझेदारी समय की कसौटी पर खरी उतरी है। श्री मोदी ने कहा कि जापान की सटीक प्रौद्योगिकी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमताओं का संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति प्रदान करेगा। नागर विमानन मंत्रालय ने देशभर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से इस उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आवर्जन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करना है, ताकि जोखिम वाले यात्रियों का शीघ्र पता लगाया जा सके। बागेश्वर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने कौसानी और गरुड़ क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान दूध, पनीर और दालों के 6 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। उपायुक्त कुमाऊं मंडल खाद्य सुरक्षा डॉक्टर राजेंद्र सिंह कठायत, सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा बागेश्वर और खाद्य सुरक्षा अधिकारी बागेश्वर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए विमान ने विभिन्न दुकानों से दूध, पनीर और दालों के नमूने एकत्र किए। सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया गया है।
2: बागेश्वर नगर में जो भी खाद्य प्रतिष्ठान है उनका आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा उसमें संदेह के आधार पर एक लगभग आधे दर्जन से अधिक खाद्य पदार्थों के नमूने इकट्ठे किए गए, जिनको जो है जांच हेतु प्रयोगशाला भेज दिया गया है। अगर उन नमूनों की रिपोर्ट में वो नमूने असुरक्षित पाए जाते हैं या उनमें कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता जो भी उसमें सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा मेरे साथ कौसानी स्थित जो भी वहाँ के होटल्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, उसमें उत्तराखंड सरकार के आदेश पर तथा उनके निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा से संबंधित जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कौसानी के लगभग 25 से लेकर 30 होटल व्यवसायियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
0: उपायुक्त कुमाऊं डॉक्टर सिंह ने कहा कि जनता के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करने की अपील की है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड विण में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी डॉ सैनी ने बताया कि नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों को भी पहले की तरह रोजगार मिलता रहेगा और योजना को लेकर किसी भी तरह की भ्रांति में आने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने की अपील की ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवार इसका लाभ उठा सकें। कार्यक्रम में मनरेगा के तहत 100 कार्य दिवस पूरे करने वाली 8 महिला श्रमिकों को सम्मानित किया गया, साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया।
4: इसके अंदर जो मुख्य बदलाव है जो एमजी नरेगा के मुकाबले, उसमें एमजी नरेगा के अंतर्गत जो है 100 दिन का रोजगार जो उपलब्ध कराया जाए, जिसको बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार यहां पर कर दिया गया। साथ ही साथ इसमें वेज रिवीजन भी अभी की गई है। हमारे राज्य

0: उनकी जनसंख्या है वो भी काफी मात्रा में बड़ी है। और साथ ही साथ इसके अंदर एक पीक एग्रीकल्चरल सीजन का प्रोविजन किया गया है, यानी कि जिस समय पर जो है उगाई और जो आपकी रुपाई का सीजन जो होता है, जिसमें ज्यादा काम होता है और एग्रीकल्चर लेबर हमारी सारी उसमें एंगेज रहती है, उस सीजन में नरेगा के काम जो है जो वीवीजी राम जी के अंतर्गत नहीं अंडरटेक किए जाएंगे, ताकि जो है जहाँ पर भी मजदूरों को ज्यादा लाभ मिलता है वो उसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे जनपद के अंदर 60 काम जो है इसके अंतर्गत प्रारंभ कर दिए गए हैं 1,32,00,000 की लागत के।
1: देहरादून में जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने समिति के गठन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन जारी कर दिया है। इस पर आमजन से 4 जुलाई तक आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज नोडियाल ने बताया कि अंतिम परिसीमन के अनुसार जिले की ग्रामीण जनसंख्या 5,48,851 निर्धारित की गई है। इसके आधार पर जिला पंचायत के 30 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनमें से अपने मध्य से 10 सदस्यों का चयन जिला योजना समिति के लिए किया जाएगा। नगर निकाय क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 10,49,348 है। इसके आधार पर जिले के 7 नगर निकायों में 202 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनमें से अपने मध्य से 20 सदस्यों का निर्वाचन जिला योजना समिति के लिए किया जाएगा। और एक नज़र आज के मौसम पर। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र गति से अति तीव्र और दौर तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने लोगों से संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने तथा यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। भारत और जापान ने आर्थिक साझेदारी ढांचा एवं सैन्य उपकरणों को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक रक्षा समझौते समेत कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा को आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। नवोदय टाइम्स लिखता है, भारत जापान में रक्षा, एआई, ऊर्जा समेत कई समझौते। इसी खबर पर हिन्दुस्तान समाचार पत्र ने शीर्ष दिया है, सुरक्षा समृद्धि में साथ देगा जापान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में खेलों के ढांचे को मजबूत करने और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाने की खबर को सभी समाचार पत्रों ने प्राथमिकता दी है। दैनिक जागरण मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है, पदक विजेताओं को नौकरी देने की प्रक्रिया में लाएं तेजी। अमर उजाला ने शीर्षक दिया है, राज्य में बनेगी नई खेल नीति। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के विकास की गति और जापान की विशेषज्ञता वैश्विक आर्थिक वृद्धि के लिए प्रेरक शक्ति का काम करेगी। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। पिथौरागढ़ में मनरेगा के तहत 100 कार्य दिवस पूरा करने वाली 8 महिला श्रमिकों को सम्मानित किया गया और देहरादून में जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। सुबह के 7:30 हो रहे हैं। समय है पर्वतीय लोकगीतों के कार्यक्रम शैल संगीत का। कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे गढ़वाली लोकगीत। गायक कलाकार हैं कंचन।

0: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
1: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
0: सच में, क्या क्या है उसमें?
1: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
2: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
4: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
3: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
4: ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
3: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
4: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शैल संगीत। कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं गढ़वाली लोकगीत कंचन के स्वर में।

0: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242। सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
2: आकाशवाणी देहरादून से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप इस समय सुन रहे हैं पर्वतीय लोकगीतों का कार्यक्रम शैल संगीत। और कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं कंचन के स्वर में गढ़वाली लोकगीत।

0: कार्यक्रम शैल संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कंचन के स्वर में गढ़वाली लोकगीत। FM 100.5 MHz पर यह है आकाशवाणी देहरादून। सुबह के 8 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श वर्ष से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को लिए बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।

0: हम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन पहलगाम और बालतर रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्लाह हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मेक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे,

गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, पैलाग श्रोताओं, लंबे इंतज़ार के बाद एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून लेकर, माधुरी दानू पुंडीर। श्रोताओं, बरसात की तेज़ बौछारें एक ओर तो हम सभी को गर्मी और झुलसाती उमस से राहत देती है, तो वहीं दूसरी ओर यही बारिश आम जनता के लिए आफत बन जाती है। जल भराव और बंद नालियां यातायात बाधित करती हैं, जिससे पूरे शहर वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन श्रोताओं, क्या आपने सोचा है कि जल भराव और नालियां बंद होने का क्या मुख्य कारण है? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग्स, यही है मुख्य कारण। पॉलिथीन केवल नालियां ही चोक नहीं करती, ये नदियों में पहुंचकर पानी को प्रदूषित भी करती हैं और कई बार तो गाय, मछलियां और दूसरे जानवर इसे खा लेते हैं, जिससे उनकी जान तक चली जाती है। हम बाजार जाते हैं तो सब्जियां प्लास्टिक थैलियों में लाते हैं, कोई सामान लाते हैं तो वो भी प्लास्टिक थैलियों में लाते हैं और उसके बाद उन थैलियों को हम कूड़े में फेंक देते हैं। फिर उससे हम ये नहीं देखते कि ये गीला कूड़ा है या सूखा कूड़ा है, बस फेंक देते हैं, जहां मन करे वहीं फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तो

यही चलता है ना कि कूड़ा उठाने वाला आएगा और फिर वही अपने आप गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा ये अलग अलग डिवाइड खुद करेगा। लेकिन श्रोताओं, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी की भी जिम्मेदारी है कि गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डब्बे में डालें और पॉलीथिन को कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि पॉलीथिन सैकड़ों सालों बाद भी मिट्टी में नहीं मिलता। तो सोचिए, ये हमारी प्रकृति, हमारी मिट्टी, हमारे पर्यावरण, हमारे जीव जंतु और मानव जीवन के लिए कितना खतरनाक है, ये सोचने की बात है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जा रहा है, तो क्यों ना आज से ही हम अपने घर से पहल शुरू करें। यदि हर घर से रोज एक पॉलीथिन का प्रयोग कम होगा तो सोचिए, साल भर में सैकड़ों पॉलीथिन इस्तेमाल होने से बच सकेगा और पर्यावरण को बचाने में हम सब थोड़ा सा सहयोग कर पाएंगे। तो श्रोताओं, कार्यक्रम में इस बारे में और भी बातें होंगी। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है पहले गीत का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में क्या कुछ है खास, तो आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय पॉलिथिन बैग मुक्त दिवस पर आइडियल फाउंडेशन जोधामबरी सस्टेनेबल सॉल्यूशन संस्था की को फाउंडर इना बहुगुणा से होगी बातचीत, साथ ही डेंगू के कारण, लक्षण और उपचार को लेकर जानकारी साझा करेंगे फिजिशियन डॉक्टर गोपाल जी शर्मा। लेकिन श्रोताओं, उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के क्षेत्रीय अखबारों की सुर्खियों पर। 12 जुलाई से 4 अगस्त के बीच लॉन्च होगा देश का पहला निजी रॉकेट विक्रम 1। राज्य में बनेगी नई खेल नीति, पदक विजेताओं में अधिकतर को खेल विभाग में मिलेगी नौकरी। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के तबादलों पर राज्य सरकार से मांगा जवाब। बद्रीनाथ हाईवे 11.5 घंटे तक रहा बंद, नदियां उफनाई। UJVNL कर्मचारियों को मिलेगा समान कार्य का समान वेतन। वैश्विक रोजगार योजना से 123 युवाओं को विदेश में मिला रोजगार। राष्ट्रीय स्तर का खेल मैदान तैयार, CM करेंगे उद्घाटन। और अब खबर मौसम की, तो देहरादून में आज भी बारिश के आसार। तो ये तो था प्रदेश क्षेत्रीय समाचार पत्रों की अखबारों की सुर्खियां। वक्त हो चला है श्रोताओं यहां एक और खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक का।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, बरसात का मौसम शुरू होते ही डेंगू के केसेस में इजाफा होने लगता है, तो आइए जानते हैं डेंगू क्या है और बरसात में ये क्यों बढ़ता है। इस बारे में सीधे बात करते हैं फिजिशियन डॉक्टर गोपाल जी शर्मा से। इना जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या डेंगू एक वायरल बीमारी है और ये एडीज मॉस्किटो होता है ना, इसके अंदर ये वायरस उसके अंदर ही रहता है और जब ये मच्छर किसी भी इंसान को काटता है तो तब ये वायरस उसके ब्लड में चला जाता है। तो बरसातों में क्या होता है, पानी इकट्ठा होता है जगह जगह और उसमें जो है ये लार्वा जो मच्छर के होते हैं वो पलने लगते हैं उसमें। इस कारण ये बीमारी बरसातों में ज्यादा पाई जाती है।
0: इसके जो लक्षण हैं वो मरीजों में किस तरह से दिखाई देते हैं?
1: सबसे पहले इसको बोन ब्रेकिंग फीवर भी कहते हैं लेमैन भाषा में। तो सबसे पहला जो लक्षण है ये ऐसा दर्द जिसमें के शरीर बिल्कुल टूटने वाला, जैसे बोन ब्रेकिंग यानी हड्डियां ऐसा लगता है जैसे टूट रही हैं। और बुखार तो है ही, बुखार ऐसा होता है जो कि कंट्रोल नहीं होता आसानी से, बहुत हाई ग्रेड फीवर 104 105 मोस्टली लोग जो एडमिट होते हैं वो हाई ग्रेड फीवर से होते हैं। दूसरा लक्षण जो बहुत ज़्यादा परेशानी का होता है उसमें सर में दर्द और शरीर में खुजली होना और कुछ चकत्ते टाइप के बन जाते हैं, रेड निशान जिनको हम हेमरेज बोलते हैं। वो क्यों होते हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी होने से या हमारी कैपिलरीज में जो प्रॉब्लम आती है तो ये स्किन के ऊपर आता है। फिर बॉडी एक होना होता है और फिर सडन वीकनेस, कमज़ोरी, भूख कम लगना, इस तरह की चीज़ें होती हैं। यानी जनरल वायरल फीवर जैसे ही सिम्टम्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कुछ लक्षण छोटे से होते हैं जो अलग उसको कर सकते हैं उनको।
0: जी, तो मरीजों में लगभग मैक्सिमम कितना या मिनिमम कितना प्लेटलेट्स होना चाहिए?
1: देखिए, नॉर्मल जो प्लेटलेट्स होता है हमारी बॉडी में 1.5 लाख से एंड 4.5 लाख के बीच होता है, उससे कम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है, 4.5 से ज़्यादा है तो उसके रीजंस अलग होते हैं। तो प्लेटलेट्स ये किसी भी वायरल डिजीज़ में कम हो सकते हैं, ऐसा नहीं खाली डेंगू में होते हैं, बट डेंगू का वायरस जो है वो कुछ ज़्यादा लेवल पे इसको कम करता है प्लेटलेट्स को। और लोग सबसे पहले इसी से ही डरते हैं, लोगों के मन में अगर डेंगू की पहचान है तो प्लेटलेट्स की कमी, लेकिन इससे जो पैनिक होता है वो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानी का कारण है। लेकिन ये समझने की बात यह है कि 10,000 से नीचे जब प्लेटलेट्स होता है तब चढ़ाने का इंडिकेशन है, एज़ पर जो टेक्स्ट बुक्स हमारी मेडिकल बुक्स बोलती हैं 10 से नीचे ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम लोग 20,000 से नीचे पे भी थोड़ा सा प्रिकॉशनरी प्लेटलेट्स को चढ़ा देते हैं। ये एक फिनोमेना है, ये इनका पैथोफिजियोलॉजी जिसको कहते हैं, वायरस का जो एक तरह का एक्शन है जो प्लेटलेट्स को गिराता है और उसके कारण उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं।
0: तो सर, अब उपचार की बात करेंगे, तो उपचार किस तरह से संभव है डेंगू का?
1: तो उसका तरीका ये है जो शुरू में हमने बात बताई कि जो मच्छर है एडीज मच्छर, ये एक तो दिन के समय पनपता है और ये एक साफ पानी में होता है, उसकी हाइट बहुत ऊपर तक नहीं जा पाता ये मच्छर। तो हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि इस मच्छर के कटने से बचा जाए, काट ना पाए वो हमें ना। तो पहले तो मच्छर का प्रजनन ही ना हो, पैदा ही ना हो ये मच्छर। तो इसके लिए क्या होता है, पानी जगह जगह जो इकट्ठा है उसको हटाया जाए, या अगर पानी है भी तो उस पर छिड़काव करा जाता है और इसका केरोसिन का या और कई तरह के ऑयल्स होते हैं। दूसरा, मच्छर के कटने के लिए हम डिफरेंट टाइप की जो स्किन पे लगाने की चीज़ें हैं जो रेपेलेंट्स होते हैं वो यूज़ करने चाहिए। तीसरा ये कि जो मच्छरदानियाँ होती हैं मॉस्किटो नेट, उसका यूज़ करना चाहिए। तो हमें ओवरऑल मच्छर से किसी तरह अवॉइड करें तो ये बीमारी होगी नहीं। दूसरी चीज़ ये कि एक बार हो गई अगर इसका, वो कहलाता है ट्रीटमेंट, एक बार मच्छर वायरस आ गया बॉडी के अंदर तब क्या करना है। ये एक नॉर्मल वायरल फीवर की तरह चलती है बीमारी, 7 to 10 days का टाइम है इसका। और इसमें सेम लक्षण आपको बताई दिए थे, उसमें बस हमें ये ध्यान देना है कि ये जो डेंगू है तीन तरह के फॉर्म है बीमारी के। एक तो है कि सिंपल फीवर, वो फीवर की तरह होगा और चला जाएगा। सेकेंड होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, यानी ब्लीडिंग होगी, इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे और ब्लीडिंग होगी, वो बहुत डेंजरस फॉर्म है, उसमें पेशेंट आईसीयू तक भी जाता है, उसे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसमें कहता है शॉक, पेशेंट इसमें बीपी एकदम गिर जाएगा, शॉक में चला जाएगा। और ये दोनों चीज़ें लाइफ थ्रेटनिंग है, इसके लिए टाइमली डिटेक्शन समय से पता चल जाना चाहिए पेशेंट का कि ये इस स्थिति में आ रहा है, तो उसको आईसीयू में रख करके उसका ट्रीट किया जाता है। लेकिन सब चीज़ पॉसिबल है ट्रीट करना यदि समय से मरीज़ आए। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि प्लेटलेट जो गिरने का टाइम है वो बुखार से 5वें दिन से होता है, तो 4थे 5वें दिन के बाद प्लेटलेट्स की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। 3-4 दिन प्लेटलेट्स देख लो, उसके बाद अगर वो ठीक हो रही है, बढ़ रही है, तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो होते हैं उनमें एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट इसका कोई क्लियर कट ट्रीटमेंट नहीं है अब तक, कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं बनी है इसके अगेंस्ट, तो केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट है डेंगू का जो भी है।
0: डेंगू के जो मरीज हैं उनको खान पान के लिए क्या उनका क्राइटेरिया रहता है?
1: सॉफ्ट डाइट एडवाइस करते हैं क्योंकि इसमें बहुत गैस्ट्राइटिस होने का डर होता है, तो लिक्विड एंड सॉफ्ट डाइट दी जाती है। और एडमिटेड पेशेंट जो होते हैं तो उनको तो फ्लूड्स ही दिए जाते हैं, आईवी फ्लूड्स होते हैं, उनसे ही उनको ठीक किया जाता है।
0: तो डॉक्टर गोपाल जी शर्मा, हमसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो उम्मीद है श्रोताओं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर।

0: इस खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस यानी कि इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे की। तो इस बारे में आइए, हमसे और जानकारी साझा करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं वेस्ट मैनेजमेंट पर कार्य कर रही संस्था आइडियल फाउंडेशन जो दाम्बरी सस्टेनेबल सॉल्यूशन की को फाउंडर इना बहुगुणा, और जानते हैं इनसे कि उनकी संस्था बैग प्लास्टिक बैग मुक्त भारत को बनाने में किस तरह से कार्य कर रही है। इना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में।
1: थैंक यू। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम है ऑन ग्राउंड या फिर एट द सोर्स सॉर्टिंग, क्योंकि प्लास्टिक के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम 7, 8, 9, 10 तक पहुँचने वाले हैं टाइप्स में। मल्टीलेयर प्लास्टिक अलग होता है, जो आपके चिप्स के पैकेट होते हैं वो बहुत मुश्किल होता है रिसाइकल करना। आपके जो पॉलीथिन्स जिसमें आप सब्जी वगैरह लेते हैं वो अलग टाइप का प्लास्टिक होता है। फिर आपका पेट बॉटल होता है जिसमें पानी आता है या कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, वो अलग टाइप का प्लास्टिक होता है। और हमने ये देखा है कि यूजुअली लोग इन सारे प्लास्टिक्स को मिक्स करते हैं। अभी तो हम वेस्ट भी इसी में मिला देते हैं कि हमने चाय पत्ती भी उसी पैकेट के ऊपर डाल दी और सब चीज़ें भी हमने कर रहा है वो भी उसी डस्टबिन में डाल दिया। तो पहले तो अपील यही है लोगों से कि आप अपना ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट अलग करें। फिर अगर आप उसमें भी जो रिसाइकलेबल है, जैसे पेट बॉटल्स हैं, ग्लास है, स्टील है, वुडन है, जो अच्छे से रिसाइकल हो सकता है उसे अलग करें। मल्टीलेयर प्लास्टिक को एक तरफ एक पैकेट्स में रखें और जो अदर प्लास्टिक है उसको एक तरफ, क्योंकि इनकी रिकवरी बहुत मुश्किल है। जैसे ही वो लैंडफिल पहुंच जाते हैं या जैसे ही वो मिक्स हो जाते हैं, वो गीले कूड़े से मिल जाते हैं और ये तो कभी डिकम्पोज नहीं होते। गीला कूड़ा डिकम्पोज होना स्टार्ट होता है, स्मेली हो जाता है, ये कंटामिनेट हो जाते हैं। अगर आप मान लीजिए अपने अपने चिप्स के पैकेट के अंदर अपना एक एप्पल खा के डाल दिया, एक फिर थोड़ी देर में केला खाया उसी में स्टफ कर दिया, आप सोच रहे हैं कि आप अपना कूड़ा एक तरफ पैक कर रहे हैं। अब इमेजिन कीजिए अंदर वो कूड़ा सड़ रहा है। अब वो प्लास्टिक कूड़ा सड़ने नहीं देगा, उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल है, फिर क्लीन करके उसको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल है। तो फर्स्ट अपील और फर्स्ट स्टेप है जब आपके घर में ही प्लास्टिक अलग हो जाए और वेट वेस्ट अलग हो जाए। हमें लोगों से ये भी कंप्लेन आती है कि जब आप कलेक्ट करते हैं आप तो मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब भी कलेक्ट करते हैं आप देखेंगे कि वो लोग खोल के निकालना चाहते हैं कि जो भी रिसाइकल हो सकता है। तो अंदर जो भी स्पेस है उसमें सब कुछ रिसाइकलेबल अलग निकलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता है। एक पूरी कम्युनिटी है जो इस वेस्ट पे डिपेंडेंट है। एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग इससे इनकम बनाते हैं। इस मैंने उनके साथ ऑलमोस्ट 4 साल काम किया है बैंगलोर कर्नाटका में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और बहुत हार्ट रेंचिंग भी होता है। कभी कभी देख के दुख हो रहा होता है कि जब वो वेस्ट में घुस के जो हमारे लिए कुछ भी नहीं है और वो उसको निकाल निकाल के प्लास्टिक की बॉटल्स निकाल रहे हैं। एक बार मैं एक से बात करी थी तो उन्होंने कन्नड़ा में ये कहा, फिर मेरे साथ जो थे वो जो ट्रांसलेट कर रहे थे वो रोने लगे। वो कह रहे कि जब हम घर पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले अपने कपड़े उतार के नहाते हैं, हम अपने बच्चों को नहीं पकड़ते हैं। इट इज वेरी डिफरेंट जब हम घर पहुंचते हैं। हम जब अपने घर पहुंचते हैं हम अपने बच्चों को पकड़ते हैं, वो नहीं करते हैं ऐसा। तो बहुत डिफिकल्ट काम कर रहे हैं और उस प्लास्टिक की रिकवरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना वो आपके रिवर्स में जा रहा है, उसके बाद ओशियन में जा रहा है, ओशियन बॉर्न प्लास्टिक हो जा रहा है, फिर वो आपकी फिशेस के अंदर है, वो आपके जितनी भी मरीन है वो उसके अंदर है, एंड इट इज इम्पैक्टिंग यू। अब इतना प्लास्टिक है ओशियन के अंदर कि आप उसको 6 times अर्थ को रैप कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्लास्टिक से डील करने के लिए पहले उसको एट द सोर्स सॉर्ट करें और फिर वो उसको सही जगह पहुंचाएं जहां वो रिसाइकल हो सकता है।
0: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण को भी दूषित कर रहा है। और एक तरफ से हम बात कर रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की, लेकिन जो पॉलिथिन है पूरी तरह से एक एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने में एक अहम भूमिका निभा रहा है।
1: अगर आप प्लास्टिक की सोच देखें, जब वो स्टार्ट हुआ तो सोच तो ये थी कि हम पेड़ बहुत काट रहे थे और हमें उसे रिप्लेस करना था कि एक ऐसी चीज से जो लंबा चले। फिर हम उस प्लास्टिक पे आ गए जो सिंगल यूज है। अगर आप ये सोचें कि आप प्लास्टिक को एकदम से खत्म कर देंगे सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में प्लास्टिक पार्ट है, आपके स्विच बोर्ड हैं, आपके फोन है, पर वो लंबा चल रहे हैं। पर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, आपने चिप्स खाया वो चिप्स का पैकेट फेंक दिया है ना, तो उस प्लास्टिक का हम कैसे डील करें। जो पॉलिथीन जो सब्जी वाले दे रहे हैं उस प्लास्टिक को हम कैसे डील करें कि जो सिर्फ एक बार यूज हो रहा है फिर दोबारा यूज नहीं हो रहा है, उसकी शेल लाइफ भी कम है। अगर आप उसमें खाना रखते हैं आपके अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स जा रहे हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स तो ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर गए हैं है ना, तो आप कैसे इस चीज को रोकेंगे। काफी सारी जगह जहां रिवर्स नहीं है वहां प्लास्टिक फॉरेस्ट में डंप होता है। वेस्ट मैनेजमेंट तभी हो सकता है जब ये सेग्रीगेशन हो, दुनिया 12 या 8 लेवल पे सेग्रीगेशन करती है, और हम अभी ड्राई और वेट पे हैं. न्यू वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2026 आने वाली है, उसमें हमें 8 या 4 टाइप्स तो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा, और अभी हम 2 भी नहीं करते हैं. तो अभी हम बहुत पीछे हैं कि हम सिर्फ सेग्रीगेशन सोचें. अभी तक हमारा जो ये थ्योरी ऑफ चेंज में होता है कि बिहेवियरल चेंज कब आता है, तो हम ये मानते हैं कि यंगर जनरेशन से सिखाया जाए तो फिर 4th जनरेशन जो होगी उस यंगर जनरेशन की, तब बिहेवियरल चेंज आएगा कि आपका हाथ सीधे ही ड्राई वेस्ट के उसमें गया, आपको पता है कि आपका माइंड कैसे चलता है. काफी स्ट्रगल है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये सोचें कि हम क्या करें और या इसको डील कैसे करें.
2: तो हमारे जितने भी लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, वो लोग किस तरह से सहयोग कर सकते हैं पॉलिथीन फ्री इंडिया को बनाने में?
1: मेरे 2 सजेशंस हैं. मेजर ये है कि हम बहुत हाईटेक हो चुके हैं, ऐसा आप प्लीज उस वेस्ट के बारे में जानें कि उसमें क्या कॉम्पोजिशन है. हम स्ट्रगल कर रहे हैं मल्टीलेयर प्लास्टिक के साथ, उसके लोग बेंचेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके वुड बोर्ड्स बना रहे हैं, उसके इंसुलेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली ओनली थिंग विच कैन सॉल्व इज बैन ऑन मल्टीलेयर प्लास्टिक. उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है मल्टीलेयर प्लास्टिक के लिए. आप उसको अपसाइकिल कर सकते हैं, पर आप उसको रिसाइकिल कर ही नहीं सकते. द सेकेंड इज, अगर आप छोटी कम्युनिटी में हैं या कम्युनिटी ग्रो करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करें. आप यू कैन आस्क अस टू कम एंड डू द अवेयरनेस, कि हम बताएं कि आपके घर के जो वेस्ट हैं आप उन्हें कैसे मैनेज करें, या जो आपको लगता है कि आपके यहाँ जो वेस्ट पिक करने आ रहे हैं वो अच्छे से सेग्रीगेशन नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ मिक्स कर रहे हैं और आप अलग कर रहे थे, तो हम उसमें हेल्प कर सकते हैं. जो भी ब्रांड्स के फूड पैकेजिंग आ रहा है, आपकी चटनी बच जाती है, आप चटनी समेत ही फेंक देते हैं, आप उसको एक हल्का वॉश करके डैम्प कर दें. इसमें से जो भी पनीर खाया या जो भी खाया आपने, उसको हल्का रिंस करके फेंक दें. अपनी हेल्थ के लिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्थ के लिए, अपने फैमिली की हेल्थ के लिए, आई थिंक यू शुड अवॉइड स्टोरिंग एनीथिंग इन प्लास्टिक. यूज क्लॉथ बैग एज मच एज पॉसिबल.
2: बिल्कुल. और शुरुआत अगर हम खुद से करें तो फिर कहीं ना कहीं समाज में भी सुधार आएगा. तो हमसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए इना बहुगुणा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: थैंक यू सो मच.

जी हाँ श्रुतो, बिल्कुल हमारे भी जाने का हमारा भी जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि समय की घड़ी हमें इशारा कर चुकी है। तो आज कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी कि माधुरी दानू पुंडीर को दें कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। कल फिर हाजिर होंगे एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देहरादून।

कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बज रहे हैं। अब आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत।

किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म गोलमाल का ये गीत। श्रोताओं, आपने सुना अभी, ये एक गाना नहीं है बल्कि ज़िंदगी का एक गहरा दर्शन है। जो वक्त अभी हमारे पास है वही सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि अगला पल कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। खुशियां हो या गम, लोग हो या रिश्ते, सब समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए तो हर लम्हे को महसूस करना बहुत ज़रूरी है। वक्त रुकता नहीं, इसलिए प्यार, मुस्कान और अपनेपन को कभी टालना नहीं चाहिए। जो कहना है आज कह दीजिए, जो जीना है आज जी लीजिए। सदाबहार फिल्मी गीतों के सफर में आगे बढ़ रहे हैं और आपको सुनवा रहे हैं अब आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म महल से ये गीत। बोल हैं आनंद बख्शी की और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

अपनी महफिल में जिसे चाहें बुला सकते हैं आप, हम भला क्या हैं सितारों को झुका सकते हैं आप।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है, ये रात प्यासी है।

प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि समझ, इंतजार, त्याग और समर्पण का एहसास है। प्यार का फलसफा शब्दों में नहीं मिलता, ये उन लोगों की आंखों में लिखा होता है जिन्होंने किसी को खोकर भी उससे मोहब्बत करना नहीं छोड़ा। यही आप तक गीत के जरिए पहुंच रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दुनिया से। संगीत शंकर जयकिशन का है।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म जंजीर से। गीत को बोल दिए थे गुलशन बावरा ने और संगीत था कल्याण जी आनंद जी का। आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार को फिल्म एक बार मुस्कुरा दो से। गीतकार हैं इंदीवर और संगीत है ओपी नैयर का।

श्रोताओं, एक नाव बिना पतवार के नहीं चलती। उसी तरह सिर्फ हाथ की लकीरों पर बैठने से कुछ नहीं मिलता। जीवन में ना असली बदलाव, असली जादुई बदलाव अगर हम कहें तो वो हमारी कोशिशों से ही आते हैं। जीवन के सबसे बड़े सवाल, किस्मत या मेहनत, इस सवाल का जवाब देता है कार्यक्रम का हमारा ये अंतिम गीत, जो हमें सिखाता है कि लकीरें सच नहीं होती, असली सच इंसान की कोशिश और हौसला है। आप तक पहुंच रहा है फिल्म विधाता से सुरेश वाटकर की आवाज में ये गीत। शब्द रचना आनंद बख्शी की है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ सदाबहार फिल्मी गीतों का एक कार्यक्रम संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। सुबह के 9:30 होने को हैं। अब प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम अनुभव के अंतर्गत डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त देहरादून से रमेश चंद्रा की बातचीत।
1: श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अशोक कुमार पांडे को। आप आयुक्त हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय देहरादून के। डॉक्टर अशोक पांडे साहब, कार्यक्रम आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
1: आपकी जो सार्वजनिक सेवा का सफर है, यह कैसे शुरू हुआ?
2: मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी से स्नातक हूँ कृषि विज्ञान में, और उसके बाद फिर मैंने अपना जो स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएट किया वो एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक्स एंड उस समय कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो कुछ भी था, जब आज के जैसे कंप्यूटर नहीं था उस समय, वो मैं कर रहा था अपना। इसके बाद क्या किया जाए, तो एक तो हमने IGDR करके एक इंस्टीट्यूट होता है मुंबई में, इंदिरा गांधी डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी परीक्षा दी और उसके PhD में हमको दाखिला मिलने की उम्मीद हो गई। तो हमने कहा इस बीच जो है बचा हुआ समय जिसमें मास्टर्स थीसिस लिखनी है और वो करना है, तो कोई कंपटीशन सब लोग देते हैं, यूनिवर्सिटी में माहौल रहता है। तो देखा कुछ लोग हमारे सीनियर सेलेक्ट भी हुए थे, उनके देख के भी थोड़ी प्रेरणा थी। मेरे फादर जो थे वो स्टेट सर्विसेज में थे, वो भी थोड़ा एक प्रेरणा का वो था कि भाई। और उस समय late 1980s में सरकारी नौकरी का जो है चाहत काफी लोगों में होती थी, तो हमने भी कहा कि हम परीक्षा देते हैं। हमने सिविल सेवा भरा और हो गया चयन। 1991 में मैंने सिविल सेवा UPSC की परीक्षा दी थी और 92 सन में मैं कस्टम हाउस कलकत्ता में चला गया था। मैंने अपना फाउंडेशन कोर्स हैदराबाद से किया था पुलिस अकेडमी से, उसके बाद कस्टम विभाग में गया और वहाँ अप्रेजिंग सर्विस में ज्वाइन करके, और फिर 2005 के बाद IRS में आ गया और अभी तक लगभग 34 वर्ष हो चुके। कृषि की पढ़ाई करी और फिर चला गया कस्टम और फाइनेंस में। ये भी एक इंटरेस्टिंग सी बात हुई, लाइफ में बिल्कुल ही बदल गया। और सेवा में रहते हुए मुझे सरकार ने स्पॉन्सरशिप दी, तो मैंने IIM बैंगलोर से MBA किया और उसके बाद फिर मुझे स्टडी लीव मिली तो मैंने IIM अहमदाबाद से डॉक्टरेट की। तो जो नाम के आगे डॉक्टर है, ये PhD मैनेजमेंट वाला डॉक्टर है, मेडिकल डॉक्टर नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जो युवा आज के समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत चार्म है सिविल सर्विसेज को लेकर, हर एक युवा के मन में है जो उधर देखता है कि मुझे एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनना है, तो क्या उसके अंदर होना चाहिए एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने के लिए?
2: तो मैं अपने सेवा के अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ग्लैमर देख के आकर्षित हो रहे हैं कि सरकारी नौकरी है, गाड़ी है,
1: बंगला है,
2: पद है, बंगला, तो वो ग्लैमर देख के अगर आप आ रहे हैं तो शायद आप गलती कर रहे हैं। ग्लैमर उतना है नहीं जितना दिखता है, चैलेंजेस ज्यादा आते हैं और आपको कई जगह स्थानांतरण होगा। आपके कई दोस्त ऐसे होंगे जिंदगी में जो आप में देखेंगे कि वो एक ही शहर में रहे और वो अलग ढंग से ग्रो कर गए और आप जो है शहर दर शहर जगह बदलते हुए भी जा रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया सर्विस हमारी है तो हम तो कलकत्ता शुरू किया, हैदराबाद, बंगलोर, अहमदाबाद, इंदौर, इलाहाबाद और आज देहरादून कहां कहां भटकते हुए पहुंचे हैं। ये एक बात है कि ग्लैमर देख के मत आओ। अगर आपको इस

0: इसके लिए कुछ करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर रखनी पड़ेगी, उठाने को तैयार हो उस भार को, तब आओ सर्विस की तरफ, सिर्फ ग्लैमर देख के मत आओ। बहुत सारे लोग फिर सर्विस में आके फ्रस्ट्रेट भी होते हैं, कई सारे लोग बीच में छोड़ने की बात करते हैं, या कई लोग अपने को मिसफिट पाते हैं कि मैं था तो ऐसा और मैं फंस गया ऐसे विभाग में सॉर्ट ऑफ। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं आ रहे, आप कुछ करने आ रहे हैं, और कुछ करने आएंगे तो सरकार में बहुत चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल इशू भी आएंगे आपके सामने, सोशल इशू आएंगे, समाज आपको देख रहा है, प्लस आपके सामने जो है वो रियल चैलेंज है। अब मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह में है, सपोज आप आपदा प्रबंधन देख रहे हैं और आपदा आ गई है, तो सारी जनता और सारा जो पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट है वो आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप आपदा का निराकरण हो जाएगा, और आपको नहीं समझ आ रहा आपदा का निराकरण कैसे करना है, तो वो चैलेंज लेने के लिए तैयारी होनी चाहिए। तो मानसिक रूप से आपको सबल होना चाहिए, और आप ग्लैमर से हट के सोचें कि मेरे को ये सेवा मिल जाएगी तो मेरे सामने जिम्मेदारियां क्या आएंगी, मैं उनको उठाऊंगा कि नहीं। दृढ़ निश्चय चाहिए, सबल आत्मविश्वास के साथ आपको जाना पड़ेगा, सिर्फ ग्लैमर देख के जाओगे तो फिर आप तकलीफ पाओगे वहां
1: जी, है ना। कमिश्नर साहब, आपने रियल चैलेंजेस की बात की, लेकिन आज के समय जो नए सिविल सेवक आ रहे हैं वो तो रील बना रहे हैं, पहला दिन दूसरा दिन आज मैंने ये किया, और रील ऐसे शानदार शानदार रील है, लगता है कि ये किसी नई दुनिया के लोग हैं।
0: पार्टली आपकी बात सही हो सकती है, बट ऐसा है कि पहले भी लोग अटेंशन सीकर होते थे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अटेंशन सीकर होते हैं,
1: लेकिन जब आपका दौर था उस समय रील का टाइम नहीं था,
0: उस समय रील नहीं थी, तो लोग सोचते थे मैं अखबार में आ जाऊं, मैं रेडियो में आ जाऊं, मतलब वो माध्यम अलग थे
1: जी।
0: तो अभी क्या है कि माध्यम आपके हाथ में है, और बिना किसी एजेंसी या किसी और सूत्र के सीधे सीधे आपने बटन दबाया और आपका चालू हो गया, मतलब मोबाइल के अंदर सब कुछ है। तो मैंने पहले बात की ना, अगर आप ग्लैमर से आए हो तो आप शुरू शुरू में यही काम करोगे, बट आपको अपना काम दिखाने की जरूरत नहीं है। सिविल सेवा में या जब जनता की सेवा करने आप निकले हो, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लौट के उधर से आना चाहिए कि हाँ इनके काम से हमें लाभ हुआ, ना कि ये कि आप दिखाएं जनता को कि मेरे काम से आपको लाभ हो रहा है, क्योंकि जनता तो जानती है उसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, जो भी आपका स्टेक होल्डर है उसको पता है कि कितना प्लस है कितना माइनस है, तो आप कितनी भी रील डाल लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है शुरू शुरू में होता है, धीरे धीरे फिर समझ में आ जाता है कि नहीं ये रील डालने से नहीं होगा, हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हम पे कोई रील बनाए, रादर हम रील बनाए।
1: आप जीएसटी कमिश्नर हैं, किस तरह का कार्य है आपका?
0: पहले ये विभाग जो होता था ये केंद्रीय उत्पाद कर और कस्टम, तो इसमें कस्टम भी जुड़ा हुआ है, केंद्रीय वाला जो है, इसका जो दूसरा भाग होता था केंद्रीय उत्पाद कर या सेंट्रल एक्साइज जिसको कहते थे सर्विस टैक्स, वो अब जीएसटी हो गया। इस देश में बहुत किस्म के टैक्स थे, कस्टम तो जो है वो सॉवरेन ड्यूटी है, मतलब नेशनल लेवल की ड्यूटी है, विदेश से आने वाले सेवाओं पे या वस्तुओं पर लगती है कस्टम ड्यूटी, और आप ध्यान देंगे कस्टम ड्यूटी के ऊपर से आईजीएसटी लगता है। मैंने क्योंकि दोनों रिजीम देखी है तो मैं कह सकता हूँ कि पहले मल्टीपल टैक्सेशन होते थे, स्टेट का वैट अलग है, सेंटर का एक्साइज ड्यूटी अलग है, सर्विस टैक्स एक बिल्कुल ही अलग डोमेन है, और किसी का भी किसी से कोई लिंकेज नहीं था। ऑक्ट्राई लगती थी, बॉर्डर पे ट्रक खड़े रहते थे लाइन लगा के मिलो, स्टेट बॉर्डर्स पे लगे रहते थे, क्योंकि हर स्टेट का टैक्स का जो ढांचा होता था वो अलग अलग होता था। तो जो जीएसटी है उसका सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि उसने इन सब चीजों को एक सूत्र में पिरो दिया, अब एक ही टैक्स है, तो बहुत सारे करीब 17-18 टैक्स इसमें सब्स्यूम हो गए, और इसका नतीजा क्या हुआ कि पूरे राष्ट्र में एक कर हो गया। अब एक कर होने से क्या हुआ, ऑक्ट्राई चेकपोस्ट हट गए आपके, अब आज के दिन मणिपुर में बैठा हुआ आदमी ऑनलाइन ऑर्डर लेके आईजीएसटी पे करके राजस्थान तक अपना सामान पहुंचा सकता है, और राजस्थान वाला अपना सामान बंगाल पहुंचा सकता है, चेन्नई पहुंचा सकता है। अच्छा, इंपोर्ट में भी पहले क्या होता था, कई किस्म की एडिशनल ड्यूटीज लगती थी, क्योंकि इतने टैक्स थे तो हर किसी का कोई ना कोई कंपोनेंट एडिशनल ड्यूटी के नाम पर आता था, अब वो सब खत्म हो गया, आईजीएसटी हो गया। तो एक तो ये हुआ कि सरल हो गई चीजें, दूसरा टेक्नोलॉजी का हमें एडवांटेज मिला, इस टाइम में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आगे आ गई है, तो हमने काफी प्रोसेसेस जो है ऑनलाइन कर दिए जीएसटी में। ऑनलाइन होने से क्या है कि आपका फॉर्म ऑनलाइन है, डेटा का वेरिफिकेशन ऑनलाइन है, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो गई। अभी भी कमियां हैं, कुछ कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनमें अभी और मेहनत हमें करनी है, 100% हम नहीं हुए हैं, बट लार्जली जो मेजर कंपोनेंट है टैक्स कंप्लायंस का वो ऑनलाइन है, तो उससे सुविधा हो गई। तीसरी बात ये भी कि कर का जो आधार होता है राज्य का और केंद्र का, पहले बटा हुआ था, अब वो एक हो गया है, और उसमें आधा आधा भागीदारी दोनों की है, आधा टैक्स राज्य का है, अगर मान लिया 18% जीएसटी तो 9 राज्य की 9 केंद्र की होती है, वो बंटवारा समान हो गया। तो अब ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में वैट ज्यादा था किसी में कम था, और लैंड रेवेन्यू जो स्टेट की थी वो इंटैक्ट है, स्टेट्स को फायदा हुआ, और खास करके ऐसे स्टेट जहां उपभोक्ता है। इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं व्यापारियों को फायदा हुआ, इंडस्ट्रियलिस्ट को फायदा हुआ, उपभोक्ता को नहीं हुआ, लेकिन उपभोक्ता को तो असली फायदा हुआ, क्योंकि जो ये कैस्केडिंग टैक्स यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था उसकी जगह अब जब सिंगल टैक्स हो गया तो चीजों के दाम गिरे। तीसरी एक बड़ी चीज है, आप अगर रिसर्च वगैरह को फॉलो करते हैं तो एक रिसेंट रिसर्च है जो 2017 से लेके 2024 के बीच में ट्रक मूवमेंट के ऊपर, तो जब ऑक्ट्राई डेज थे तब से और अब में पर किलोमीटर डीजल के खर्चे में लॉजिस्टिक की कमी आई है, और जो दिन थे डिलीवरी के, जैसे लगभग 1000 किलोमीटर की डिलीवरी पे पहले 7 से 10 दिन लगते थे, अब ये 3 दिन में होती है, क्योंकि ट्रक रुकता नहीं तो फालतू डीजल भी नहीं फूकता है, और दिख भी रहा है क्योंकि जीएसटी कलेक्शन हर साल बढ़ रहा है।
1: लेकिन आम लोग तो यही समझते हैं कि जीएसटी तो व्यापारियों का विषय है, हमारा कैसे?
0: नहीं नहीं, मैंने कहा ना आपको, उपभोक्ताओं का है, उनकी जेब में पैसा ज्यादा आया है। कैसे आया है कि आप व्यापारियों के लिए ऐसे कहेंगे कि उनको क्रेडिट का बेनिफिट मिलता है, आम आदमी को क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन जो क्रेडिट का बेनिफिट व्यापारियों को मिल रहा है उसकी वजह से कम मार्जिन पे वो आप तक सामान पहुंचा सकते हैं। बेसिकली कीमतें गिरी हैं पहले से। अगर आप ऐसे देखेंगे आप ना जैसे लेमैन वे में, तो आप कहेंगे जी जो मैं चाय का डब्बा 10 रुपए का खरीदता था वो तो आज 20 का हो गया, कहां कीमतें गिरी। लेकिन अगर आप उसको इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ करके देखें तो पिछले 10 सालों में अगर 10 रुपए को इन्फ्लेशन रेट से ही सिंपली 4-4.5% जो हमारा टारगेटेड रेट, 4% के टारगेटेड रेट से भी आप रखेंगे तो 7 साल में दुगना होता है, 10 साल में तिगुना होता है, नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट वाली बात है। तो आपका दाम हो जाना चाहिए था 25 रुपया, लेकिन वो 20 ही हुआ, यानी 5 रुपए बचे हैं आपके। पहले क्या होता था, कोई चीज 100 रुपए की है उस पर 10 रुपए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लग गई, अब वो 110 रुपए के ऊपर फिर सेल टैक्स लगता था। अब ऐसा नहीं है, अब वो पीछे का 10 रुपया क्योंकि व्यापारी को मिल जाता है तो वो आगे 4 ही रुपए का लोड तो उपभोक्ता की जेब में वो आखिरी रुपया ही आएगा ना।
1: क्या आपका कोई ऐसा अनुभव रहा जब किसी व्यापारी की समस्या का आपने समाधान किया हो और आपको बड़ा संतोष मिला हो?
0: हम लोग रायपुर में थे तो क्या हुआ कि इनकम टैक्स विभाग से मिले डेटा के आधार पर कुछ नोटिसेस इश्यू हो गए थे। उन नोटिसेस में व्यापारी पर से तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो दरअसल में टैक्स के दायरे में नहीं आने चाहिए थे, लेकिन उनके ऊपर टैक्स के नोटिस चले गए थे क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से यह आया कि ये जो आय है इसके बारे में बताया नहीं गया कुछ और वो गलत हेड में बुक हुई है जैसे वो आए। तो बड़े सारे लोग थे, जैसे एक गांव का किसान आया था तो उसने मंडी में कुछ फसल बेची थी, अब वो इनकम टैक्स में क्योंकि उसका कोई कोरिलेटिंग एंट्री नहीं थी टीडीएस काट लिया मंडी समिति ने, जो कि काटना नहीं चाहिए था कृषि उपज पे, लेकिन काट दिया। अब टीडीएस कट गया तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, तो उन्होंने उसको शक के आधार पर यहां भेज दिया, यहां वालों ने उसको नोटिस इशू कर दिया। तो जब वो सुनवाई में आया वो किसान, तो बोला कि साहब मेरे पास तो कुल 6 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन बेचे बिना मैं आपकी पेनल्टी और वो नहीं दे पाऊंगा
1: जी।
0: तो मैंने कहा ये तो फौरी तौर पे ही गलत है। उसका हमने तत्काल प्रभाव से अपील में रहते हुए केस को खारिज किया, टैक्स की डिमांड को। तो वो मुझे पता क्या अच्छा लगा, वो अगली बार जब ऑर्डर लेने आया उसको पता चला कि उसके हक में हो गया है, तो वो अपने खेत के आलू लेके आया। तो मैंने कहा भाई तू ये क्यों लेके आया? कह रहा साहब मेरे पास यही है, मैं यही उगाता हूँ। तो हमने क्या किया, फिर हमने अपनी कैंटीन वाले को बुलाया, हमने कहा ये आलू बनाओ इनको और जो लंच में इसको साथ में रखो, और ये जो आए हैं किसान भाई हमारे जो बिना बात के वो नोटिस पा गए थे ये भी आज हमारे साथ लंच करेंगे। तो जैसे वो एक सेटिस्फैक्टरी मोमेंट था। व्यापारियों की दृष्टि से कहें तो अभी रिसेंटली एक व्यापारी थे जो कि फुल टैक्स कंप्लायंस वाले थे, लेकिन उनका हुआ क्या कि जो इंपोर्ट रिलेटेड डेटा था वो शायद इंटीग्रेट नहीं हुआ और उसकी वजह से उनके ऊपर एक बहुत बड़ी डिमांड आ गई, और पिछले जो भी दो स्तर हैं जब नोटिस हुआ या जब सब्सिक्वेंट हुआ उनकी जो भी जवाब था उसको सुना नहीं, तो उसको हमने कर दिया। और हुआ क्या कि वो दूर से थे, उन्होंने वर्चुअल हियरिंग की थी, वो अलग शहर में थे, और वर्चुअल हियरिंग हुई, ऑर्डर चला गया और उनके कंसल्टेंट ने उनको बताया नहीं कि सब कुछ हो गया है, और वर्चुअल हियरिंग में वो और उनके कंसल्टेंट दोनों आए थे। जब ऑर्डर उनके घर डाक से पहुंचा तो उन्हें पता चला कि हाँ हो गया है, उनके कंसल्टेंट ने नहीं बताया। तो वो बड़े प्रसन्न हुए और वो आए धन्यवाद कहने कि वो कहते हैं मेरा कंसल्टेंट कहता है कि ऑर्डर तो ऐसे नहीं आता है, जाना पड़ेगा। तो देखिए मतलब किस तरह के मिसकंसेप्शंस भी रहते हैं, क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं विभाग में, अच्छे बुरे, लेकिन व्यवस्था स्थापित करने की भी थोड़ी वैल्यू होती है, जो मैं कहता हूं ना कि आपको काम करना पड़ेगा। जैसे हमने फील्ड में देखा कि ऑर्डर की कॉपी लेने कोई आएगा ऑफिस में, रिसीव करेगा रजिस्टर में पुराने स्टाइल में, तो गड़बड़ होने का चक्कर होता है। तो हमने क्या नियम बनाया, हमने पोस्टल विभाग से रायपुर छत्तीसगढ़ में जो हम थे अपील ऑफिस में, हमने पोस्टल विभाग से बुक नाउ पे लेटर वाला स्कीम में बुक कर लिया। हर चिट्ठी जिस मंडे से फ्राइडे तक जो भी आदेश हुए फ्राइडे के दिन बीएनपीएल उठा के ले जाता था, वो स्पीड पोस्ट में चला गया, उसको हम ट्रैक कर लेते थे किसको मिला किसको नहीं मिला
1: जी।
0: अब वो कंसल्टेंट का जो वो था ना कि मैं दस्तखत करके ले जाऊंगा फिर मैं पार्टी को बेवकूफ बनाऊंगा, खत्म हो गया वो किस्सा। तो ये भी एक जैसे चैलेंज है कि एक प्रोसेस रिलेटेड चैलेंज था कि कैसे हम मिडिल मैन मैनिपुलेशन को हटाएं। तो हमने सीधे आदेश वही भेजने शुरू कर दिए, सीधे उनके घर ही जाते हैं। कोई कंसल्टेंट आया तो उसको डुप्लीकेट का छप्पा लगा के कहा ये तुम भी ले जाओ एक कॉपी, मूल कॉपी जो है जा चुकी है। तो अब ऐसे छोटी छोटी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो ये नहीं है कि मतलब मैं गया मैंने फोटो खिंचाई रील बनाई, नहीं, वो अपनी जगह, वो भी इंटरेस्टिंग चीज है, कोई गलत नहीं है उसमें क्योंकि आज का जमाना वैसे ही है, लेकिन हम अपने काम को समझ रहे हैं, हम उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत छोटी छोटी छोटी छोटी चीजों को अगर आप नजर रखते हैं तो बड़ा आउटपुट अपने आप आ जाता है।
1: श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार पांडे से, आप आयुक्त हैं केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्तालय देहरादून के। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम की एक रवायत है, जिन मेहमान को हम अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हैं उन्हें उनकी पसंद का गीत भी सुनवाते हैं। कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: आपकी रिपोजिटरी तो मैंने सुना बहुत बड़ी है आकाशवाणी की। किशोर कुमार का गीत मुझे बड़ा पसंद रहा है शुरू से और आज भी है। कभी पलकों पर आंसू है, कभी लब पर शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। तो ये अगर आपके रिकॉर्ड में मिल जाए तो।

0: कोई खास वजह है इस गीत को पसंद करने के पीछे?
1: मैं जब पढ़ रहा था, कभी कभी होता है नेचर या प्रकृति जो होती है, ईश्वर होता है, हमारी परीक्षा सी लेते हैं, तो मैं जब अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में था, मेरे को क्या हुआ, किडनी में स्टोन हो गया। उसी दौरान मुझे हार्निया की शिकायत हो गई। मेरा कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में सिलेक्शन हुआ आर्मी कमीशन के लिए, ट्रेनिंग में पहुंचा, लेकिन मेरे दूसरे साइड भी हार्निया निकल आया, तो वो कंटिन्यूस सर्जरी और वो सब चला, और मैं आर्मी वालों ने कहा भाई तू तो मेडिकली बी कैटेगरी हो गया। फिर मैं वहां से छोड़ के आया, कमीशन से मेडिकल ग्राउंड पे आउट हुआ। मैंने फिर से अपनी मास्टर्स की स्टडी को रिज्यूम किया। जब किया तो ये दो ऑपरेशन हो चुके, एक स्टोन निकल चुका, फिर एक नया स्टोन पैदा हो गया। तो वो 2.5-3 साल का टाइम था जिसमें कि मतलब मैं पढ़ भी रहा हूँ, मेरे हाथ से वो जॉब भी निकल गया है, और मैं बड़े चैलेंजेस हूँ, मैं इसमें भगवान ये कर क्या रहा है मेरे साथ। उसी बीच में एक दिन ऐसी थे तो किसी चाय की दुकान में ही गाना बज रहा था
0: जी,
1: तो मैंने कहा ये गाना किसका, उसने किशोर का है, तो उन दिनों कैसेट होते थे। फिर मैं एक शॉप में गया, छोटा एक कैसेट रिकॉर्डर वॉकमैन टाइप होता था, मैं उस दुकान वाले से कहा कि एक ये गाना और बाकी भी इसी तरह के कुछ गाने डाल दो उसमें, वो 30 मिनट की कैसेट, 60 मिनट की कैसेट आती थी ना उन दिनों, तो वो रखा हमने। और जब मैं खास करके पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, और जब ढेर सारा सिलेबस और वो पढ़ना है, और आपको टेंशन है कि अभी प्री है, मेन है, फिर इंटरव्यू, तो जब जब मुझे लगता था मैं थोड़ा कमजोर पढ़ रहा हूँ या मुझे एनर्जी चाहिए, तो मैं इस गाने को सुनता था, आंखें बंद की ये गाना लगा दिया, चाहे 100 शिकायत हो लेकिन फिर भी जिंदगी तो उससे मोहब्बत है कहते हुए, और अपने काम पर जुट गया। तो ये बस छोटी
0: जी,
1: सी।
0: अभी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया कि आप CDS में सेलेक्ट हो चुके थे, वहां पर हार्निया की समस्या हुई, उसके बाद आर्मी वालों ने कह दिया आपके साथ तो मेडिकली ये दिक्कत है, उसके बाद आपने पुनः अपनी पढ़ाई शुरू की। लेकिन आज के युवा की बात करें, जरा से चैलेंजेस जब आते हैं वो भागने लगता है और कुछ गलत फैसले भी ले लेता है, क्या कहेंगे उनसे?
1: सारे तो ऐसे नहीं है मेरे ख्याल से, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इनोवेटिव हैं, कुछ कुछ ऐसी भी स्टोरी है जो 18 और 20 साल के बच्चे जो स्टार्टअप चला रहे हैं और वो लाखों करोड़ों रुपए की वैल्यूएशन उनकी हो रही है।
0: निश्चय
1: जैसे बैंगलोर में एक अभी है जिसने वो मेडिकल डिलीवरी वाला ड्रोन बनाया है, वो लड़का अभी काफी चर्चा में है। ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ऐसे हैं, बट हाँ, लेकिन ये बात है कि कई सारे लोग इसमें भटके हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा वजह मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग या जो पिछली जनरेशन है वो जमीन से जुड़ी हुई तो थी ही कम से कम। आजकल बहुत सारा चीजें वर्चुअल हो गया है, जैसे आपने रील का जिक्र किया था। हमारे टाइम में एक और अच्छी बात थी कि रोल मॉडल बहुत सारे थे, जैसे गांधी जी थे
0: जी,
1: तो नए रोल मॉडल उस डिग्री के नहीं बन रहे, एक वो प्रॉब्लम है। दूसरा, आदमी वर्चुअल वर्ल्ड में रह रहा है तो उसको लगता है कि सॉल्यूशन व्हाट्सएप में है, सॉल्यूशन कहीं यूट्यूब में है, सॉल्यूशन कहीं गूगल की सर्च में है, जबकि सॉल्यूशन वहां होते नहीं है। वहां से आपको ज्यादा से ज्यादा एक आइडिया मिल सकता है
0: जी,
1: एक हिंट मिल सकती है, सॉल्यूशन तो जमीन पे ही होंगे ना, वो जमीनी हकीकत से थोड़ी डिस्टेंस हो गई। अपने आसपास की चीजों पर अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने जो चैलेंजेस हैं उनको रियल ग्राउंड पे टेस्ट करना है, ये बेसिकली है। जबकि हमारे यहाँ ख्याली स्तर पे बहुत सारे लोग आजकल रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जब वो ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नहीं ये तो मैंने जो सोचा था वो हुआ नहीं, और ग्राउंड से आप डिस्टेंस पे हो, तो फिर कई बार आप हार मानने को तैयार हो जाते हो। और फिर मुझे लगता है कोई एंकर चाहिए, चाहे वो इंसान के रूप में हो या जैसे मेरे को वो गाना पसंद आ गया था, या तो एक एंकर ढूंढना चाहिए, चाहे वो किसी की पर्सनैलिटी हो, कोई आदमी आपको पसंद है, चाहे वो कोई भी चीज हो, पौधों से लगाव हो जाए आपको, खेल से लगाव हो जाए, तो एक कोई ऐसी चीज जिसमें कि आप रियल वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए, वो अगर अपने साथ आपके रहेगी तो जब जब आपको ऐसा कुछ आएगा तो आप उस तरफ मोड़ करके थोड़ा रिलैक्स करके वापस बाउंस बैक कर सकते हो। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थोड़ी वीक है आजकल, आजकल लोग फोन पे नहीं बात करके मैसेज में बात करते हैं
0: जी,
1: तो वो जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, जो प्याराना दोस्ताना है, और खास करके इस उम्र में जबकि नेटवर्किंग होनी चाहिए, अगर आप उसको मिस कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम आती है, तो उसको बढ़ाना चाहिए अपना।
0: अभी आपने बातचीत में कहा कि जो युवा चाहता है वो कभी कभी उसे नहीं मिल पाता, सिविल सर्विसेज के साथ भी ऐसा ही है, अनेकों युवा तैयारी कर रहे होते हैं और कुछ ही युवा सिलेक्शन में आते हैं।
1: यस, बिल्कुल आपने एकदम सही बात कही। सिविल सर्विस जब भी आप तैयारी करो तो एक अल्टरनेटिव कम से कम अपने दिमाग में रखो कि ये नहीं तो फिर क्या। जैसे मैंने ही बताया इंदिरा गांधी डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट की PhD का मेरे पास ऑफर था, तो मुझे पता था कि इस साल मेरा सिलेक्शन होता है, अगले साल में बॉम्बे IGDR में PhD करने चला जाऊंगा
0: जी,
1: और मैं PhD करके उस दौरान अगर दोबारा दे सका तो दूंगा, नहीं तो PhD तो है, एक अल्टरनेटिव रूट है मेरे पास। मेरे साथ के कई ऐसे रहे हैं जिनको कि नहीं मिला उस समय, कांडपाल जी हैं जो कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में आज नेशनल लेवल पे बहुत अच्छी दखल रखते हैं, वो एक जमाने में अजीम प्रेम जी एजुकेशन फाउंडेशन के उत्तराखंड प्रभारी भी थे कुछ साल पहले
0: जी,
1: अभी तो ऑल इंडिया लेवल पे उनकी मेन बोर्ड में है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि वो और हम सिविल सर्विस साथ देते थे, वो 4 अटेम्प्ट तक नहीं निकल पाए, तो उन्होंने फिर बिल्कुल सिंपल सी स्टेट गवर्नमेंट की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की नौकरी थी वो एक्सेप्ट करी और करीब 12 वर्ष वहीं बिताए। लेकिन एजुकेशन सेक्टर के उस एक्सपीरियंस के बाद उनको फिर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से कहीं इंटरेक्शन हुआ और वो जज गया और वो चले गए, क्योंकि पढ़े लिखे तो सही 15 के ही पढ़े थे मेरे साथ के
0: जी,
1: तो वो उनको 12 साल इंतजार करना पड़ा। तो एक बड़ी चीज है कि धैर्य, दूसरा एटलीस्ट एक ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। 0 ऑप्शन के साथ सिविल सर्विस में इंटर करना ऐसा ही है जैसे जुआ खेलना, मतलब मैं बड़ी फ्रेंकली ये बात कहना चाहती हूँ।
0: क्यों, तो लाखों बैठते हैं, कुछ हजार प्रिलिमिनरी निकालते हैं, उसमें से भी कुछ 100 सिलेक्शन पाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे बेटे ने इसीलिए चुना कि वो सिविल सर्विस देगा ही नहीं। उसने कहा कि ये जो इसमें सिलेक्शन रेशियो है ये सिलेक्शन के लिए नहीं है, ये एलिमिनेशन के लिए है, तो मैं ऐसे एग्जाम में नहीं बैठना चाहता जहाँ एलिमिनेशन होता है। तो वो अभी अमेरिका में है, वो फिलाडेल्फिया से मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा है अपनी डेटा एनालिटिक्स में। कहता है कि मैं कुछ और करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा
0: जी।
1: डिफरेंट पाथ।
0: जीएसटी आयुक्त के रूप में कभी कभी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कोई चुनौती जो आपके जहन में अभी भी आती है?
1: चुनौतियां तो खैर पूरे सर्विस कैरियर में बहुत रही हैं, और क्योंकि हम लोग ऐसे लोगों को डील करते हैं जो कि कर की चोरी वगैरह करते हैं और इस तरह के हैं, तो रहते हैं चैलेंजेस। तो अभी रिसेंटली मैं लास्ट जब इंदौर में पोस्टेड था, हम लोग एक केस पे काम कर रहे थे जिसमें कि हमें इंटरस्टेट काम करना था, तो एमपी की साइबर पुलिस थी, हम लोग थे, और फेक आइडेंटिटी थेफ्ट करके आधार का और उसके तार कार चोरी का मामला था। अब क्या हुआ कि हम लोग ना करीब करीब उस बंदे के पास पहुंच गए थे, लेकिन वो कहां है, अब 2 किलोमीटर का दायरा हमें मोबाइल से मिल गया कि इस 2 किलोमीटर में कहीं वो बंदा बैठा हुआ है और हमें उसे आज पकड़ना है। 2 अटेम्प्ट पहले फेल हो चुके थे, तीसरा अटेम्प्ट हम कर रहे थे, सूरत शहर था, तो साइबर पुलिस की मदद ली, तो वो भी कह रहे साहब हम 2 किलोमीटर तक का आपको एरिया दे सकते हैं मोबाइल टावर के हिसाब से।
0: जी जी।
1: अब इस 2 किलोमीटर में कैसे ढूंढे साहब उसको, हजारों मकान हजारों ऑफिसर्स हैं। तो क्या हुआ कि वो हुआ पिछली बार से सबक लेके कहा कि यार इसके कुछ कुछ ना पेटीएम पे और इस तरह के फोन पे चलते हैं। तो हमने साइबर पुलिस से कॉन्टेक्ट किया, हमने कहा इनके पेटीएम वाले जो है फ्लैशेज वो हमें देखने हैं। तो फिर हमने उनका अकाउंट देखा पेटीएम की मदद से, और पेटीएम में देखा कि ये टाइम टू टाइम जोमेटो में ऑर्डर करता है
0: जी,
1: और जनरली वो लंच का ऑर्डर करता है। तो हमने कहा हो सकता है ये जब भी ये महीने 2 महीने में एक बारी बैठता है और अपना गैंग का वो ऑपरेट करता है सेंट्रल, तो उस दिन ये लंच मंगाता होगा शायद, और आज हमें खबर है कि ये उस इलाके में आने वाला है। 2 किलोमीटर हमने जीरो इन कर लिया है
0: जी।
1: तो फिर हमने साइबर पुलिस को कहा कि अगर जोमेटो का कोई आए, तो उन्होंने जोमेटो को कॉपी कर लिया, जैसे ही जोमेटो पर ऑर्डर निकला लंच का, बस वो उस जोमेटो डिलीवरी बॉय के पीछे पीछे गए। वो करीब करीब 450 फर्जी कंपनियां चलाता था, 118 करोड़ रुपए का कर अपवंचन हमने पकड़ा, उसको जेल में रखा, और 6 महीने वो हमारे कानून के तहत और अगले 6 महीने वो आधार आइडेंटिटी थेफ्ट वाले के अंदर, करीब 1 साल वो जेल में रहा, और 82 करोड़ रुपए तक तो रिकवर हो गए थे जब मैंने इंदौर छोड़ा था तब तक
0: जी।
1: काफी बड़ा केस बना हुआ,
0: बहुत ही
1: तो ये बड़ा ये अब ये देखिए कि ये जो साइबर पुलिस है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द एजेंसीज, और एक जोमेटो, क्योंकि ऑनलाइन जोमेटो का जैसी लिंक मिला कि भाई ये हर महीने 2 बार ऐसा होता है जोमेटो से लंच मंगाता है, बाकी टाइम तो नहीं मंगाता है दिन रात, तो शायद ये हो, और वो चल गया। तो बड़ा मजा आया था उस दिन, चैलेंज भी था, 2 बार फेल हो चुके थे
0: जी।
1: यस,
0: एक प्रशासनिक अधिकारी को कभी कभी बहुत ही कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जो महत्वपूर्ण भी होते हैं।
1: हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि कभी हमारे डिपार्टमेंट में भी ऐसे रहते हैं, मोल रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और ऐसा ही वाक्य है, जब मैं था इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड, तो उसमें क्या हुआ था कि हम लोगों ने जैसे रेड स्टार्ट करने का तैयारी मतलब जाने का ऑपरेशन शुरू किया, तो पता चला कि वहां तो कोई है ही नहीं, सब गायब है
0: जी।
1: तो पता चला कि इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, लीक हो गई है पता चला, तो पता चला हमारे डिपार्टमेंट के एक अधिकारी, उनकी पत्नी शायद उस कंपनी में काम करती थी, और वो घर में बात हुई और वो लीक हो गई, तो हमें तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको जो है हटाना पड़ा। कड़ा निर्णय था, मतलब वैसे अगर उसको अदरवाइज देखें तो एक अच्छा अधिकारी था, लेकिन हटाना पड़ा और काफी दूर भेजना पड़ा वहां से। तो ऐसे भी निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉलिटिकल प्रेशर आ जाता है बहुत कड़ा दिल करके
0: जी,
1: ये भी लेते हुए कि हमारे पे भी आ सकती है, लेकिन ना कहनी पड़ती। तो ना कहने के आर्ट जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज आई थिंक गवर्नमेंट उसमें।
0: प्रशासनिक जीवन की बात करें तो यहाँ तनाव भी है, व्यस्तता भी है, तो इन दोनों के बीच में घर के लिए अपने लिए समय कैसे निकालते हैं?
1: बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है। आज के दिन तो बहुत टूल हो गए कि ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो जाती है
0: जी,
1: बट पहले के टाइम में भी जब तक मैंने नौकरी की है कभी ऐसा नहीं हुआ कि शाम को मेरी टेबल पे फाइलों का ढेर रहा हो, मैनुअल जब होता था
0: जी।
1: क्योंकि आपको प्राथमिकता तय करनी है, कौन सा काम पहले कौन सा काम, टाइमलाइन एडहेयर करने के लिए कैसे ना कैसे। अब जैसे आप अभी कहते हैं प्रशासनिक उसमें कड़े, अगर कोई टाइमलाइन एडहेयर नहीं कर रहा तो उसके लिए कड़ा होना, और जो एडहेयर कर रहा है उसके लिए बहुत मुलायम होना है
0: जी।
1: रखना सबको परिवार की तरह, जैसे हम अपने बच्चों को है अच्छे काम के लिए रिवार्ड करते हैं, बुरे काम के लिए डांटते हैं, तो वो चीज में रखनी ही पड़ती है। तो पहले भी ऐसे ही करते थे। बेसिकली क्या है, टाइम और रिसोर्स मैनेजमेंट, दो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। अगर आपने ये सीख लिया है तो फिर पेंडेंसी नहीं रहेगी, स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, मैनेज होंगी चीजें। अगर आप टाइम और वो नहीं करेंगे, ओवरलैप होंगी चीजें
0: जी,
1: कि ऑफिस का काम घर पहुंच रहा है, घर का टेंशन ऑफिस पहुंच रहा है, वो आर्ट तो मास्टर खुद ही करनी पड़ती है, पर वो होती टाइम और रिसोर्स मैनेजमेंट से ही।
0: आज के युवाओं को कुछ टिप्स आपको देना हो तो क्या देना चाहेंगे?
1: मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूँ। एक तो बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, कीप योर आईज एंड ईयर ओपन, आंख कान खुले रखो, यानी कि ऑब्जर्व करो अपने चारों तरफ
0: जी।
1: तो उससे आपको ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट भी रहेगा और आप रियल सिचुएशन के परे नहीं रहोगे। मतलब जो आपको दिख रहा है किसी सरफेस पे, चाहे वो आपके मोबाइल के सरफेस पे दिख रहा है, चाहे अखबार के ऊपर दिख रहा है हेडलाइन के रूप में, उसके बियॉन्ड सोचो, अपने आंख कान खुले रखो। दूसरा यह है कि अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन बनाओ। मतलब मैं आपके ओपिनियन से ना चलूं, आपकी सलाह मैं मानूं, आपसे मैं पूछूं भी, राय भी लूं, आपके अनुभव का फायदा भी लूं, लेकिन ओपिनियन मेरा इंडिपेंडेंट हो। और तीसरी चीज है पेशेंस को डेवलप करना, कामनेस और पेशेंस, क्योंकि जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, अगर कुछ मिला भी आपको तो वो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ में, आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको धैर्य होना चाहिए, आपके आंख कान खुले होने चाहिए और आपके अंदर रिजिलियंस जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए
0: जी।
1: और टाइम रिसोर्स मैनेजमेंट आप सीखिए तो चाहे पढ़ाई हो चाहे ऑफिस, सब चल जाता है।
0: अगर बात करें देश के उद्यमियों की, व्यापारियों की और आम नागरिकों की, तो एक जीएसटी कमिश्नर होने के नाते उनसे क्या कहेंगे?
1: देखिए, उद्यमियों से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है सरलीकृत अगर टैक्स प्रणाली आज जीएसटी में आ गई है तो इसका पूरा लाभ उठाइए। और क्योंकि आप काम करेंगे तो देश के विकास में सब दोनों तरह से योगदान करते हैं। एक तो जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं, तो उससे बेनिफिट हो रहा है हमारी अर्थव्यवस्था को, दूसरा राजस्व आ रहा है, तो उनके लिए तो यही कहूंगा। और उद्यमियों के लिए विशेष रूप से कहूंगा कि आप बने बनाए व्यापारिक मॉडल जो चल रहा है उससे थोड़ा आगे निकल के इनोवेटिव, यानी जिसे नवाचार कहते हैं, उस दिशा में थोड़ा सोचिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को अब एक स्टेप ऊपर जाने की जरूरत है। तो हम विकसित और विकासशील देशों के बीच की तुलना करते हैं कई बार, तो कारण यही है कि वो लोग इनोवेट करते हैं, वो एक स्टेप आगे चले जाते हैं, वो कंप्यूटर से आगे जैसे एआई सोचते हैं, वो फार्मा के इस लेवल से अगला लेवल सोचते हैं, हम कॉपी कर रहे हैं। अभी तक थोड़ा हम रिसोर्स की भी प्रॉब्लम थी हमारी, तो हम लोग का मॉडल शुरुआती क्या था, कॉपी करने का था। अब हमारे अंदर कुछ कुछ नवाचार आ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उद्यमी उसको बढ़ाएं। और जो युवा हैं उनके ऊपर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो नवाचार को कैसे आगे ले जाएं, क्योंकि वो नया सोच सकते हैं, वो नई दृष्टि से देख रहे हैं। हमारी दृष्टि अब 30 साल से काफी हद तक पुराने अनुभव और इन बीच के घालमेल में थोड़ी सीमित हो जाती है, लेकिन नया जो बच्चा है वो एकदम नया सोच रहा है ना, उसके ऊपर कोई पुराना बैगेज नहीं है, तो उनके लिए ये कहना चाहता हूं। और जो सामान्य जनता से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग को जो सुख मिल रहा है इस देश की प्रगति का, आप उसको एंजॉय करें और जिससे जो बन पड़े। एक बहुत सिंपल सी बात है, मैं कहना चाहता हूं कि एक छोटी सी लाइन है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ का छोटा सा भी काम जो उसको करना है उसको सलीके से कर देगा, तो सारे काम सलीके से हुए दिखेंगे। आप जिसका भी जो काम है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा, अपने हाथ का काम अगर मैंने पूरी ईमानदारी से, पूरी डिटर्मिनेशन से कर दिया, तो सब जोड़ के तो बढ़िया हो ही जाएगा। दूसरे को दोष न दें, अपने हिस्से का पूरा करें। हर ने अपने हिस्से का किया तो बड़ा देश का प्रगति हो जाएगी।
0: श्रोताओ, इसी नोट पर हम कार्यक्रम को विराम देते हैं, इस वादे के साथ कि डॉक्टर अशोक कुमार पांडे जी से फिर कभी मुलाकात होगी किसी नए कार्यक्रम में। डॉक्टर अशोक कुमार पांडे जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और श्रोताओं के साथ अपने जीवन के तमाम अनुभव साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं को शुभकामनाएं कि वे अपने जीवन में सफल हों और अपने उद्देश्य में सफल हों।
2: कार्यक्रम अनुभव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर अशोक कुमार पांडे, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर आयुक्त देहरादून से रमेश चंद्रा की बातचीत। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10 बज रहे हैं, अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप योशिता पांडे से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। भारत और जापान ने रणनीतिक तेल भंडार को बढ़ाने और समुद्री परिवहन सुगम बनाने के लिए ऊर्जा साझेदारी की घोषणा की। पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार अगले वर्ष में तेल शोधन क्षमता बढ़ाकर सालाना 30 करोड़ मीट्रिक टन करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्रदेश को आपदा प्रबंधन में देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए कार्य करने के निर्देश दिए। कर्नल SS राजपुरोहित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य बने। केंद्र ने देशभर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुरू किया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले पर सुनवाई की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नियोजन विभाग को व्यय वित्त समिति की बैठकों में प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के निर्देश दिए। बागेश्वर जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष अभियान चलाया। भारी बारिश के चलते पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट पर अगले आदेश तक रोक लगाई। पौड़ी के जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसरों में आपदा की दृष्टि से खतरा बने पेड़ों को हटाने के निर्देश दिए। अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हुई। उत्तरकाशी के मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागों को जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। आगामी कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार मेला प्रशासन सक्रिय हुआ। श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मेला अधिकारी सोनिका ने निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई और रामनगर रेलवे स्टेशन पर नई पीट लाइन का निर्माण कार्य पूरा हुआ। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। आइए अब सुनते हैं हमारा प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Social networking है क्या आखिर? Social networking दोस्तों, परिवार, सहपाठियों यानी classmates, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए internet आधारित social media कार्यक्रम का उपयोग है. Brand पहचान और वफादारी बढ़ाने के लिए marketers social networking का उपयोग करते हैं. लोग सामाजिक नेटवर्क का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सामाजिक नेटवर्क लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रखने में मदद करते हैं और ये पता लगाने का एक आसान तरीका है कि आपके सामाजिक मंडली में हर दिन क्या हो रहा है. इंटरनेट पर मज़ेदार और दिलचस्पी चीज़ों को खोजने के लिए सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर आपके मित्र और परिवार आपके जैसे ही कई हितों को साझा करेंगे. आज सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क क्या है? बहुत सारे हैं दोस्तों. सोशल मीडिया आज भी 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय सोशल नेटवर्क है. कई नाम आपको दे सकते हैं, मगर आपको खुद मालूम है कि ये क्या क्या सोशल मीडिया है.

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। आई रिपीट feedback@gmail.com।
1: सोशल नेटवर्किंग साइट आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं। लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को प्रयोग करने वाले लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। आज सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर धमकियाँ, ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इन सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद या ब्लॉक कर दें। अगर यदि आप इन सोशल साइट्स का सुरक्षित तरीके से प्रयोग करेंगे तो ये साइट्स बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत काम के भी है। दोस्तों, अब जानिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स के लाभ। सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से आप बस एक फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते ही एक नई दोस्ती का डोर शुरू हो जाता है। सोशल नेटवर्क का प्रयोग करने से आप अकेलेपन का शिकार होने से बच सकते हैं। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके बिजनेस को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट से आप हमेशा व्यस्त रह सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको यह एहसास होता है कि आपको कोई सुन रहा है। इसके प्रयोग से आपको दोस्तों की कमी महसूस नहीं होती है। सामाजिक नेटवर्क के उदाहरण बहुत है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सोशल नेटवर्किंग साइट के फायदे सुने हैं, अब सुनिए इसके नुकसान।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@amc1@gmail.com। आई रिपीट feedback@amc1@gmail.com।
1: सोशल नेटवर्किंग के ये नुकसान है दोस्तों कि सोशल नेटवर्किंग आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। एक प्रकार की लत है, ये एडिक्शन है। आप इसके आदि होते चले जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर समय बिताना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप इसको इतनी ज्यादा अहमियत देने लगते हैं कि अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को आप भूल जाते हैं या अपनी जिंदगी से काट लेते हैं। ये सही नहीं है। कई बार सोशल नेटवर्किंग साइट से आपका डेटा और फोटो चोरी कर लिया जाता है, जिनका प्रयोग गलत कामों के लिए किया जा सकता है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स आज दुनिया भर में एक दूसरे से जुड़ने का सबसे अच्छा साधन है। आज सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के दीवाने हैं, जो कि मैंने आपसे पहले ही बता चुका हूँ। दोस्तों, सोशल साइट्स पर हमेशा अपनी पूरी जानकारी न अपलोड करें। यहाँ से आपकी जानकारी को चोरी किया जा सकता है। अपने पर्सनल फोटो को सोशल साइट्स पर अपलोड न करें, खासकर महिलाएं, गर्ल्स। ज़्यादातर 18 ईयर्स या 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने गलत जानकारी अपलोड करके इन साइट्स पर अकाउंट बना लेते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें। सोशल साइट्स के द्वारा बने दोस्तों को आप अपनी पर्सनल जानकारी न दें। यह हमेशा याद रखें कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स नए लोगों से मिलने और सबसे जुड़ने का बस एक माध्यम है। इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा न बनाएं। आपके अपने लोग सोशल साइट्स के माध्यम से आपसे जुड़े रहते हैं, इसीलिए इन साइट्स का प्रयोग आप नए लोगों से जुड़ने के लिए या अपनी नेटवर्किंग के दायरे को बढ़ाने के लिए करें, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को दूसरों पर जाहिर न होने दें। सोशल मीडिया साइट्स का प्रयोग लगातार लंबे समय तक न करें। कई बार लोग पूरा दिन इस साइट्स पर ही बिता देते हैं, ऐसा न करें। ऐसा करने से आपके निजी ज़िंदगी में बहुत नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो सकता है और आपके रिश्ते भी। तो दोस्तों, यह थे कुछ प्रोस एंड कॉन्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। इसके साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाज़त।
0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedback@amc1@gmail.com। आई रिपीट feedback@amc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:10 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

फिल्म नमस्ते लंदन से आपने ये गीत सुना। आवाज़ थे जुबिन गर्ग, अलीशा चिनॉय की। जावेद अख्तर ने ये गीत लिखा था और संगीत था हिमेश रेशमिया का। आइए अब सुनते हैं केएस चित्रा और के युगल स्वरों में फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ से कार्यक्रम का ये अगला गीत। बोल हैं देव कोहली की और संगीत अनु मलिक का।

0: मिट्टी चाशनी।
1: अभिजीत श्रीवास्तव की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म भारत से। शब्द रचना इरशाद कामिल की थी और संगीत विशाल शेखर का था। अब सुनते हैं फिल्म संगीत का ये अंतिम गीत सचेत टंडन की आवाज में फिल्म मलंग से। लिखा है कुणाल वर्मा ने और संगीत है द फ्यूजन का।

0: इसी गीत के साथ श्रोताओं फिल्म संगीत संपन्न होता है। ये आकाशवाणी देहरादून है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:30 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए ताकेची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल हैं। नई दिल्ली में भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की घोर निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवम्बर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री ताकेची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों और संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों नेताओं ने आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को जड़ से समाप्त करने, आतंकी वित्त पोषण चैनलों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से उनके गठजोड़ को समाप्त करने तथा आतंकियों की सीमा पार आवाजाही रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया। आगामी कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार मेला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ। लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने कहा कि मेले के शुभारंभ से पहले सभी निर्माण कार्य, सड़क सुधार और यातायात संबंधी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। हरेला पर्व पर देहरादून जिले में 15,50,000 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। 16 जुलाई से शुरू होने वाला हरेला अभियान 1 माह तक चलेगा। इस दौरान पौधरोपण के माध्यम से इको टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने इसके लिए सभी विभागों को रोपण स्थलों का चयन कर माइक्रो स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री अमरनाथ यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पहले जत्थे में 4,822 यात्री हैं, जिनमें से 2,510 पहलगाम मार्ग से और 2,312 बालतल मार्ग से यात्रा करेंगे। 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। यात्रा 28 अगस्त को समाप्त होगी। और एक नज़र आज के मौसम पर। उत्तराखंड में मानसून सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आज राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। पर्वतीय क्षेत्रों में आकाशीय बिजली चमकने, वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर तथा तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। विभाग ने लोगों से संवेदनशील

क्षेत्रों में सतर्क रहने और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पिथौरागढ़ जिले में जोहार मत्स्य स्वायत्त सहकारिता नमजला ने सातवीं वाहिनी आईटीबीपी मिर्थी को 115 किलो ट्राउट मछली की आपूर्ति की। इससे मत्स्य पालकों ने 51,750 रुपए की आमदनी की है। जिला मत्स्य अधिकारी डॉ. रमेश चलाल ने बताया कि स्थानीय बाजार में ट्राउट मछली की मांग अधिक है। उन्होंने कहा कि स्वायत्त सहकारिता से जुड़कर मत्स्य पालकों को बाजार उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश भर में 4 जुलाई से 18 जुलाई तक सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत प्रदेश के जिला, ब्लॉक एवं तहसील स्तर पर विशेष बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विकास कार्यों एवं सरकार की जनहितकारी उपलब्धियों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। इसके साथ ही शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी जन समस्याओं का मौके पर ही समाधान करेंगे। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने समस्त विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को सेवा पखवाड़े के सभी कार्यक्रम समयबद्ध, प्रभावी एवं जन सहभागिता के साथ आयोजित करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर। सुबह के 10:35 हुए हैं। अब समय है लोक संगीत का। कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सुनिए गुड्डू राणा के स्वर में जौनसारी लोकगीत।

0: योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से आप लोक संगीत के अंतर्गत सुन रहे हैं गुड्डू राणा के स्वर में जौनसारी लोकगीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम लोक संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे जौनसारी लोकगीत। गायक कलाकार थे गुड्डू राणा। ये आकाशवाणी देहरादून है FM 100.5 MHz पर।
1: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, मैं वर्षा पंत आप सभी का स्वागत करती हूं आपके मन पसंदीदा कार्यक्रम वत्सव फरमाइश में, जहां आप सुनेंगे अपनी पसंदीदा फिल्मों के खूबसूरत गीत। पर उसके लिए आपको अपने गीतों की फरमाइश अपने नाम और पते के साथ हम तक पहुंचानी होगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088-000-731, यानी कि 7088-000-731। तो श्रोताओं, जब तक आपकी फरमाइश हम तक पहुंचती है, तब तक आनंद लीजिए इस प्यारे से गीत का, जिसको गाया है अनुराधा पौंडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म का नाम है बंटवारा।

श्रोताओं, कार्यक्रम में हम फरमाइशें शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है। तेलंगाना एद्दो मेलरम से बालकृष्ण, शारदा श्रीनिधि, अखिल और कार्तिकेय की। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर

कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। राहट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर, रुचिका रामेकर की। साथ ही कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सारिका दले की। अगली फरमाइश हमें मिली है पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने की। वरवट वकाल बुल्ढाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे और जय हागे हम तक अपनी फरमाइशें पहुंचा रहे हैं। अगला मैसेज हमें मिला है कृष्ण की नगरी मथुरा से सबा अंसारी, शकील अंसारी, हिना अंसारी, बुशरा अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि की। अगला मैसेज हमें मिला है राहट कैंप अमरावती से, माफ़ करना आप का मैसेज शामिल हो चुका है। इसके साथ ही जैन मंदिर वाली गली कुरावली से गीत की फरमाइश हमसे कर रहे हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, असना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी, मीना कारी, पुंज का आरती, आकर्षण और जयश्री की। तो आइए श्रोताओं आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला प्यारा सा गीत फिल्म बेताब से, जिसको गाया है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने।

श्रोताओं, अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है कुम्हार गली कोलगांव से। पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन और संतोष चंदन की। साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है, श्रीरामपुर से अशोक कुम्हार, अविका जीविका, सानू कुम्हार और अर्चना कुम्हार की। साथ ही कोस्ती पुनावले से अजय सोनवणे, करिश्मा सोनवणे, अविका सोनवणे और साइशा सोनवणे की। अगला मैसेज हम शामिल करें जो हम तक पहुंचा है, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं, आप हैं ग्राम उम्मेडा निज़ामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन, आबेदा आयशा और स्नेहा भानु जैनुद्दीन। गांधीनगर गुजरात से हमें मैसेज कर रहे हैं सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। अगले गीत की फरमाइश हमसे कर रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। पटेल नगर मलोड से अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजेरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू की। साथ ही प्रोग्राम में अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक वर्मा का। अगला मैसेज हम तक पहुंचा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहवनकर, निर्मला, विशाल और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मुहेरकर की। तो आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला प्यारा सा गीत फिल्म डॉन से लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
1: श्रोताओं अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है। कंवर कॉलोनी बलवाड़ से प्रवीण शामली और मीना शामली की। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव कुमार संचित बयाल कुमार प्रथमेश देशमुख कुमार शरवत देशमुख कुमारी प्रणाली देशमुख कुमारी सानवी देशमुख कुमारी कल्पना देशमुख की। इसके साथ ही अगले गीत की फरमाइश हमसे की है मुसरत जहां निहाज ने सीतामणि बिहार से। साथ ही तलहा जहानाज फरह जहानाज रिफत जहानाज नुसरत जहानाज साजिया शाही नाज और नाजिया पूरी नाज भी इसी गीत की फरमाइश हमसे कर रहे हैं। गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से अगले गीत की फरमाइश हमसे कर रहे हैं विनोद बरासा विशाल बरासा विकास बरासा और रोशनी बरासा। अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचे है

गांव हीरावाली फाजिलिका पंजाब से सुभाष गोदारा, विपला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और अगली फरमाइश हम तक पहुंची है। पोटियाला दुर्ग से संजय शाहू, सुजाता शाहू, शशांक शाहू और सीमा शाहू की। अगला मैसेज हमें मिला है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महित्रे, अंजलि कारवा, बाला साहेब कारवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टूल और पीबी कुलथी की। तो आए श्रोताओं, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म रोटी से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं ये अगली फरमाइश है जो हम तक पहुंची है विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन की। इसके साथ ही अगली फरमाइश हमसे की है ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नानगरे और सूरज कुमार ढाकसे ने। अगला मैसेज हमें मिला है दिल्ली बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा पंचकुला और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना ने। इसके साथ ही अगले गीत की फरमाइश हमसे की है गांव कलमंडी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रताप पंवार। और साथ ही अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमसे की है उत्तराखंड से श्रीमती माहेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, शौर्य और दिनेश ने। अगला मैसेज हमें मिला है रामपुर ग्राम से दिव्या नागला, कपिल गौतम, भारती गौतम, करीना गौतम और स्वाति गौतम ने। तो आइए श्रोता, आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत फिल्म हीरो से अनुराधा पौंडवाल और मनहर उदास की आवाज़ों में।

में अपनी प्रतिक्रिया, सुझाव या आलोचना के लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं आपका पत्र मिला कार्यक्रम में। हमारा पता है आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन कोड है 248001। साथ ही व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें मैसेज लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088000731। इसी के साथ सूचना समाप्त हुई। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वत्स फरमाइश आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अगली फरमाइश को शामिल करते हैं जो हम तक पहुंची है। कड़कताल जिला रंगारेडी तेलंगाना से कानुगुला गोपाल महेश्वरी प्रवलिका विष्णुवर्धन विघ्नवेश की। इसके साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुँचा है। गाँव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन और उनके परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से। इसके साथ ही एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा भी हमसे इसी गीत को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। अगली फरमाइश हमें मिली है मोर टका माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम पटेल, ज्योति पटेल, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल की। अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमसे की है कामठी नागपुर से श्रीमती रीमा जोशी, श्रीमती अमृता शर्मा, श्रीमती किरण शर्मा, कैलाश शर्मा, आशीष कुमार शर्मा ने। अगला मैसेज हम शामिल करें जो हम तक पहुंचा है निज़ामाबाद तेलंगाना से शेख अब्दुल अली, निगार परवीन, हफ्सा अनम, समूरा नमीन, मनुजा महीन, आयजा मोहम्मद, मिसाबुल्ला और मोहम्मद उजैफा अजलान की। अगला मैसेज मिला है आप है टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, आसमा श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर। अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंचा है धनूरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू। इसके साथ ही अगली फरमाइश हमें मिली है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव की। भोपालगढ़ राजस्थान से हमें मैसेज भेज रहे हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। तो आइए आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है जुनून, जिसको गाया है अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम वत्सल फरमाइश में अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमसे की है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने। साथ ही गांव डाकघर निमनाबाद, जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कमरजीत कौर भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमसे कर रहे हैं। अगला मैसेज हम शामिल करें जो हम तक पहुंचा है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका खोरवाल की। इसके साथ ही कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी भी हमसे गीतों को सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप मोदी। साथ ही वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुस की फरमाइशें हमें मिली हैं। अगला मैसेज हम शामिल करें जो हम तक पहुंचा है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह की। अगली फरमाइश हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुंची है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक। साथ ही शेरवानी स्कूल गंजडंडवारा से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी भी अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमसे कर रहे हैं। किशोर नगर अमरावती से अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं हीरामन शेंडे और सिद्धार्थ गोनाने का। अगला मैसेज हमें मिला है शांति निवास लेगांव रेलवे, जिला अमरावती महाराष्ट्र से कुमारी कल्पना कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े, दीपक कुरहाड़े। साथ ही अगला मैसेज हम शामिल कर रहे हैं जो हम तक पहुँचा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्ना सुरलकर और आराध्या सुरलकर की। इसके साथ ही खालापार मुजफ्फरनगर से अगले गीत की फरमाइश हमें मिली है सुभाष योगी, सुशील योगी और राजू मिगलानी की। तो आइए श्रोताओं, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है मर्यादा और जिसको गाया है लता मंगेशकर ने।

कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है खालापार मुजफ्फरनगर से साहिना परवीन, फातिमा, खुशबू, आयजा और मोहम्मद अदीब की। इसके साथ ही अगली फरमाइश हमें मिली है छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास की। साथ ही सज्जन साहू, हेमंत नावदेव, धर्मदास बधवानी भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमसे कर रहे हैं। तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख भी इसी गीत को सुनने की फरमाइश हमसे कर रहे हैं। कार्यक्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मशरूर, साइना हसन, अक्षा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सदाम और आदिब की। अगली फरमाइशें हमें मिली हैं ग्राम उमेडा निज़ामाबाद तेलंगाना से मोहम्मद जैनुद्दीन, आबेदा आयशा और स्नेहा भानु जैनुद्दीन की। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हमें मैसेज भेज रहे हैं नाशिर शेख, नाजिया नाशिर, साजिद और शाहिद। अगले गीत को सुनने की फरमाइश हमसे कर रहे हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी, हिना कौसर, मोहल्ला हलवाईयान, शेरकोट ज़िला बिजनौर से। इसके साथ ही गांव जाखोद राजस्थान से हमें मैसेज कर रहे हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। हैदराबाद से हमें अगला मैसेज भेज रहे हैं बी एन रेड्डी, मोनिका बालू और विनय कुमार। इसके साथ ही कुर्मा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से हमें मैसेज भेज रहे हैं दिलदार मेरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत मेरी। तो आइए श्रोताओं आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम, जिसको गाया है किशोर कुमार और उषा खन्ना ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम वत्से फरमाइश यहीं पर संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। अब हमारे श्रोता सुनेंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस AI के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्ष में भारत और फ्रांस के बीच व्यापार दोगुना हो गया है। उन्होंने आधार, UPI, डिजी लॉकर और इंडिया स्टैक जैसी डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइचे ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने स्पष्ट किया है कि विजिंगम बंदरगाह में हिस्सेदारी में कोई भी बदलाव सरकार की अनुमति के बिना संभव नहीं है। श्री सतीशन ने यह भी बताया कि एक विदेशी कंपनी द्वारा 49% हिस्सेदारी के निवेश की घोषणा राज्य सरकार को सूचित किए बिना की गई थी।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़ोतरी हुई। सेंसेक्स 511 अंक बढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी लगभग 160 अंक की वृद्धि के साथ 24,336 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council Monitoring Team report of the 29th of July 2025, mentioning the resistance front. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities, including Al-Qaeda, ISIS, Daesh, Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. The finance minister invited French businesses and investors to partner with India in its journey towards Viksit Bharat 2047. She called for strengthening the India-France strategic partnership to achieve shared prosperity. She said India and France are trusted partners in shaping the global AI ecosystem. She noted that this partnership offers new opportunities in trusted AI, digital infrastructure and next-generation technologies. India has stepped up its humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Sharing pictures of the ongoing medical relief efforts on social media, the Ministry of External Affairs said the Army Field Hospital continues to provide medical care to affected communities in Venezuela. While the Indian Embassy in Venezuela has said that India's humanitarian relief efforts in the South American nation have received widespread acclaim from the public for its professionalism and quality of service. The Department of Youth Affairs today organized an industry association conclave of My Bharat in New Delhi. Leading industry bodies including ASSOCHAM, FICCI, CAIT and CII participated in the conclave. The event aimed to introduce the My Bharat ecosystem to industry stakeholders and invite industry associations, corporates and public sector undertakings to join the initiative. The conclave also focused on exploring frameworks for future collaboration on youth development and aligning national youth goals with industry-led initiatives. Speaking on the occasion, Union Minister for Youth Affairs and Sports, Dr. Mansukh Mandavia, said the youth of the country are the key drivers in realizing the vision of a Viksit Bharat by 2047. The annual Sri Amarnath Ji Yatra began this morning from both Pahalgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Lakhs of devotees from across India are expected to undertake the sacred journey to the Amarnath Cave Shrine during the 57-day-long pilgrimage. Pilgrims travel to the holy Amarnath Cave, located at an altitude of nearly 3,888 meters, to seek the blessings of Lord Shiva and witness the naturally formed ice shivling. The Yatra will culminate on August the 28th, coinciding with the festival of Raksha Bandhan. In Ukraine, 27 people have been killed and 90 others were injured in massive drone and missile strikes by Russia on capital Kiev. Damage was recorded in 30 locations across Kiev, mainly residential buildings and civilian infrastructure. Russia's defense ministry said in a statement the deadly bombardment on Wednesday night was in response to Ukraine's long-range strikes on its civilian infrastructure. In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16. In Vancouver in Canada, Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And with that, we end this news bulletin.
2: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
3: ये आकाशवाणी देहरादून है, अब आप योशिता पांडे से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य खेल विश्वविद्यालय गोलापार हल्द्वानी में आगामी माह से सत्र शुरू करने के निर्देश दिए। हरेला पर्व पर देहरादून जिले में 15,50,000 से अधिक पौधों का रोपण किया जाएगा। भारी बारिश को देखते हुए पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट पर अगले आदेश तक रोक। अब तक 52,441 श्रद्धालुओं को इनर लाइन परमिट जारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश में आपदा प्रबंधन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड निदेशक मंडल ने लखवाड़ परियोजना की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती को स्वीकृति दी। कर्नल एसएस राज पुरोहित उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रधानाचार्य बने। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले पर सुनवाई के बाद 16 जुलाई की तिथि नियत की। देहरादून में जिला योजना समिति गठन की प्रक्रिया शुरू, 4 जुलाई तक सुझाव मांगे। आंध्र प्रदेश कैडर के आईएफएस अधिकारी डॉ. राजेंद्र प्रसाद खजूरिया ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून के निदेशक का पदभार ग्रहण किया। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने केदारनाथ मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालन के लिए जिला पंचायत में पंजीकरण कराना अनिवार्य किया। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद मदरसों को नियमित शिक्षा व्यवस्था के दायरे में लाने की प्रक्रिया तेज हुई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नियोजन विभाग को व्यय वित्त समिति की बैठकों में पीएम गतिशील प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के निर्देश दिए और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 12:12 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत लता मंगेशकर के गाए शब्द।

नमस्कार अभिनंदन, मेनू स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला जगत में। और आज के इस खूबसूरत सफर की हम सफर रहूंगी मैं किरण जोशी, जिसमें हम जानेंगे कुछ जानकारियां और साथ में होगा गीत संगीत और कुछ टिप्स भी। मेनू माँ परिवार की पहली शिक्षिका और बच्चे की पहली संरक्षिका होती है। बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य की शुरुआत भी माँ की जागरूकता से ही होती है, क्योंकि माँ ही बच्चे की हर छोटी से छोटी चीज़, उसके व्यवहार को ध्यान से देखती है, उसे नोटिस करती है, जिससे उसका बच्चा स्वस्थ रहे, उसे कोई परेशानी ना हो सके। मेनू कहते हैं ना कि बच्चे की मुस्कान है सबसे बड़ी पहचान, स्वस्थ बचपन से ही बनेगा सशक्त हिंदुस्तान। तो बहनों, बच्चों के स्वस्थ रहने के लिए पोलियो अभियान भी एक अहम रोल निभाता है। पोलियो एक ऐसी बीमारी है बहनों, जो बच्चे के जीवन भर के लिए दिव्यांग बना सकती है। पोलियो एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है, जो मुख्य रूप से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। ये वायरस तंत्रिका तंत्र यानी बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाता है, जिससे गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए पोलियो से बचाव के लिए नवजात शिशु से 5 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को हर पल्स पोलियो अभियान के दौरान पोलियो की 2 बूंद यानी पोलियो ड्रॉप्स अवश्य पिलानी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे जीवन भर की गंभीर बीमारी से बच सके। बहनों, पल्स पोलियो अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य बच्चों को पोलियो माइलाइटिस से बचाव और देश को इस बीमारी से मुक्त रखना है। इस अभियान के दौरान जगह जगह पोलियो बूथ बनाए जाते हैं, जहां माता पिता बच्चों को दवा पिलाते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। वहीं यदि कोई बच्चा दवा पीने से छूट गया हो, तो स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर भी दवा पिलाती हैं। मैंने हमारा देश पोलियो से पूरी तरह मुक्त घोषित किया जा चुका है, फिर भी बचाव और सतर्कता के लिए नियमित अंतराल में ये अभियान चलाया जाता रहता है। इसलिए बहनों, 2 बूंद जिंदगी की हर बच्चे तक पहुंचे, यही हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और हर बच्चा अपनी जिंदगी को खुल के जी सके, मुस्कुरा सके, इसी आशा के साथ आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, जिसे आवाज दी है जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी ने, और फिल्म का नाम है डियर जिंदगी।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: बहनों एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम महिला जगत में। बहनों कविता केवल शब्दों का सुंदर संयोजन नहीं होती बल्कि वो भावनाओं की वो सरिता है जो सीधे हृदय को स्पर्श करती है। एक संवेदनशील कवि या कवित्री अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज प्रकृति रिश्तों नारी शक्ति और जीवन के विविध रंगों को सहजता और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो बहनों आइए सुनते हैं ऐसे ही विचारों की सादगी और सुंदर संगम से परिपूर्ण काव्य पाठ। और हमारी आज की कवित्री हैं श्रीमती प्रेमलता सजवान।
2: नमस्कार बहनों, मेरा नाम है प्रेमलता सजवान और मैं सुना रही हूँ आपको कविताएं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है सुनो बरखा। सुनो बरखा टिप टिप पड़ जाना बेहिचक माथे पर जब भी आसमान की तरफ आंख भरकर देखूं, आखिर तुम्हारा इंतजार जो है मुझको। सुनो बरखा आंखों की पलकों पर पल दो पल ही सही मोती सा ठहर जाना, दिखाना कितनी पारदर्शी दिखती है ये दुनिया। फिर जब घुल मिल जाओ तुम आंसुओं की धारा में तो बह जाना होले से गालों के मुलायम नर्म एहसासों के साथ ओठों को छूते हुए। सुनो बरखा सुन लेना मेरे ओठों का फुसफुसाना कि बहुत सी बातें हैं अनकही सी जो तुमसे कहनी है। सुनो बरखा तुम्हें भी तो बतानी होंगी ना कि कितने जतन से बूंद बन बन कर तुम पहुंची हो मुझ तक, तो चुपके से मेरे कानों में कह जाना। हाँ ये बातें सिर्फ हम दोनों के बीच रहेंगी वादा है मेरा। सुनो बरखा जब भिगाओगी तुम मेरे काले लंबे गेसुओं को तो किसी लट को अपनी बूंदों संग अटखेलियां खेलने देना। वो जो लट है ना घुंघराली सी शर्मीली सी कब से तुम्हारे स्पर्श को तरस जो रही है। सुनो बरखा तन के साथ मन को भी भिगा जाना, बहुत ताप है उमस है जिंदगी की भागम भाग में सूख रहा है मन का कोना, हर एक एहसास को तरबतर भिगा जाना कि फिर कोई भी मौसम आए जाए तेरी छपचपाहट हर मौसम में गुदगुदा जाए। सुनो बरखा हर बार की तरह रह जाए तेरे आने का इंतजार क्योंकि फिर आसान हो जाती है जिंदगी की कसमकस। सुनो बरखा टिप टिप पड़ जाना बेहिचक माथे पर जब भी आसमां की तरफ आंख भर कर देखूं, आखिर तुम्हारा इंतजार जो है मुझको। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है एहसासों की पोटली। चलो सफर की तैयारी कर लें साथ में कलम दवात रख लें। चलो सफर की तैयारी कर लें साथ में कलम दवात रख लें। रख लें कुछ कोरे पन्ने मन के, रख लें कुछ कोरे पन्ने मन के पोटली भर एहसास रख लें। अब कुछ रस्तों का दर्द लिख लें, अब कुछ रस्तों का दर्द लिख लें। काली अंधेरी रातें सर्द लिख लें, राहगीरों के पद चिन्हों की धूल उड़ाती गर्द लिख लें। राहगीरों के पद चिन्हों की धूल उड़ाती गर्द लिख लें। कूची तूली का रंग भी रख लें, कूची तूली का रंग भी रख लें। जीवन पथ पर रंग हैं रंग लें, कुछ बेरंग रिश्तों के मन पर, कुछ बेरंग रिश्तों के मन पर इंद्रधनुषी खुश रंग हैं भर लें। चलो सफर की तैयारी कर लें साथ में कलम दवात रख लें। गीली माटी पर उभार निशा लें, रश्मि रथ की बदल दिशा लें। गीली माटी पर उभार निशा लें, रश्मि रथ की बदल दिशा लें। कुछ उजली आशा बोकर, कुछ उजली आशा बोकर फसल में मिलना तय हिस्सा ले लें, फसल में मिलना तय हिस्सा ले लें। चलो सफर की तैयारी कर लें, साथ में कलम दवात रख लें, रख लें कुछ कोरे पन्ने मन के, पोटली भर एहसास रख लें, पोटली भर एहसास रख लें। मेरी अगली कविता का शीर्षक है पतंग से डोर तक। तुम पतंग हो खूब ऊंचा उड़ो, तुम पतंग हो खूब ऊंचा उड़ो, डोर की यही अभिलाषा है। हाँ, डोर की यही अभिलाषा है। डोर से बनना मजबूरी नहीं जरूरत है तुम्हारी, डोर से बनना मजबूरी नहीं जरूरत है तुम्हारी। बंधन समझ हाथ झटकोगे ओंधे मुंह गिरोगे, बंधन समझ हाथ झटकोगे ओंधे मुंह गिरोगे, रोक टोक से चिड़ोगे तो पेंग नहीं भर पाओगे, रोक टोक से चिड़ोगे तो पेंग नहीं भर पाओगे। समय के काल चक्र में तुम्हारा भी तो डोर बनना तय है, समय के काल चक्र में तुम्हारा भी तो डोर बनना तय है। तुम पतंग हो खूब ऊंचा उड़ो। मेरी कविता का शीर्षक है जीवन की सच्चाई। आसमां में बादल रहे हैं गरज, आसमां में बादल रहे हैं गरज, पर बरस नहीं रहे। मर्यादा की सीमाओं संग देश दुनिया का ज्ञान रखेंगे, जमीन न मिले गर तो आसमान में उड़ान भरेंगे। अपने तर्कस में हम हर तीर कमान रखेंगे, अपने तर्कस में हम हर तीर कमान रखेंगे। कलम की जगह कलम, कलम की जगह कलम, या तलवार म्यान रखेंगे, या तलवार म्यान रखेंगे। जमीन न मिले गर तो आसमान में उड़ान भरेंगे। अबला समझना भूल है, अबला समझना भूल है, हुंकारे गीत गान रखेंगे, हुंकारे गीत गान रखेंगे। बन ममता की छाँव सदा देश धर्म की शान रखेंगे, बन ममता की छाँव सदा देश धर्म की शान रखेंगे। जमीन मिले गर तो आसमां में उड़ान भरेंगे, हम अपने पंखों में हौसलों की जान भरेंगे, हौसलों की जान भरेंगे। मेरी कविता का शीर्षक है अलग सा। सबके जैसा नहीं है वो, सबके जैसा नहीं है वो, अलग है भीड़ में, सबके जैसा नहीं है वो, अलग है भीड़ में। फिर सबके जैसा खाना पानी और

0: पर्यावरण क्यों? फिर सबके जैसा खाना, पानी और पर्यावरण क्यों? सबके जैसी उम्मीदें और आकांक्षाएं क्यों? सबके जैसी उम्मीदें और आकांक्षाएं क्यों? सबके जैसा नहीं है वो, अलग है भीड़ में, अलग है भीड़ में। धन्यवाद।
1: बहनों, अभी आप सुन रही थी श्रीमती प्रेमलता सजवाण द्वारा प्रस्तुत काव्य पाठ। बहनों, आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तनाव लगभग हर व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है। अब चाहे वे पढ़ाई का दबाव हो, नौकरी की जिम्मेदारियां हो, घर परिवार की चिंताएं हो या भविष्य की चिंता, कभी ना कभी हम सभी तनाव का अनुभव करते ही हैं। लेकिन मैनू, हम छोटी छोटी अच्छी आदतों से अपने इस तनाव से मुक्त होकर खुशहाल जीवन की ओर भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, छोटे छोटे सकारात्मक कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। तो बस हर दिन अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए, रेगुलर व्यायाम कीजिए, म्यूजिक सुनिए, पेड़ पौधे लगाइए, संतुलित भोजन करिए, पर्याप्त नींद लीजिए, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ खेलिए, बातें करिए, उनकी बातें सुनिए, अपने दोस्तों, मित्रों, प्रियजनों से खुलकर बातें कीजिए और जीवन के हर छोटे छोटे सुख का आनंद लीजिए। देखिए फिर आपका तनाव कैसे छूमंतर हो जाता है और आप हंसने मुस्कुराने लगती हैं और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होने लगता है। तो बस बहनों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हर पल को जीना शुरू करिए और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और अब इस गाने को भी एंजॉय करिए और मुस्कुराइए।

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।

0: और अब बहनों, चलते चलते कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जो कि आज हम लाए हैं औषधीय पौधों के घरेलू उपयोग संबंधी। बहनों, तुलसी, अदरक, हल्दी, नीम, एलोवेरा, पुदीना, अजवाइन, गिलोय, ये सभी ऐसे पौधे हैं जो ज़्यादातर हम सभी के घरों में आसानी से किचन गार्डन में या गमलों में लगे ही होते हैं और जो हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी भी होते हैं। तो जैसे तुलसी और अदरक का उपयोग हम सर्दी, खांसी, जुखाम, गले की खराश में काढ़े या चाय के रूप में करते ही हैं, वैसे ही हल्दी को चोट लगने पर हल्दी वाला दूध सूजन गले की तकलीफ में भी यूज़ करते हैं। वहीं नीम की पत्तियों का उपयोग बहनों त्वचा की स्वच्छता, दांतों की देखभाल और पुदीने की पत्तियों का उपयोग पाचन और गर्मी में ताजगी का एहसास देने के लिए किया जाता है। ऐसे ही बहनों, एलोवेरा जेल का यूज़ भी हम अपनी स्किन केयर और कहीं कट गया हो या जल गया हो वहाँ पर भी उसे आराम देने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन बहनों, समस्या गंभीर होने पर घरेलू इलाज न करके तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए बहनों, स्वस्थ रहे, जागरूक रहे और मुस्कुराते रहे और जीवन का भरपूर आनंद ले। इसी खूबसूरत संदेश के साथ आशा करती हूँ आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। बहनों, कार्यक्रम संबंधी सुझाव और प्रतिक्रिया देने के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले कैपिटल लेटर में टाइप करना है MJ स्पेस अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम स्पेस अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं और भेज देनी है हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7088-000-731, यानी कि बहनों 7088-000-731। साथ ही बहनों, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पत्र व्यवहार का पता है कार्यक्रम महिला जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी निकट रिस्पना पुल हरिद्वार बाईपास रोड देहरादून। हमारा पिन कोड नंबर है 248001। और बहनों, अभी मिलते हैं एक छोटे से संदेश के बाद।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा, बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
1: ओ, 8700-001-4242। लो, अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700-001-4242 पर।
1: 8700-001-4242।
0: तो बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम महिला जगत। आशा है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। और अब बहनों, घड़ी हमें इशारा कर रही है कि समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। तो अब अपनी दोस्त, अपनी सखी किरण जोशी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम महिला जगत FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अब हमारे श्रोता सुनेंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्याय के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं

0: दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेस ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मिली मंजूरी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालन पर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त। प्रत्येक संचालक को जिला पंचायत में अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा। प्रदेश भर में कल से 18 जुलाई तक आयोजित होगा 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा। शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले रोड़ी बेलवाला में तैयारियां तेज। निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए गए निर्देश। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड UJVNL के निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी देते हुए राज्य की प्रमुख जल विद्युत और पंप स्टोरेज परियोजनाओं को आगे बढ़ाने संबंधी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सचिवालय में मुख्य सचिव व UJVNL के अध्यक्ष आनंद वर्धन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपनल के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को राज्य सरकार के शासनादेश के अनुरूप समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति की गई। निदेशक मंडल ने 81 मेगावाट क्षमता की आराकोट त्यूणी जल विद्युत परियोजना और 600 मेगावाट क्षमता की इच्छाड़ी पंप्ड स्टोरेज परियोजना के पहले चरण की आवश्यक स्वीकृतियां शीघ्र प्राप्त करने के निर्देश दिए। इसके अलावा 300 मेगावाट क्षमता की लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजनाओं के शियर जोन उपचार से जुड़े अतिरिक्त कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति भी प्रदान की गई। बैठक में सिंचाई विभाग से हस्तांतरित सौंग पंप्ड स्टोरेज परियोजना की आवश्यक औपचारिक स्वीकृतियां शीघ्र प्राप्त करने और लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालकों द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार और मनमानी की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना पंजीकरण के किसी भी संचालक को यात्रा मार्ग पर संचालन की अनुमति नहीं होगी। इन शिकायतों पर पहले भी कार्रवाई की गई, लेकिन अब ऐसी घटनाओं पर स्थायी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। जिलाधिकारी विशाल शर्मा ने निर्देश दिए कि प्रत्येक घोड़ा खच्चर चालक को जिला पंचायत में अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण के संचालन करते पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
3: श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल मार्ग में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कभी कभी घोड़े खच्चर की सेवा लेनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं जहां पर घोड़े खच्चरों के जो संचालक हैं, जो हॉकर हैं, उनके द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है और जो प्रकरण संज्ञान में है उसमें कार्रवाई भी की, परंतु इस तरीके के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो इस संदर्भ में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो भी हॉकर घोड़े खच्चर का संचालन करेंगे उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जिला पंचायत में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, फाइन भी होगा, अन्य विधिक कार्रवाई भी होगी। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा सभी होकर अपना रजिस्ट्रेशन जिला पंचायत रुद्रप्रयाग में करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यदि कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हो।
2: पौड़ी विकास भवन सभागार में विकसित भारत जी राम जी मिशन पर जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रतिभागियों को मिशन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजकुमार पोरी ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं बल्कि टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आधुनिक तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा विकसित गांव का निर्माण करना है।
4: इसमें जो योजना जो पहले चलती थी उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए ये नई योजना का लॉन्चिंग हुई है और इसमें बहुत सारे काम 200 से ऊपर काम इसमें सम्मिलित किए गए हैं जिससे कि ग्राम स्तर पर ग्राम सभाओं का पूर्ण रूप से विकास किया जाए। और जो आदरणीय मोदी जी का सपना है कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनना है, इस दिशा में हमको प्रथम इकाई के रूप में अपने ग्राम सभाओं को विकसित करना होगा और हमारी ग्राम सभाएं विकसित होंगी तो हमारा प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तो भारत जो है 2047 में विकसित हो जाएगा।
2: मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी ने बताया कि मिशन के अंतर्गत अब रोजगार के अवसरों का दायरा और अधिक व्यापक किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना में डिजिटल निगरानी प्रणाली, EKYC आधारित सत्यापन, जियो टैगिंग, ऑनलाइन मस्टर रोल तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से पारदर्शी भुगतान व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। इससे कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
2: हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर मेला प्रशासन ने लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रोड़ी बेलवाला क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मेले के शुभारंभ से पहले सभी निर्माण कार्य सड़क

0: सुधार और यातायात संबंधी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएं ताकि कांवड़ियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मेला अधिकारी सोनिका के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक निशा यादव और अपर मेला अधिकारी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में मेला प्रशासन और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने रोड़ी बेल वाला क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान हाईवे से पार्किंग क्षेत्र तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए रैंप निर्माण, बैरिकेडिंग, यातायात नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने कांवड़ियों की सुरक्षा और निर्बाध आवागमन की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि इस बार कांवड़ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। राज्य सरकार ने सेवा, सुशासन और समर्पण की भावना के अनुरूप प्रदेश भर में कल से 18 जुलाई तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये कार्यक्रम जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत संचालित होगा। सेवा पखवाड़े के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजना से आच्छादित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके साथ ही विकास कार्यों एवं सरकार की जनहितकारी उपलब्धियों की जानकारी भी आमजन तक पहुंचाई जाएगी। इसी क्रम में नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि जिले में इस कार्यक्रम के तहत विकासखंड और तहसील स्तर पर शिविरों का आयोजन कर विभिन्न विभागों के माध्यम से जन समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया जाएगा, साथ ही आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
1: 4 जुलाई से प्रदेश व्यापी अभियान जो चलाया जा रहा है, उस सेवा सप्ताह के लिए जिला नैनीताल में विकास खंडवार रोस्टर डिसाइड कर लिया है। बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन होगा और जो प्रमुख 2 दर्जन विभाग हैं वो स्टॉल्स का संचालन करेंगे और उसके साथ जन उपयोगी सुविधाएं हैं वो मौके पर ही निस्तारित की जाएंगी। इसके अलावा जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और जो उपलब्धियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकार की, उस पर भी परिचर्चा की जाएगी।
0: भारतीय वन सेवा के आंध्र प्रदेश कैडर के 1991 बैच के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खजूरिया ने देहरादून स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। उन्होंने भारती का स्थान लिया है जो 30 जून को सेवानिवृत्त हुई थी। कार्यभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर खजूरिया ने अकादमी के संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के साथ बैठक की और संस्थान में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण व अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने अमृतकाल के लक्ष्यों के अनुरूप भारतीय वन सेवा के प्रशिक्षण को और प्रभावी व आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता जताई। डॉक्टर खजूरिया इससे पहले आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मिली मंजूरी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालन पर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त। प्रत्येक संचालक को जिला पंचायत में अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा। प्रदेश भर में कल से 18 जुलाई तक आयोजित होगा 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा। शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले रोड़ी बेलवाला में तैयारियां तेज, निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए गए निर्देश। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी देहरादून से। अपराह्न के 1:15 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसकी शुरुआत कर रहे हैं एक प्यारे से गीत के साथ जिसको गाया है साधना सरगम और उदित नारायण ने। फिल्म का नाम है क्यों हो गया ना।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत फिल्म एक्शन रिप्ले से, जिसको गाया है श्रेया घोषाल ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है चांदनी चौक टू चाइना। इस गीत को गाया है शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल ने।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा

0: रखी है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है,
1: जी,
0: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओ, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: हाँ, 2000 साल पहले।
4: नानी माँ?
6: हाँ निधि।
4: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
6: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
4: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
6: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
4: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
6: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
4: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
6: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
4: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
6: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
4: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
6: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
4: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
6: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
4: मामा जी, मामा जी।
7: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
4: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
7: ये तो बहुत अच्छी बात है
4: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
7: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
4: ये किसी खुदरी से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
7: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये खुरदरी शीट

0: दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
1: अच्छा, भोज वृक्ष।
0: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
2: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
0: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
2: अच्छा।
0: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
1: ये किस भाषा में है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
1: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
0: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
1: अच्छा।
0: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोदकर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
2: अच्छा।
0: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
2: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
2: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
2: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
1: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
1: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?

0: आशा है श्रोता मित्रों आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
1: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
0: जी,
1: लेकिन आज श्रोताओं आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
0: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया।
1: जी,
0: इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
1: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
2: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूं, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूं, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को

0: दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की इस हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
3: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
4: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कार्यों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
3: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
4: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनके समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
5: अलख निरंजन।
6: साधु बाबा।
5: अब अच्छा,
6: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
5: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
6: क्या?
5: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
6: है?
5: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक,

0: बड़ा भारी इंतजाम है।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: बहुत बड़ी फौज है।
0: और नहीं तो क्या बच्चा। अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है। बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
1: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
0: अच्छा,
1: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
0: है? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
1: बिल्कुल है।
0: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
1: उसका भी इंतजाम है।
0: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
1: देखो, तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
0: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
1: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
0: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
1: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूं। बदन सिंह रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।

0: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनु, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनु।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनु बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ,
4: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
5: श्रोताओ, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अब हमारे श्रोता समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया, श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से महेश बाक्षा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इसमें निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी

0: सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह कैराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंप आए, जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
2: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
3: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी देहरादून से बोल रहे हैं।

जय हिंद सैनिक साथियों। साथियों, कुछ कहानियाँ सिर्फ इतिहास का हिस्सा मात्र नहीं होती, वे एक राष्ट्र की आत्मा बन जाती हैं। झंगार की धरती पर लिखी गई ऐसी ही एक कहानी है, साहस, कर्तव्य और मातृभूमि के सर्वोच्च बलिदान की कहानी। हर साल 3 जुलाई को भारतीय सेना झंगार दिवस मनाती है। ये दिन उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने 1947-48 के भारत पाक के युद्ध में जम्मू कश्मीर के झंगार और नौशेरा क्षेत्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। ये दिन खासकर भारत के दो वीर सैनिकों के लिए मनाया जाता है, जिनमें से एक हैं वीर सैनिक ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और नायक जद्दूनाथ सिंह, जिनके अदम्य साहस और देशभक्ति को याद करने के अवसर में ये दिन मनाया जाता है। आज के हम कार्यक्रम में हम इन्हीं दो सैनिकों के बारे में चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आपको सुनाते हैं ये देशभक्ति गीत फिल्म केसरी से बी पराग की आवाज़ में।

श्रोताओं, ब्रिगेडियर उस्मा, श्रोताओं, 1947 में जम्मू कश्मीर का झंगार क्षेत्र उस समय एक रणनीतिक केंद्र था। यह मीरपुर, कोटली और नौशेरा को जोड़ने वाला मार्ग था। जो भी सेना झंगार क्षेत्र पर नियंत्रण रखती, वो पूरे क्षेत्र की सैन्य गतिविधियों को प्रभावित कर सकती थी। दिसंबर 1947 में पाकिस्तानी समर्थित कबायली हमलावरों और सैनिकों ने झंगार पर कब्जा कर लिया। यह भारतीय सेना के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन भारतीय सेना के एक बहादुर अधिकारी ने उसी दिन संकल्प लिया कि वो झंगार क्षेत्र को वापस लेकर रहेंगे, और वो अधिकारी थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिन्हें बाद में पूरा देश नौशेरा का शेर कहने लगा। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं ये अगला गीत फिल्म न्यूयॉर्क से, जिसको गाया है केके ने।

श्रोताओं, ब्रिगेडियर उस्मान का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। विभाजन के बाद पाकिस्तान से उच्च पद और सम्मान का प्रस्ताव उन्हें दिया गया, लेकिन बिना हिचकिचाहट के उन्होंने भारत को चुना। जब झंगार क्षेत्र हाथ से निकला तो उन्होंने प्रण लिया कि जब तक झंगार को वापस नहीं लेंगे तब तक बिस्तर पर नहीं सोएंगे। वे जमीन पर चटाई बिछाकर सोते थे। ये केवल एक सैनिक का संकल्प नहीं था बल्कि मातृभूमि के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रतीक था। मार्च 1948 में भारतीय सेना ने एक बड़ा अभियान शुरू किया। कई दिनों की कठिन लड़ाई के बाद झंगार को फिर से भारतीय नियंत्रण में लिया गया, लेकिन दुश्मन लगातार हमला करता रहा। आज ही के दिन यानी कि 3 जुलाई 1948 को झंगार की रक्षा करते हुए दुश्मन के गोले का एक टुकड़ा ब्रिगेडियर उस्मान को लगा और वो वीरगति को प्राप्त हो गए। उस समय वो 35 वर्ष के थे। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया और आज भी उनका नाम भारतीय सेना में साहस और देशभक्ति का पर्याय माना जाता है। आइए कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनाते हैं, फिल्म स्लमडॉग मिलीनियर से, जिसको गाया है यार रहमान, सुखविंदर सिंह, महालक्ष्मी अय्यर, तन्वी शाह और विजय प्रकाश ने।

सैनिक साथियों, अब हम बात करेंगे झंगार दिवस के एक और नायक की, नायक जदुनाथ सिंह की। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में जन्मे जदुनाथ सिंह बचपन से ही साहसी और दृढ़ निश्चयी थे। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में भी अपनी बहादुरी दिखाई, लेकिन उनका सबसे बड़ा पराक्रम 6 फरवरी 1948 को नौशेरा के तैनधार क्षेत्र में देखने को मिला। दुश्मन ने भारी संख्या में हमला किया। जदुनाथ सिंह की छोटी सी टुकड़ी ने बहादुरी से मुकाबला किया। उनके अधिकांश साथी घायल और शहीद हो चुके थे, लेकिन वे अकेले ही मोर्चे पर डटे रहे। घायल होने के बावजूद उन्हें अपने स्टेन गन उठाई और दुश्मनों का मुकाबला किया। उन्होंने दुश्मनों को आगे बढ़ने से रोका और अपने प्राणों की आहुति

लगी थी। उनकी इस अनुपम वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आए कार्यक्रम में सुनते हैं एक और देशभक्ति गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। फिल्म का नाम है भुज।

श्रोताओं, आज जब हम 3 जुलाई को झंगार दिवस मनाते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि भारतीय सीमाएं सिर्फ हथियारों से सुरक्षित नहीं रहती, बल्कि उन सैनिकों के साहस, त्याग और समर्पण से सुरक्षित रहती हैं जो अपने आज को हमारे कल के लिए कुर्बान कर देते हैं। ब्रिगेडियर उस्मान ने सिखाया कि सच्चा देश प्रेमी जाति, धर्म या भाषा से ऊपर होता है। वहीं नायक जदुनाथ सिंह ने दिखाया कि एक अकेला सैनिक भी इतिहास बदल सकता है। श्रोताओं, साथ ही अपने कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे 11वीं गोरखा राइफल्स के एक वीर अधिकारी कैप्टन मनोज कुमार पांडे की। 1999 के कारगिल युद्ध में उन्होंने खालुबार की पहाड़ियों पर दुश्मन के कई बंकरों पर कब्जा किया और लड़ते हुए आज ही के दिन यानी कि 3 जुलाई 1999 को वीरगति प्राप्त की। उनके साहस और नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आइए अब कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनाते हैं। शंकर महादेवन की आवाज़ में फिल्म का नाम है मणिकर्णिका।

0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रागिनी बिंजोला से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में PCS मुख्य परीक्षा 2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों और कृषि व कृषक कल्याण विभाग में व्यक्तिगत सहायक के रूप में चयनित 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के भिलाड़ू में प्रस्तावित स्टेडियम के निर्माण को लेकर खेल विभाग, वन विभाग और पेयजल निगम के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना को अब शहर के प्रमुख

0: पर्यटन स्थलों तक विस्तार देने की तैयारी शुरू। आवास व शहरी विकास सचिव डॉ. राजेश कुमार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मसूरी का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रदेश भर में कल से 18 जुलाई तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत संचालित होगा। इस दौरान शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के निदेशक मंडल की सचिवालय में हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी दी गई। राज्य की प्रमुख जल विद्युत और पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं को आगे बढ़ाने संबंधी कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालन को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त। प्रत्येक घोड़ा खच्चर संचालक को जिला पंचायत में अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारी बारिश के बावजूद इन दिनों हेमकुंड साहिब यात्रा सुचारू रूप से जारी। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने से 40 दिनों में रिकॉर्ड 1,70,000 से अधिक श्रद्धालु मत्था टेक चुके हैं। और मौसम विभाग ने देहरादून टिहरी पौड़ी नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र को। दिन के 3:02 हो रहे हैं। अब पेश है कार्यक्रम गाने नए तराने, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं एक प्यारे से गीत के साथ, जिसको गाया है कुणाल गांजावाला ने। फिल्म का नाम है सलाम नमस्ते।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म साथियां से, और इस गीत को गाया है के शान कुणाल और परवीन माही ने। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और इस गीत में म्यूजिक दिया है AR रहमान ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे कार्यक्रम गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए अब कार्यक्रम को जारी रखते हुए अगला गीत आपको सुनाते हैं। फिल्म का नाम है जाने तू या जाने ना, और इस गीत को गाया है राशिद अली ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्यारा सा गाना आपको सुनाते हैं फिल्म लव आजकल से, जिसको गाया है मास्टर सलीम, नीरज श्रीधर और सुजैन डी मेलो ने।

आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए तराने आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आइए संगीत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पेश है ये अगला खूबसूरत गीत सोहम चक्रवर्ती की आवाज़ में। फिल्म का नाम है लाइफ इन अ मेट्रो।

श्रोताओं, आप सुनते हैं एक और बेहतरीन गीत जो आपके दिल को छू जाएगा, केके की आवाज़ में, बजरंगी भाईजान फिल्म से।

0: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
1: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
0: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
1: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
0: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, एफएम, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
2: जो जस
1: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
0: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
3: श्रोताओं, आइए अब आपको कार्यक्रम गाने नए तराने का अंतिम गीत सुनाते हैं। फिल्म पार्टनर से सोनू निगम, साजिद अली और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप रागिनी बिंजोला से सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में PCS मुख्य परीक्षा 2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों और कृषि व कृषक कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक के पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की भारत में डिप्टी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव इजाबेल ने मुलाकात की। इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार और UNDP के बीच चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। पिथौरागढ़ जिले में इस वर्ष होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। यात्रियों का पहला दल आगामी रविवार को पिथौरागढ़ पहुंचेगा। श्रद्धालु धारचूला स्थित बेस कैंप में रात्रि विश्राम के बाद 6 जुलाई को उच्च हिमालय क्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालन को लेकर रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन सख्त। प्रत्येक घोड़ा खच्चर संचालक को जिला पंचायत में अनिवार्य रूप से अपना पंजीकरण कराना होगा। ऐसा न करने वाले संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारी बारिश के बावजूद इन दिनों हेमकुंड साहिब यात्रा सुचारू रूप से जारी। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने के 40 दिनों में रिकॉर्ड 170,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। प्रदेश भर में कल से 18 जुलाई तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के दूसरे चरण के अंतर्गत संचालित होगा। इस दौरान शिविरों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लघु उद्योग फास्ट फूड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों के 27 युवा भाग ले रहे हैं। और मौसम विभाग ने देहरादून टिहरी पौड़ी नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। पर्वतीय जिलों में भी कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने और तेज दौर की बारिश की चेतावनी। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अब सुनिए सुंदरलाल गंधर्व का बांसुरी वादन, राग शुद्ध धनाश्री।

कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत आप सुन रहे थे आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। श्रोताओं, शाम के 4:30 हो रहे हैं। अब पेश है कार्यक्रम एक कलाकार। आज के हमारे कलाकार हैं अभिनेता राजकुमार।

नहीं थे बल्कि ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने दमदार व्यक्तित्व से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को प्रभावित किया। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम अभिनेता राजकुमार के जीवन, संघर्ष, बेमिसाल अंदाज, सफलता, सिद्धांत और उनकी अमर विरासत के बारे में चर्चा करेंगे। पर उससे पहले सुनते हैं ये गीत फिल्म नीलकमल से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। उनका जन्म 8 अक्टूबर 1926 में हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई साधारण रही, लेकिन उनके व्यक्तित्व में अलग आकर्षण था। उन्होंने जीवन की शुरुआत फिल्मों से नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग पेशे से की। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजकुमार मुंबई पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। कहा जाता है कि एक दिन एक फिल्म निर्माता ने उन्हें देखा और उनकी प्रभावशाली आवाज़ और व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें फिल्मों में आने का प्रस्ताव दिया। ये वो क्षण था जिसने भारतीय सिनेमा को एक महान अभिनेता दिया। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं ये अगला प्यारा सा गीत फिल्म पाकीज़ा से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभिनेता राजकुमार ने 1952 में फिल्म रंगीली से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। शुरुआती वर्षों में उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और फिल्म मदर इंडिया में निभाए गए छोटे से किरदार ने उन्हें पहचान दिलाई, और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। राजकुमार को उनकी अनोखी संवाद शैली के लिए जाना जाता था। वे जिस अंदाज से डायलॉग्स बोलते थे, वो सीधा दर्शकों के दिलों में उतर जाता था। उनके कई डायलॉग्स आज भी कई लोगों की जुबान पर हैं। उनकी आवाज़ में ऐसी गहराई थी कि साधारण संवाद भी असाधारण बन जाता था। आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, फिल्म हीर रांझा से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोता, 1960 और 1970 के दशक में राजकुमार के करियर का स्वर्णिम युग साबित हुआ। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ मुख्य फिल्में जैसे वक्त, हमराज, ही रांझा, पाकीज़ा, कर्मयोगी, बुलंदी, तिरंगा और सौदागर हैं, जिनमें उनके अभिनय क्षमता की काफ़ी सराहना की गई। फिल्म सौदागर में उनका और दिलीप कुमार का आमना सामना भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे यादगार प्रस्तुतियों में से एक माना जाता है। वहीं फिल्म तिरंगा में उनका देशभक्ति से भरा किरदार आज भी दर्शकों को रोमांचित कर देता है। राजकुमार केवल अभिनेता नहीं थे, बल्कि ऐसी शख्सियत थे जिनकी मौजूदगी भी किसी दृश्य को खास बना देती थी। उनका पहनावा, बोलने का अंदाज, चलने की शैली और संवाद अदायगी उनको बाकी अभिनेताओं से काफ़ी अलग बनाती है। आइए कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनाते हैं, फिल्म मदर इंडिया से शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

0: दुख भर दिन बीतर भैया बीतर भैया।
1: श्रोताओं, राजकुमार को उनके अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें मुख्य हैं 1995 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 1983 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, 1993 में उन्हें कर्नाटक रत्न मिला। फिल्म साधना के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी राजकुमार को मिला था। श्रोताओं, 3 जुलाई 1996 को अभिनेता राजकुमार इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन से भारतीय सिनेमा ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया जिसकी जगह शायद कोई और ले नहीं पाए। श्रोताओं, कुछ कलाकार समय के साथ भुला दिए जाते हैं, लेकिन राजकुमार उन सितारों में से हैं जिनकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। आज भी अपनी फिल्मों, अपने संवादों और अपने अनोखे अंदाज में वो हमारे बीच जीवित हैं। आइए कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनाते हैं, फिल्म हीरांझा से।

0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम एक कलाकार यहीं पर संपन्न होता है। आज के हमारे कलाकार थे अभिनेता राजकुमार। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, शाम के 5 बजने को हैं। अब हमारे श्रोता सुनेंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना नहीं बंद करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख स्पष्ट और स्थिर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना स्थायी रूप से बंद करना होगा। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना पर भारत अपने विचार पहले ही बांग्लादेश को बता चुका है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। सरकार ने बैट, BMS, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने के आदेश दिए हैं। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से ही बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेशवाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता का शाश्वत अध्याय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रसारण श्रोता अनुसंधान परिषद को समाचार और गैर समाचार दोनों श्रेणियों में टेलीविजन रेटिंग जारी करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। ये व्यवस्था तब तक लागू रहेगी जब तक परिषद को टेलीविजन रेटिंग नीति 2026 के अंतर्गत लाइसेंस नवीनीकरण नहीं मिल जाता। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला कापो वर्दे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। लीजिए गुमशुदा के बारे में महत्वपूर्ण सूचना सुनिए। एलिसन मुर्मू पुत्र स्टेफन मुर्मू जो ग्राम रतनपुर पोस्ट राजबांध थाना दुमका मुफस्सिल जनपद दुमका राज्य झारखंड के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 40 वर्ष, कद 5 फुट 7 इंच, रंग गेहुआ, उनकी आंख नाक कान औसत, चेहरा गोल, हल्की मूछ दाढ़ी है, जिन्होंने महरूम रंग की शर्ट, ग्रे रंग की पैंट, पैरों में हवाई चप्पल पहनी है, जो 123 आरसीसी सुराई थोटा जनपद चमोली में कार्य के लिए निकले थे। दिनांक 8 अप्रैल 2026 की सुबह 4:30 बजे से देवदर्शन होटल तीन धारा थाना देवप्रयाग टीरी गढ़वाल से लापता हैं। अतः इस संबंध में किसी को कोई सूचना प्राप्त होती है तो इन मोबाइल नंबर पर सूचित करने का कष्ट करें। थाना प्रभारी निरीक्षक देवप्रयाग के मोबाइल नंबर है 9411118244। दूसरा नंबर 9410931680। एक बार मोबाइल नंबर पुनः सुन लीजिए 9411118244 और दूसरा नंबर 9410931680। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:06 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब से कुछ देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवाणी। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे स्पॉटलाइट कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुनेंगे शाम 5:45 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे श्री ओपी बडोनी से विनय ध्यानी की बातचीत। विषय रहेगा पर्यटन की नए संभावना, साहसिक पर्यटन।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर विनी जॉन से भेंटवार्ता। विषय रहेगा जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव और उपाय।

आरण्य देहरादून की विशेष प्रस्तुति विषय संवाद का समय रहेगा शाम 7:50 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे प्रोफेसर शील कुमार शुक्ला से हिंदी वार्ता। वार्ता का विषय रहेगा स्वामी विवेकानंद, युवा चेतना के प्रेरणा स्रोत।

फिल्म संगीत का समय रहेगा रात्रि 8:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:10 हुए हैं। अब सुनिए युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जहां मैं सक्षम
1: और
0: पंत
1: दोस्तों, मैं हूँ स्तुति पेटवाल। आप सभी के बीच दोबारा हाजिर हो चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों और बेहतरीन फिल्मी गीतों के साथ।
0: दोस्तों, जरा सोचिए, अगर एक ही व्यक्ति कंटेंट लिखे, सोशल मीडिया संभाले, एआई टूल्स से काम को तेजी से करे और वेबसाइट भी अपडेट कर दे, तो क्या वो सिर्फ एक आम कर्मचारी माना जाएगा? नहीं, वो बन जाएगा आज की डिजिटल दुनिया का बहुमुखी खिलाड़ी, और इसे ही कहते हैं डिजिटल जर्नलिस्ट।
1: और सक्षम, हमारे कई श्रोता सोच भी रहे होंगे कि आखिर ये होता क्या है? क्या ये कोई नया प्रोफेशन है या कोई नया स्किल सेट?
0: तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि डिजिटल जर्नलिज्म क्या होता है, इसकी बढ़ती मांग क्यों है, और युवाओं के लिए इसमें करियर की क्या संभावनाएं हैं।
1: दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो ये वो व्यक्ति होता है जिसे डिजिटल दुनिया के कई क्षेत्रों की अच्छी समझ होती है। जरूरी नहीं कि वो हर चीज का विशेषज्ञ हो, लेकिन उसे अलग-अलग डिजिटल टूल्स और तकनीकों को जोड़कर काम करना आता है।
0: उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो एक डिजिटल जर्नलिस्ट को कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग की बेसिक समझ, एआई टूल्स, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, वेबसाइट मैनेजमेंट और ऑनलाइन कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों की जानकारी होना ज़रूरी है।
1: अब दोस्तों, मान लीजिए कि इंदौर

0: एक छोटी सी ऑनलाइन बेकरी है, वहाँ एक ऐसा ही व्यक्ति है जो सोशल मीडिया पोस्ट बनाता है, ग्राहकों को ये मैसेजेस संभालता है, एआई से कैप्शंस क्रिएट करता है और वेबसाइट पे नए नए ऑफर अपडेट करता है। ऐसे में वह व्यक्ति टीम का सबसे उपयोगी सदस्य बन जाता है।
1: बिल्कुल, और आज के समय में तो जो स्टार्टअप्स और छोटी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं वो ऐसे लोगों को हायर करना पसंद कर रही हैं जो कि टीम में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई तरह की जिम्मेदारियां निभा सके।
0: दोस्तों मान लीजिए किसी स्टार्टअप में केवल 5 लोग हैं, ऐसे में अगर एक व्यक्ति सोशल मीडिया पोस्ट भी बना रहा है, एआई की मदद से कई तरीके के अलग अलग कंटेंट डिजाइन कर रहा है, वेबसाइट भी अपडेट कर रहा है और डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक समझ भी वो रखता है, तो उसकी उपयोगिता कई गुना बढ़ जाती है। एआई के आने के बाद यह भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है।
1: आज के समय में एआई कई कामों को आसान कर सकता है, लेकिन सही परिणाम पाने के लिए एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है हमें जो कि तकनीक के साथ उसका सही उपयोग कर सके। यानी भविष्य जो है वो केवल एआई का नहीं है बल्कि एआई के साथ काम करने वाले लोगों का भी है।
0: और दोस्तों अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी स्किल्स पर हमें ध्यान देना होगा, जैसे डिजिटल कम्युनिकेशन, कंटेंट राइटिंग, बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन, वीडियो एडिटिंग, एआई टूल्स का उपयोग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा की समझ और सबसे ज़रूरी समस्या का समाधान करने वाली क्षमता।
1: और अच्छी बात ये है दोस्तों कि इन स्किल्स को सीखने के लिए आपको कोई भी महंगा कोर्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आज के समय में कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, निशुल्क कोर्सेज भी उपलब्ध हैं जहाँ पे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
0: और दोस्तों इसके साथ साथ अपना डिजिटल पोर्टफोलियो बनाना भी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो ब्लॉग हो, सोशल मीडिया पेज हो, डिज़ाइन प्रोजेक्ट हो, वीडियो या फिर कोई वेबसाइट, आपका काम ही आपको पहचान दिलाता है। दोस्तों
1: अब आने वाले समय में जितनी भी कंपनियां हैं वो सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि आपकी स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी और अडैप्टेबिलिटी को भी महत्व देंगी।
0: और भविष्य उन्हीं को बेहतर करेगा जो सीखने की इच्छा रखेंगे, जो नई तकनीकों से डरेंगे नहीं बल्कि उनको अपना बनाकर न्यू अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेंगे।
1: तो दोस्तों अगर आपको सीखना पसंद है, नई तकनीकी का उपयोग करना आपको अच्छा लगता है और अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार हैं तो डिजिटल जर्नलिज्म आपके लिए एक शानदार करियर विकल्प हो सकता है।
0: दोस्तों आज ही अपनी एक डिजिटल स्किल चुनिए जिस पर आपको इंटरेस्ट हो, उस पर रोज थोड़ा समय दीजिए और अपना पहला छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट कीजिए। अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और खुद को डिजिटल भविष्य के लिए तैयार कीजिएगा।
1: हाँ, क्योंकि आज के डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ी ताकत सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अलग अलग जानकारियों को जोड़कर नई संभावनाएं तैयार करने की क्षमता है।
0: तो दोस्तों सीखते रहिए, डिजिटल बनिए और भविष्य के इन अवसरों के लिए खुद को तैयार रखिए।
1: तो चलिए दोस्तों फिलहाल सुनते हैं ये गीत जिसे लिया गया है फिल्म तारे जमीन पर से और जिसे गाया है विशाल ददलानी ने।

0: मेरी योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन का अनूठा प्रयास, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सेतु का काम करता है।
1: धामी सरकार की पहल पर पहली बार
2: उत्तराखंड राज्य में स्थापित विभागों, संस्थाओं, आयोगों, संगठनों, मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे कार्यों और प्रदान की जा रही सेवाओं से जन सामान्य को अवगत कराने के उद्देश्य से प्रकाशित पुस्तक का नाम है मेरी योजना।
1: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं।
3: दोस्तों, हम युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत समय समय पर आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं कई ज्ञानवर्धक चर्चाएं जो रखती हैं आपको अपडेटेड अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में। इसी क्रम में प्रस्तुत है आज की ये स्पेशल रेडियो रिपोर्ट।
4: दोस्तों, सुनते हैं ईट राइट मूवमेंट यूथ हैकेथॉन देहरादून में युवाओं के जोश और उनके विचार, जिसके प्रस्तुत करता है विनय ध्यानी।
5: ईट राइट यूथ हैकेथॉन उत्तराखंड 2026 का आयोजन 3 जुलाई 2026 को देहरादून में इनोवेशन बूट कैंप के तौर पर आयोजित किया गया है और ये पहली बार है कि जब इस स्टेट में इस तरह का आयोजन हो रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट से अलाइंड है ये पूरा अभियान, लेकिन इस अभियान को किस तरह संचालित किया गया और अब क्या होने वाला है, बहुत सारी टीमें डिफरेंट, खासकर यहाँ के इंस्टीट्यूट जो हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं और आम लोग हैं और खासकर यूथ जो कि इस मैसेज को दुनिया और देश तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है कि हाँ हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। इस पूरे आयोजन के बारे में आइए जानकारी हासिल करते हैं।
6: मैं गणेश कंडवाल, डिप्टी कमिश्नर फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन।
5: आयोजन के बारे में बताएं कि किस तरह से इस आयोजन को चरणबद्ध तरीके से अब तक संचालित किया गया है।
6: ये जो अभियान है ये ईट राइट इंडिया अभियान के तहत संचालित किया जा रहा है और ईट राइट यूथ हैकेथॉन एक इनोवेटिव प्रयास है कि जो आज हमारे यूथ हैं वो फूड सेफ्टी को लेकर के और किस तरह से जो है हम फूड वेस्टेज को, कंटामिनेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में उनके जो इनोवेटिव आइडियाज़ को लेने के लिए प्रोग्राम राज्य स्थापना दिवस पे अवसर पर लॉन्च किया गया था। और इस पूरे प्रोग्राम के तहत 1500 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 300 से ज़्यादा कॉलेजेस के बच्चों ने इसमें प्रतिभाग किया और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें 61% जो है महिलाएं हैं, बच्चे हैं, जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा किया गया है। जो आइडिया इनके द्वारा जो यहाँ पे जो है जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो ईट सेफ, ईट हेल्दियर, ईट सस्टेनेबल, ये मेन इनके थीम थे और इसमें सब थीम्स बनाई गई थी और उसी के आधार पर जो है लास्ट में 75 टीमों में से जो 6 टीमें ग्रैंड फिनाले में पहुंची हैं जिनको कल माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किया जाएगा। और ये जो आइडियाज़ जो बच्चे जो लेके आए हैं वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में, फूड सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ के फूड वेस्टेज और यहाँ के लोकल और सीजनल फूड को प्रमोट करने के लिए एक बहुत अभिनव प्रयास है और हम प्रयास करेंगे कि इसको और आगे तक लेके जाएं इंडस्ट्री के साथ और साथ में जो है जो बच्चे इसमें आए हैं उनको और इस पूरे प्रोसेस में जो है उनका जो योगदान है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा।
5: यूथ यानी आज का स्टूडेंट क्या सोचता है, क्या समझता है कि ईट राइट कैंपेन क्या है? बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें सामने आई और बहुत सारे विजेता भी शामिल हुए। आइए ऐसे ही इस पूरी टीम में से जो अव्वल रही हैं उनसे बात करते हैं। आपका नाम?
7: मेघा जखमुला।
5: मेघा, आप बताओ कि किस तरह से इस मूवमेंट से आप जुड़ी हैं, क्या पाया, क्या अच्छा लगा आपको?
7: एक्चुअली मैं NSS की पार्टिसिपेंट हूँ तो वहाँ पे बताया गया था इस हैकेथॉन के बारे में, तो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि सिर्फ आइडियाज़ देने हैं, बट जब फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ तब हमें पता चला कि इसको कैसे ग्राउंड लेवल पे ले जाना है, इम्प्लीमेंटेशन, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स। तो ऑलमोस्ट फेब्रवरी से स्टार्ट हो गया था ये, फेब्रवरी से, और अभी जुलाई में इसका ये ग्रैंड फिनाले हो रहा है। तो मतलब बहुत ही इंगेजिंग, बहुत ही इंटरैक्टिव जर्नी रही। बीच में हमारे काफ़ी वेबिनार्स हुए थे, बहुत ही दिग्गज लोग थे हमारे साथ और बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। लगभग इसमें 400 टीम्स आई थी और उसमें हमारी टीम फर्स्ट आई है। हमारी टीम का नाम है हिम साथी इनोवेटर्स।
5: बहुत बहुत मुबारक, बहुत सारी बधाइयाँ। क्या मैसेज देंगे उत्तराखंड को आप इस मूवमेंट के थ्रू?
7: मैसेज तो ये कि सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि मुझे पता चला कि एज अ स्टूडेंट्स हम में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और हम कैसे एक मतलब इसके थ्रू हमें डिटेल्स पता चली कि ऐसे हम सिर्फ एक स्ट्रीट, हमारा एक्चुअली हमारा सोल्यूशन है जो एग्जिस्टिंग ठेला होता है सब्जी वालों का उसको अपग्रेड करना। ये एक रेट्रोफिट मॉडल है जिसमें जो एग्जिस्टिंग ठेला है उसको हम ऐसा अपग्रेड करेंगे कि जो स्पॉयलेज होता है स्पेशली ड्यू टू कंटामिनेशन पॉल्यूशन या फिर जो धूप की वजह से स्पॉयल हो जाती है सब्जियाँ लगभग 40% तक बाय द एंड ऑफ द डे, उसको रिड्यूस करना। और इसकी वजह से वेंडर्स की इनकम भी सिक्योर होती है और एक तरीके से एक फॉर्मलाइजेशन ऑफ वेंडिंग जोन, जैसे आजकल वो चल रहा है ना कि वेंडिंग जोन प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, बल्कि 25 नवंबर 2025 को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि यहाँ पर एक मैंडेटरी हो चुका है QR कोड डिजिटलाइजेशन, तो हमारा जो मॉडल है वो इसमें सपोर्ट भी कर रहा है।
5: थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। और ये वो युवा शक्ति है जो कि तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है, लेकिन इस क्षमता के पीछे और हम ये कहें कि पूरे इस कलेवर को सजाने के लिए और खासकर पहली बार उत्तराखंड में इस तरह का आयोजन, इस आयोजन के पीछे जो सच हैं उनसे आइए बात करते हैं। नमस्कार, आपका नाम?
8: नमस्कार, मेरा नाम देवजानी सामंत्र है और मैं ग्लोबल मैनेजर हूँ। न्यूट्रिशन कनेक्ट एक प्रोजेक्ट है, गेन यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, ये एक संस्था है जो बहुत सालों से इंडिया में काम कर रही है और ये हमारा सौभाग्य है कि राज्य सरकार के साथ मिलके हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम युवाओं के लिए इस बार कुछ कार्य कर सकें। और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है हमें, ये ईट राइट यूथ हैकाथॉन के संदर्भ में मिली है और ये हमारे 8 महीने की मेहनत है जो आज रंग ला रही है। और इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे राज्य सरकार का, विशेषकर हेल्थ मिनिस्ट्री का और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो उत्तराखंड की सरकार है, और हमारे पार्टनर्स FDA उत्तराखंड जो ईट राइट की जो मुहिम है सरकार की भारतवर्ष में जो चली हुई है उसका एक प्रारूप है।
5: देश में एकमात्र राज्य, पहली बार इस तरह का इवेंट, क्या सोचते हैं इसके पीछे?
8: जी बिल्कुल, ये बहुत ही गर्व का विषय है हमारे लिए कि ये भारतवर्ष में पहली बार ये राज्य उत्तराखंड इसका चयन हुआ है इस प्रकार की ईट राइट यूथ हैकाथॉन का क्रियान्वयन करने के लिए। और इसमें जो 6 टीमें यानी कि जो 26 युवा और युवतियाँ आगे बढ़ के निकले हैं, इनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं और इसी के चलते हमें सरकार से बहुत उम्मीदें हैं कि हमारे साथ मिलके ये इसी प्रकार और काम करेंगे और हम इन युवाओं को नई नई अपॉर्चुनिटीज़, ट्रेनिंग, इस प्रकार की सहूलियत प्रोवाइड कर सकें कि वो आगे बढ़ के हमारे एंटरप्रेन्योर्स सक्सेसफुल और बने।
5: 4 जुलाई को जब राजभवन में इस प्रकार का आयोजन होगा जहां पर के इन बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा, युवा शक्ति को आगे बढ़ाया गया है क्योंकि वही संदेश वाहक होते हैं। नमस्कार, आपका नाम?
9: नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सुप्रीत कौर है। मैं देवजानी के साथ ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन में ही हेड के पोस्ट पे काम कर रही हूँ, पॉलिसी और प्रोग्राम्स को मैं देखती हूँ। और इसी विषय में मैं कुछ आगे ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो सरकार के साथ एक तरीके का जो नाता बना है वो यूथ हैकाथॉन से भी पहले का है। हम उत्तराखंड सरकार के साथ मास्टर ट्रेनिंग की ट्रेनर्स, जो ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स होता है, वो कार्यक्रम हम चला रहे थे जहाँ पर हमने पूरे उत्तराखंड में तीन भागों में लगभग सारे ज़िलों को कवर करके जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको हमने ट्रेनिंग दिया, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करी जो कि फोर्टिफिकेशन के रिलेटेड था। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमारे खाद्य पदार्थ में हम जो चीज़ें लुप्त हो जाती हैं या जो प्रोसेसिंग के दौरान कम हो जाती हैं या जिसकी कमी लोगों में पाई जाती है, वो हम ऊपर से डाल के उसको एक संपूर्ण आहार बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसके रिलेटेड ट्रेनिंग दी गई थी। ओबेसिटी, जैसे कि आपको पता है आजकल एक बहुत बड़ा विषय बन के सामने आ रहा है, उसके रिलेटेड कि इसको कैसे कम कर सकते हैं हम एकदम गांव के लेवल पे जाके या एकदम लोकल लेवल पे जाके उसको कैसे कम कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी गई थी। और इसके अलावा जो फूड सेफ्टी जिसको हम बोलते हैं कि खाद्य पदार्थ को किस तरीके से सुरक्षित तरीके से हम खा सकें, उसकी कंप्लीट हमने ट्रेनिंग बहुत डिटेल में दी थी, जिसमें हम स्टेट FDA जो था और उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत जो ये ट्रेनिंग दिलाई गई थी उसमें गेन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था।
5: यूथ को क्यों टारगेट किया गया, यूथ को क्यों शामिल किया गया इस पूरे मिशन में, उसके पीछे क्या रीजन रहा है?
9: यूथ इंडिया जो है आज की डेट में जो यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, जहाँ पे युवाओं की जो परसेंटेज अगर मैं कहूँ तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, तो आई थिंक वी नीड टू कैश दैट, उस चीज़ को का फ़ायदा उठाने के लिए हमें हमारे यूथ को एक नए स्तर पर लेके जाना है। जो आजकल एक भावना चली हुई है कि यूथ निग्लेक्ट हो रहा है गवर्नमेंट की नज़रों में, आई थिंक वो एक मिथ है, हमें उसको बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट के या सरकार के जितने भी प्रयास हैं वो सीधा हम यूथ तक पहुंचा सके। हम एक ऐसा सेतु बनना चाहते हैं कि जितना भी अच्छा काम जो सरकार कर रही है वो डायरेक्टली यूथ तक पहुंचे, बीच में मिडलमैन हट जाए। तो वही उसी नीति को आगे ले जाते हुए भी हम एक कोई इस तरीके का ये प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, और मेरी ये उम्मीद है कि उत्तराखंड से सीख लेते हुए, आई थिंक उत्तराखंड इज़ अ फ्रंट रनर, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, इससे सीख लेते हुए बाकी राज्य सरकारों को भी आगे आना चाहिए और इस मुहिम में शामिल होके आई थिंक हम एक बेस्ट प्रैक्टिस टाइप का मॉड्यूल बना के सरकार को दिखा सकते हैं कि यूथ में बहुत ताकत है, यूथ में बहुत एनर्जी है, सिर्फ एक सही दिशा और एक सही मार्ग की जरूरत है, तो हम आई थिंक स्काई इज द लिमिट देन।
5: निश्चित तौर पर ये हैकाथॉन जो कि युवाओं के बीच में एक लंबे समय से चला आ रहा है और अब धीरे धीरे इसका समापन होगा, जबकि राजभवन में उन सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा जिन्होंने की शानदार काम और शानदार उपलब्धि हासिल की। इस कामना के साथ कि इस तरह के आयोजन निश्चित तौर पर ईट राइट मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए और युवा शक्ति के सही प्रयोग के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। मैं विनय ध्यानी, यूथ हैकाथॉन उत्तराखंड 2026 के इस बूट कैंप से वापस आपको आकाशवाणी के स्टूडियो जोड़ता हूँ।
3: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ईट राइट मूवमेंट यूथ हैकाथॉन देहरादून 2026 पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के प्रस्तुतकर्ता थे विनय ध्यानी। आशा करते हैं आपको ये रेडियो रिपोर्ट पसंद आई होगी।
4: दोस्तों, कहते हैं सेहत अच्छी हो तो हर दिन अच्छा लगने लगता है, लेकिन अगर अस्पताल का बिल सामने आ जाए तो अच्छे अच्छों की नींद उड़ जाती है।
3: वही तो, और मज़ेदार बात ना ये है कि हमें अक्सर मोबाइल रिचार्ज प्लान के बारे में तो अच्छे से पता होता है, लेकिन अपने घर के हेल्थ प्लान के बारे में हमें कोई नॉलेज ही नहीं होती है।
4: सही कहा सक्षम आपने। इसलिए आज दोस्तों हम बात करेंगे एक ऐसी ही सरकारी योजना की जो मुश्किल समय में कई परिवारों का सहारा बन सकती है, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत।
3: इस योजना का मकसद साफ है दोस्तों, अगर कोई पात्र परिवार किसी गंभीर बीमारी का सामना करे तो इलाज सिर्फ पैसों की वजह से कभी भी ना रुके।
4: इसके तहत पात्र परिवार को हर साल 5,00,000 रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। इलाज देश भर के योजनाओं से जुड़ सकता है और सरकारी और निजी अस्पतालों में कराया जा सकता है।
3: चलिए दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछते हैं। अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं और पढ़ाई या फिर नौकरी की वजह से आप किसी बड़े शहर जैसे दिल्ली, बैंगलोर, जयपुर कहीं रहते हैं, तो क्या वहाँ पर भी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है?
4: दोस्तों, अगर आपका जवाब है हाँ तो बिल्कुल सही जवाब है। योजना देश भर के सूचीबद्ध अस्पतालों में लागू होती है, यानी जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्य में भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
3: आइए इसे एक छोटे से उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए किसी परिवार में अचानक से हार्ट सर्जरी की किसी को जरूरत पड़ जाती है, ऐसे जो इलाज होते हैं उनमें खर्च लाखों रुपये में भी आ जाता है। अगर वो इलाज इस योजना के लिए पात्र है तो यही योजना उस मुश्किल समय में उनको आर्थिक सहारा प्रदान कर सकती है।
4: सही बात है। और दोस्तों, सिर्फ ऑपरेशन तक ही नहीं, अस्पताल में भर्ती रहने से जुड़ी कई सेवाएं भी तय पैकेज के अनुसार इसमें शामिल हैं।
3: लेकिन एक बात याद रखिए, ये योजना हर किसी के लिए नहीं है। इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो सरकार द्वारा तय पात्रता के दायरे में आते हों।
4: दोस्तों, अगर आपको जानना है कि आप इसके बेनिफिशियरी हैं या नहीं, तो आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट, आयुष्मान ऐप या नजदीकी आयुष्मान मित्र से आप जानकारी ले सकते हैं।
3: दोस्तों, जानकारी होना भी एक सुरक्षा होती है। तो चलिए सुनते हैं ये गीत जिसे लिया गया है फिल्म भारत से और जिसे गाया है अभिजीत ने।

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय ITI से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: ट्वेल्व सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत ITI में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय ITI में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास एक दिन में 30 घंटे हों और दूसरे के पास सिर्फ 24 ही घंटे हो, तो शायद सफलता की जो दौड़ है वो आसान हो जाएगी।
3: लेकिन दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के हर इंसान, चाहे वो कोई छात्र हो, खिलाड़ी हो, वैज्ञानिक हो, उद्यमी हो या खुद देश का प्रधानमंत्री, सभी को दिन के सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना रह जाता है कि कौन इन

0: घंटों का बेहतर उपयोग करता है।
1: बिल्कुल। तो आइए जानते हैं कि सफलता में टाइम मैनेजमेंट का महत्व आखिर कितना होता है।
0: दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर समय व्यस्त रहना, बल्कि सही समय पे सही काम करना, ये होता है।
1: अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं मेरे पास तो समय ही नहीं है, लेकिन सच ये होता है कि हमारे पास समय की कमी नहीं है, बल्कि हमने उसे आयोजित सही तरीके से नहीं किया है।
0: अब दोस्तों, मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं, एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोनों के पास समान किताबें हैं, समान समय है, लेकिन एक विद्यार्थी रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ता है, समय का सही उपयोग करता है, और दूसरा आखिरी समय तक ये जो काम है वो टालता है।
1: नतीजा अक्सर वही होता है जिसकी हमें उम्मीद होती है। इसलिए सफलता केवल मेहनत पर नहीं, बल्कि हम समय पर कितनी मेहनत करते हैं इस बात पर भी निर्भर करती है।
0: और दोस्तों, आज के समय में हमारे समय का सबसे बड़ा चोर है बिना सोचे समझे मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल।
1: बिल्कुल, सिर्फ 5 मिनट के लिए मैं फ़ोन उठाऊंगा ऐसा हम सोचते हैं, और फिर आधा घंटा कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए समय समय पर अपने डिजिटल समय का हिसाब रखना भी ज़रूरी है।
0: और आप अगर अपने दिन की शुरुआत एक छोटी सी टू डू लिस्ट से करेंगे तो ये आपके लिए और भी उपयोगी हो जाएगा और आपका दिन ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा।
1: एक और बात कि हम काम खुद करने की कोशिश मत करिए। आप ये मत सोचिए कि सारे काम आपको ही करने हैं। जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो, आप टीम वर्क का मेथड अपनाइए। बीच बीच में थोड़ा आराम भी करिए, क्योंकि लगातार काम करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है स्मार्ट तरीके से काम करना।
0: दोस्तों, आज के सफल खिलाड़ी, कलाकार और उद्यमी केवल मेहनती नहीं हैं, बल्कि अपने समय का भी अच्छा प्रबंधन करते हैं। उनकी दिनचर्या, प्रायोरिटीज और अनुशासन ही उन्हें भीड़ से अलग बनाता है।
1: याद रखिए दोस्तों, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग आज के काम को कल पर टालते हैं, वो अक्सर अपने सपनों से कई पीछे छूट जाते हैं।
0: दोस्तों, सबसे ज़रूरी है संतुलन बनाए रखना। अगर आप नौकरी करते हैं तो काम के साथ अपने स्वास्थ्य और परिवार के लिए भी समय निकालना ज़रूरी है।
1: क्योंकि सही टाइम मैनेजमेंट वही है जहाँ पे सफलता के साथ साथ जीवन भी संतुलित बने।
0: जी दोस्तों, और समय उसी का सम्मान करता है जो खुद समय का सम्मान करता है। तो आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम में ये गीत।

0: दोस्तों, इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं आज के कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का।
1: दोस्तों, यहाँ से पहले आप सभी दोस्त हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम युववाणी द्वारा निदेशक, आकाशवाणी देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, पिन 2480001। और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 7088000731।
0: साथ ही दोस्तों, आप चाहें तो हमें ईमेल द्वारा भी हम तक अपने संदेश और सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है youthddn@gmail.com।
1: तो दोस्तों, इसी के साथ आप मुझे यानी स्तुति पेटवाल
0: और मुझे यानी सक्षम पंत को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मुलाकात होगी आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 5:45 हुए हैं। अब सुनिए पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुनदर आज सभी भेवंदों ते विनय ध्यान छोड़ बटकी नमस्कार से वसौली
1: और दगड़मा जयप्रकाश पवार की तरफ बिटिन भी वसौली नमस्कार।
0: कखे दूर जान के लगातार आजकल कार्यक्रम में है कट होया छो मिर्जापुर में ना हिसाब किताब का ना कौन ढाकर का ना कौन नहीं जाना
1: चाहिए ढाकर ही चाहिए ना। और ढाकर में लोग उनका ही फिल्म भी बने ढाकर में।
0: हाँ
1: ना?
0: और फिल्म की बात तो छोड़ा लेकिन बस गाल को ये ही महीना से पहले को वो मानसून पूर्व प्रबंधन छाए भाई हमारा पुराना लोग ढाकर का ना कौन चल जाना चाहे बोले बाद में गदना तैर के कैलान तो वो चलो पहले
1: पहले निपटे
0: निपटा दियो मैं लगन के अपन भी जानो चिकखे या पर्यटन का क्षेत्र में
1: ना ना कहीं घूमना चल है एक बात। लेकिन पर्यटन की बात तो हम करना है जहाँ ध्यानी जी। लेकिन 1 तारीख से और 7 जुलाई का बीच जो कि हमारा पूरा उत्तराखंड में वन महोत्सव मनाए जानो च और लोग डाल बोट लगाना जिन पर पिछला 2-3 महीना पहले देख बोला अपन तो आग लगी है जंगलों में भयंकर
0: भल भया बरखा को कि भाई कम नुकसान हुई बरिदा है ना। पर जो घाम होनो च और त्यो छस पुजाड़ जो लगानो फिर धुआं रोली
1: अब दिक्कत ही हुई ध्यान जी कि अब पहले यह नोन छो कि गर्मियों में ही हम तो जंगलों में आग लग दी दिखे ना। लेकिन अब यह नएगी कि पूरा साल भर जंगलों में आग लगनी चाहिए।
0: हाँ ये बात समझ में नहीं आंदी कि रूढ़ियों का दिनों में ना बल्कि ह्यूंद में भी बसगाल में भी कई भी कखी भी आग लग जाने चाहिए तो ये भली बात नहीं चाहिए। जंगलों को नुकसान और वन्य जीवों को नुकसान होंगे इससे
1: आग लगान वाला भी कोई तो छह ही
0: मन के तो बाकी थोड़ा
1: थोड़ी आग है
0: तो हम जंगलों की महत्ता पर घड़ेक में छुई लगौला पहले बतौला कि आज एक कार्यक्रम में पर्यटन विषय पर हमारा दगड़ एक मेहमान होला जो दगड़ हम खूब मुखा भेंट करला वो छन श्री ओपी बडोनी और उनसे बातचीत को हमारा विषय रालू कि जो पर्यटन की अवधारणा च नई संभावना च वो च साहसिक पर्यटन तो ये बाबत हम बात करला। लेकिन चला डाल लगाओ दे
1: बिल्कुल डाल लगाना जिन लोग और कोशिश कर ला कि भाई ख्याल डाल नहीं लगा सुरक्षा भी करूँ। सबसे बड़ी बात है कि जो डाल लगे वो कम से कम 5-7 साल तक होगी
0: ध्यान
1: रखना पड़ो तभी पेड़ लगाना महत्व है।
0: और ये दौरान हम देखना चाहो कि साहब जो वन विभाग छ
1: जी
0: वो खूब कसरत करू कि भाई पौध ले आके और तब लोगों में पौध को वितरण हो निःशुल्क
1: बिल्कुल
0: कि ले भाई लगाओ है ना। और लोग लिमाना को तो लिमा दे कि ले लो जिम्मी में 25 डाल दे मैं लगा दे और तो कोई कख पड़ो और कोई कख एक दुई लगा दिया तो लगा दिया ना फिर कुछ
1: बिल्कुल डाल लगाना भी नियम छे कि भाई कम से कम 2 फीट को गड्ढा हो है गड्ढा पहले खोदी ते रख दिया तब जे तो वो डाल पनपलो ये नहीं खाली खोदी जब से जड़ आधा जड़ बहर आधा भीतर और पूरे डाल जो बहरे बहरे सूखी।
0: हाँ तो बात यह है कि जो विभाग जो ढंग से निर्देशित करे कि कखमा फलदार डाल लगने
1: जी,
0: जी। के फलदार तो लगायो जंगल में
1: हाँ।
0: अरे जो जंगल का डाल लगा चुनो लगा दें चौक में हाँ,
1: बिल्कुल
0: है ना
1: हाँ।
0: तो भाई इन करूँ तो आप विभाग का दगड़ मिली की ये वन महोत्सव तय आप सफल बने और डाल बूटी निराली तो भाई ये जो चिंता है ना पर्यावरण की ये भांति भांति की चिंताओं में बदलन के लगे अभी तो जलवायु परिवर्तन होने चाहिए
1: बिल्कुल
0: बाद में क्या क्या परिवर्तन हो।
1: हाँ बिल्कुल सही बोले अपन और जन अभी आप बना सा कि जंगलों में फलदार वृक्ष भी होने चाहिए
0: होने चाहिए
1: कि लगे वह जो हमारा जंगली वन्य जीव छ वो अगर वह निपट जाला वकी तो तब गो तक नहीं होला कम से कम ना
0: क्या लो फिर करने ले जाला
1: हाँ क्या लो फिर करने ले जाला मन के ऊपर नहीं बिल्कुल है तो उतर भी कुछ खाद पानी हो तो वकी मिल जाओ
0: हाँ।
1: तो वनों की सुरक्षा भी बोली और मनुष्यों की सुरक्षा भी बोली
0: तो चला ये भली बात पर एक भलो गीत सुनाओ दे
1: बिल्कुल चलना गढ़वाल का छोड़ और सुनना सरोज चौहान का स्वर में यू सुंदर सी गीत

0: अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और अपने हुनर से आत्मनिर्भर भी, तो जुड़िए उत्तराखंड की राजकीय आईटीआई से।
1: वर्तमान सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, तो देर ना करें, आज ही ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
0: और जुड़े कुशल भारत कौशल भारत की इस शानदार पहल से।
1: ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत आईटीआई में कोर्स की आधी अवधि संस्थान में और आधी अवधि टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प जैसी प्रतिष्ठित कंपनियों में ट्रेनिंग का सुनहरा अवसर मिलेगा, वो भी स्टाइपेंड के साथ।
0: तो अभी संपर्क करें नजदीकी राजकीय आईटीआई में या लॉगिन करें www.vpputtarakhand.in या www.dste.uk.gov.in पर,
1: या कॉल करें 7302663922 पर। सीटें सीमित है, जल्द आवेदन करें। कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: रविंद्र, ये बताओ सरकार की योजनाओं की पूरी जानकारी कहाँ मिलेगी?
3: अरे रागनी, धामी सरकार ने जनहित में जारी की है पुस्तक मेरी योजना।
2: सच में, क्या क्या है उसमें?
3: शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला, युवा, हर योजना आसान भाषा में एक ही पुस्तक में। मेरी योजना, जानकारी भी अधिकार भी।
4: मेरी योजना पुस्तक आप डिजिटल रूप से uk.gov.in पर प्राप्त कर सकते हैं। गीत रबारों का बाद कार्यक्रम में स्वागत आपको। और अब जन के मन पहले बता छा कि ये बगत पर्यटकों की संख्या जरा से कम हुई छे, किला की स्कूल खुल गिन।
5: हाँ,
4: और जो छिड़बड़ाट वाला पर्यटक छाने वो तो छठिक गिन। अब
5: ज्ञानी जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात छे कि लगातार हमारा उत्तराखंड में जो शहर छिन्न या पर्यटक स्थल छिन्न ऊपर बहुत भारी दबाव होगी।
4: हाँ।
5: और ये से क्या होना, स्थानीय लोग भी जो छिन्न वो भी परेशान हो गए,
4: परेशान हो गए।
5: पानी की कमी है, रास्ता जो लगातार जाम होया, कोई अस्पताल जान बोल छो, कोई कहीं जान बोल छो, आने जाने की भारी दिक्कत, पानी की दिक्कत, अस्पताल की दिक्कत, बहुत सारी, और गंदगी, बहुत सारा पर्यावरणीय दुष्परिणाम लोग झंड पड़ना छ। तो ये वजह से बार बार बोले जानो भाई कि जो भी पर्यटक स्थल छ वो माँ थोड़ा सा यू विचार करे जाओ कि भाई कि एक सीमित दायरा माँ, जैसे हम अंग्रेजी में कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, यानी कि क्षमता कथा छे पर्यटक स्थल की, तो वो थी लोग आन और स्थानीय लोगों के साथ में भी देखी होला अपन, कई बार लड़ाई झगड़े की बात भी है जानी जी।
4: बस ये निर्जन बोला बिटाण वाल छुई ना,
5: बिल्कुल
4: भी भल नहीं चाह, आज भी भल नहीं
5: चाह,
4: लेकिन आजकल लोगों में सहनशीलता तो छही ना,
5: ना? ना?
4: हाँ। हमको तो ये चेतन ने ये हिसाब वक्त का लोग बड़ा बोला छन बल।
5: हाँ, हाँ।
4: अरे कब तक बोला बन हम ना,
5: सही बात है,
4: कचा भी दिनो हम
5: जब कचे लगाया छिन तो जवाब तुम देनी पड़ दो लोग।
4: लेकिन खैर ईश्वर की कृपा से ये सब नहीं हो घटना। लेकिन हाँ, एक बात और जन आप बोना छन की अत्यधिक जो जन दबाव वे का हिसाब से पर्यटन में कुछ सुधार की गुंजाइश छ। और एक और चीज जो अपन बोली छो ना पर्यावरण, भाई आप ये जो कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था भी तो नहीं करना।
5: हाँ।
4: ये तो का छोड़ जाना छ ना,
5: बिल्कुल
4: पहले तो ये बोले जान चाह भाई अफारू हम तुम तो डस्टबिन और झोला भी दूला अपनी गाड़ी में धरे।
5: हाँ।
4: अपने दगड़ या खाया की।
5: हाँ।
4: जख में भी आप दिखेण की एक माँ हम तो दीण चाहिए। हाँ। कचरा तो हम कचरा तो कचरा प्रबंधन भी बहुत जरूरी है, नतर हालत खराब हो गया छोटा छोटा बाजारों की हमारे।
5: बिल्कुल, और हमारा जो है गार्ड गदन सब चोक होगी ना एक तरह से, मतलब वो प्लास्टिक प्लास्टिक जो शहरों में भी प्लास्टिक पहुंचेगी दादा।
4: बिल्कुल बिल्कुल, पर्यटन की अपार संभावनाएं छे छिन, हम बोल दू पर्यटक प्रदेश पर्यटन प्रदेश। लेकिन साहब खास बात यह है कि हम तो एक संतुलित और नियोजित पर्यटन की जरूरत है। आवा पर्यटन पर कुछ और छुई, वो भी साहसिक पर्यटन का बाबत लगोला। हमारा मेहमान छन श्री ओपी बडोनी। बेबंदो नमस्कार, मैं छो विनय ध्यानी और आज कार्यक्रम में म्यार दगड़ मेहमान छन श्री ओपी बडोनी। बडोनी जी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपको।
6: धन्यवाद ध्यानी जी, और सभी श्रोताओं तक भी मेरे बहुत बहुत प्रणाम।
4: आज आपक और हमारे बातचीत को विषय एक इन सामयिक विषय पर छे, जो कि ये बात बोले जानू छे कि अगर उत्तराखंड की आर्थिकी की रीढ़ छे तो वो छे पर्यटन। आप पिछला कई दशक पटे की पर्यटन से जुड़िया छन। आज हम आपसे विशेष बातचीत करना चाहूँगा साहसिक पर्यटन की, जो कि पर्यटन की एक मजबूत कड़ी छे। तो साहसिक पर्यटन ते कई रूप में ये बात उत्तराखंड देखणु छे, चलाणु छे, हिटाणु छे।
6: देखो ध्यानी जी, मैं आपते थोड़ा पर्यटन के बारे में बताऊं कि मेरी पृष्ठभूमि पर्यटन छ, और मैं गढ़वाल मंडल विकास निगम में पिछले लगभग 32 साल नौकरी करी थे, अभी रिटायरमेंट हुए। तो पर्यटन विकास में हम लोग बहुत योगदान छ, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल द्वि संस्था छे जो उत्तराखंड में संपूर्ण पर्यटन को दायित्व संभाल छो, जबारी यूपी माछा और ये दो संस्थाएं थी, कुमाऊं मंडल विकास ने और गढ़वाल मंडल विकास ने, जो संपूर्ण रूप से पर्यटन हो या उसका विकास हो, गैस एजेंसी भी छन, तो पेट्रोल पंप भी छन, तो पर्यटन विकास में जो जो साधन होने सब यून अपनाए और ये पूरा सतत विकास में आयु का बहुत बड़ा योगदान रहे दुई संस्थाओं को। वे का बाद पर्यटन का दूसरा रूप हो जना की पर्यटन का बहुत स्वरूप होना, तो आपन जन बोल की साहसिक पर्यटन पर बात कर, तो साहसिक पर्यटन तो उत्तराखंड में कुट कुटी चंज भरियो, हमारे गांव में बेटी बारी जो रस्तों में चल देने भी साहसिक पर्यटन एक किस्म से देखा जाए।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
6: कि बहुत ही अच्छे साहसिक पर्यटन जो हम लोग, मैं बॉम्बे में 25 साल रहे हूँ, तो वो तो पहाड़ों देखे इन बोलन की पता चले, अरे वहां तो आप स्वर्ग में रहते हो और शहर वो बहुत अच्छे अच्छे, हम तो घूमने जाना, लेकिन वो नीचे कह सकते साहसिक, उन बोला अगर आप डांडा पर या पाखा पर चढ़ जा, मतलब पहाड़ पर, तो वो एक किस्म से वो करदन डरदन कि नहीं नहीं, तो उन्हें सपोर्ट देना पड़ता, तो साहसिक पर्यटन उत्तराखंड में कोटी कोटी चेंज भरे, बहुत ही ज्यादा साहसिक पर्यटन। साहसिक पर्यटन में मेन ब्रांच होना जन हमारी एडवेंचर ब्रांच। अच्छा एक चीज मैं और बोलता हूँ, उत्तराखंड में इतना साहसिक पर्यटन, उत्तराखंड ते ही साहसिक पर्यटन की राजधानी बोलन, भारत की साहसिक पर्यटन की राजधानी
4: अच्छा
6: उत्तराखंड से सबसे ज्यादा, यह कहनी चाहिए हम साहसिक पर्यटन एडवेंचर छन, एक से एक एडवेंचर छन। एडवेंचर में हमारा अलग अलग होना जन ट्रैकिंग होगी, अब जन ट्रैकिंग में तो हमारे बहुत सारे ट्रैकिंग जन, इतना अच्छी श्रेणी की ट्रैकिंग जन कालिंदी खाल ट्रैकिंग, कालिंदी खाल ट्रैकिंग गंगोत्री बिटिक और केदारनाथ या बद्रीनाथ भी जा सकते हैं, तो वो लगभग 18 दिन ट्रैकिंग थी, वह पूरा गियर आपका उपयोग होना ना, और बहुत ही बड़ो वे का बाद आप एवरेस्ट बेस कैंप की सोच सकते, इतना बड़ो छो, वे का बाद नंदा देवी यो ट्रैकिंग वो छन, वे का बाद हमारा माउंटेनियरिंग, माउंटेनियरिंग भी उत्तराखंड में बहुत बड़ा माउंटेनियरिंग, हमारे नंदा देवी माउंटेनियरिंग छे, तो नंदा देवी मा जन ITBP वाला कर दे छन, हमारे यहाँ आपको आपने तो मालूम है माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट खोलू छे, नेहरू इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, वो बहुत लोगों का ट्रेनिंग दे, देश विदेश का लोग ट्रेनिंग दे, वो कहे पर्वत श्रृंखला पर माउंटेनिंग करूं, तो ये सब चन। फिर एक और एडवेंचर रॉक क्लाइंबिंग, तो रॉक क्लाइंबिंग तो रॉक है रॉक छन, मतलब पहाड़ी पहाड़ छन, जग विचार जाए तो हमारे गांव का जो मैंने बोल बेटी बारी जो बखरा बखरो गोरु गोरु सब रॉक क्लाइंबिंग करते रहना रोज,
4: ये पुंगड़ बटा है पुंगड़ भी तो भीड़ चढ़ी
6: भीड़ चढ़ी वो रॉक क्लाइंबिंग हुई। अब ये जो पैटर्नाइज करी जो कॉमर्शलाइज करी यहाँ को, तो वो एक कॉमर्शियल नौ दे दिन रॉक क्लाइंबिंग, तो ये हमारे गुण रन तो उत्तराखंड में आयु भरे। तीसरा हमारे के जो नई शुरू हुई पिछले एक दो दशक से रिवर राफ्टिंग, पहले रिवर राफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, रिवर राफ्टिंग भी आपने ताजू बोलो सबसे पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम शुरू कर चो ऋषिकेश में, और वो सख्त छो एक IAS अधिकारी छो MD RK सिंह वेन शुरू कर चो रिवर राफ्टिंग, और हम कोडियाला बेटी शुरू कर चो कोडियाला बेटी ऋषिकेश तक है एक लगभग 12-15 किलोमीटर को पैच छो नदी वो शुरू कर चो, तो रिवर राफ्टिंग ये अब तो रिवर राफ्टिंग बहुत ज्यादा कॉमर्शलाइज होगी, ये सब चीजें वे वहां शुरू होगी, और रिवर राफ्टिंग के बाद छन एक

0: ये तो हम जन वो ना साइट सीन भी बोल रहा
1: जी
0: जन, हम कुछ नहीं घुमाने चल गए, कभी यहाँ चल गए, हम लैंसडाउन चल गए, मसूरी चल गई, रानीखेत चल गई, या अभी मैं आदि कैलाश बिटी आणु, तो आदि कैलाश बहुत सुंदर जगह, साइट सीन है वहाँ, वक कोई मतलब इन जानियो मानियो हमारू मंदिर नहीं छ, लेकिन वो पहाड़ी मंदिर छन बढ़िया, आदि कैलाश तो आदि कैलाश बने, तो घूमने लोग जानो साइट सीन हुई हमारी,
1: जी
0: साइट सीन हुई जी।
1: जैव विविधता ये पूरा उत्तराखंड राज्य में खूब भरपूर मात्रा में और वही ही देखना कोणी पर्यटन की यह जो दिशा छे, ये बहुत सुंदर जान जनज्ञापन बहुत सारी चीजों के नौ ले।
0: जी
1: आजकल का ये दौर में हम देखना छो कि वे तो साहसिक पर्यटन बोले जा कि दुकानदारी बोले जा, जन की वो जंपिंग वाला हुए शुरू और कड़गल लगी च या
0: बंजी
1: घूमने
0: बंजी जंपिंग
1: ये तो मैं सकता हम कि चलो यू खेल च या व्यवसाय होण च सुरक्षा का मानक नहीं छन वे का बाद भी चलनु च क्या लगता
0: ध्यान
1: आपका?
0: जी, आपका ये बहुत बढ़िया सोच और बहुत बढ़िया वो छे कि ये लोगों ने जो हमारे विदेश में होना नहीं, पहले बंजी जंपिंग ना हमारे एक एक्चुअली यूं का सुरक्षा मानक वे लेवल पर नहीं छन, जथा जथा जख बटी यू पैदा हुए उन जगहों छन, बहुत बड़ा सुरक्षा मानक छन वो,
1: जी
0: मतलब हमारे तो कई बार अपन देखो कुछ दिन पहले शिवपुरी में एक एक्सीडेंट हुए, तो ये चीजें वो सुरक्षा मानक खिलाए नहीं, तो नीस, नीस, नेट लगा देते हुए एक्सीडेंट नहीं होना चाहो, पर लेकिन महंगा सुरक्षा मानक होना जन की, अभी एडवेंचर बोले अपन तो नई नई चीजें क्या क्या होनी हो कि डेली जनसंख्या जो बढ़नी और हमारा साधन सीमित छ,
1: सीमित छ
0: और लोग जन आपन देखो लगी यात्रा ले लिया, अगर केदारनाथ यात्रा बोलना हम तो पहले 4-5 हजार लोग पर डे जान से पड़, आज हमने सुने 35 हजार लोग पर डे चन जाने,
1: बिल्कुल
0: तो जे
1: बिल्कुल
0: जगह की कैपेसिटी 4-5 या 10 हजार होली वो जगह 35 हजार चला, तो वक्त और आज मतलब व्यवस्था तक अव्यवस्था हो जाए कितने में व्यवस्था, तो ये यानी कि बहुत ज्यादा पर्यटन, और पर्यटन का नाम पर एक तब विदेश बिटी ये जो पैरा जैसे हम बोलते ना बंजी जंपिंग एंड ये जो दूसरे किस्म एडवेंचर छन कन्या, तो ये शुरू हो गए ना, लेकिन यूं दगड़ी मैं इतना बोल रहा हूँ कि आपको सुरक्षा मानक के बीच में मैं सरकार से निवेदन करूँ, सुरक्षा मानक का यूं जरूर ध्यान रखें ताकि कोई
1: अप्रिय घटना नहीं
0: अप्रिय
1: हो।
0: घटना नहीं हो। यस
1: अच्छा बड़ुन जी एक सवाल और छ, आप मठ मठ के एक जनज्ञापन बताए कि सच में शुरुआत में गढ़वाल मंडल विकास निगम ना हर तरह के पर्यटन ते बहुत संजीदा तरीके से शुरू कर छ। आज जब हम देखना चाहूँ कि एक और जल क्रीड़ा जैसे हम बोना चाहूँ टिहरी झील को एक नए विकास हमारे समय में आणु छो, तो ये से पर्यटन ते कितना संभावित फायदा होने लगणु छो आपते?
0: देखो ध्यान साहब, ये तो जरूर है कि पहले ये चीजें धीरे धीरे करी शुरू होगी, जन हमने रिवर राफ्टिंग एक जल क्रीड़ा टाइप है, जल की एक्टिविटी है, पानी एक्टिविटी, तो दूसरी एक्टिविटी हमारे गुना गुनीचा जन टीरी माँ लेक टीरी झील बनी, पहले झील नहीं छो, तो जब झील नहीं छो तो हम सोच भी नहीं सकते कि जल क्रीड़ा की ये छे कि ये माँ हो जाए, लेकिन ये माँ इन चूंकि अभी ये तो एक तो जल क्रीड़ा हुए सुरक्षित है ये जल क्रीड़ा, दूसरा ये माँ एक रोजगार वृद्धि हुए
1: बिल्कुल
0: सबसे बढ़िया होने ना, कि जब जनसंख्या बढ़नी तो रोजगार भी होने, तो जल क्रीड़ा में बहुत लोगों ने रोजगार मिली और ये सुरक्षित है, ये तो है जरा नॉम से मना, और टिहरी लेक का जन जल क्रीड़ा होने या दूसरा लेक में कन्या जल क्रीड़ा कन्या, ये प्रगति का एक उच्च हमारो द्योतक छे कि प्रगति होनी पर्यटन में, साहसिक पर्यटन में प्रगति होनी जी।
1: अभी कुछ समय पहले उत्तराखंड राज्य में साहसिक पर्यटन में पैराग्लाइडिंग तक भी सोची गया है
0: जी
1: और जगह जगह हमन चिन्हित भी करें
0: जी
1: और खूब धूम धड़ाका से उद्घाटन भी हुए,
0: जी जी
1: लेकिन वे का बाद वो वकी के वकी रह गया अब नहीं होने में जहाँ का के, तो ये कब आप के बोल सकते हैं आपके क्या एक मां संभावना छे?
0: नहीं, पैराग्लाइडिंग की बहुत संभावना है, पैराग्लाइडिंग तो चंद एक ऊंचो स्थल पहाड़ जग बटी थोड़ा हवा भी चलती होली, पैराग्लाइडिंग तो एक हाई उन जगह चंद एक बहुत चंदवे की संभावना है कि हमारे मौसम बड़ो फैक्टर होता पैराग्लाइडिंग में, अगर जन बरसात में पैराग्लाइडिंग नहीं होंगे, आंधी तूफान चली तो पैराग्लाइडिंग नहीं होंगे,
1: उड़ा के ले जाओ
0: उड़ा
1: कके
0: उड़ा ले जाओ कके ले जाओ पता नहीं, तो पैराग्लाइडिंग की बहुत बड़ी संभावना है, होने से पैराग्लाइडिंग टेरी मां शुरू करी पैराग्लाइडिंग, एक थानों का ऐंच एक पहाड़ से वो बड़ी शुरू होंगे पैराग्लाइडिंग, एंड पिथौरागढ़ में बहुत कॉमन है पैराग्लाइडिंग, तो उत्तराखंड में बहुत सक्सेस पैराग्लाइडिंग, और ये सी रोजगार उन्मुख छे बहुत ज्यादा, ये माँ लोग इन्वॉल्व होना, ये माँ ट्रांसपोर्ट गाड़ी वाला भी इन्वॉल्व होना, टैक्सी लेते हैं माथे जाना, फिर वो जो पैरा जो ग्लाइडर छे हुए थे पूरे फोर्ड कर ले जाना, तो इसमें रोजगार की संभावना भी बहुत बढ़ जाने, और मैं आने वाले समय में लेकिन एक बहुत ज्यादा ये चलना, लेकिन मैं एक ही चिन्हित जगह हुई चंद कि ये सुनसान जगह चंदी वे लैंडिंग प्लेस जख्म उतरदन उम साफ सुथर सुरक्षित चंदी और एक सुरक्षा मानक भी देखा चाहन कि जो दगड़ी गाइड जाऊ पहले ग्लाइडर दगड़ी एक गाइड जाऊ जनरली दुई आदमी उड़दन एक साथ तो जो गाइड जाऊ वे पूरा नॉर्म्स का फॉलो करना पड़ लो एच बी टी कभी कभी ये नोंदू कि ये लोग पिक्चर बनाना ये वीडियो बनाना चक्कर में कर देते हैं एडवेंचर बढ़ा देते हैं तो वो थोड़ा से नॉर्म से बहर जानो मतलब जीवन को खतरा वे सकते ये ध्यान रखें चाहिए ना कि
1: औले का बाबत क्या बोल रहा आपके लिए कि वक भी गढ़वाल मंडल विकास निगम ना बहुत पहले बटे की स्कीइंग की बात कर दा हम या बर्फ का जितना भी खेल होते विंटर गेम्स को आयोजन औले का बाबत क्या बोलना चाहिए आपके सच में हमन साहसिक खेलों में या पर्यटन की हर नई विधा में हमन औली थे अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर पहुंचा सा
0: सब ध्यान साहब औली हमन लगभग 1991 में शुरू करी बहुत बढ़िया
1: जी
0: तो ये तो स्कीइंग बोलन आप तो पता है स्की तो गढ़वाल में क्या बोलन रड़ागुस मतलब बहुत ही बढ़िया कि रड़ागुस पहले आप तो गोयर छोरा कर जा
1: पिरोल में पिरोल में
0: हां पिरोल में रड़ागुस तो वो एक किस्म से स्कीइंग है तो देखो विकास या कोई बोलन उसको उन्होंने फिर हम पैटर्नाइज करी वो थोड़ा बढ़ाई तो गढ़वाल मंडल विकास निगम सबसे पहले ओलिमा शुरू करी ओलिमा बनाए वो एक रोप वे बनाए एक रोप वे लगी ओलिमा जो जोशी मठ बेटी गोरसों तक टॉप में जान छो बीच में एक स्की लिफ्ट लगी जो कि गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस से और करीब करीब आधा किलोमीटर ऐंच तक जाए जब तक है
1: 10 नंबर
0: 10 पिलर तक वो आप शायद जय हैं पूरा तो वक्त तक जाए तो वो फटी फिर इस, तो स्कीइंग का एक ऊंचे बहुत अच्छे अच्छे सेफ छ एक तो मैं ये बोलता एडवेंचर गेम कोई भी हो वे मां सुरक्षा मानक तो होना कोई भी चीज हो चाहे कहें आप चाहे कार भी चलाना है तो सुरक्षा मानकों पर चलाए जाए चाहे कुछ भी चलाना तो सुरक्षा मानक तो हर चीज में होना सर चाहे ट्रैवलिंग करा चाहे कुछ भी करा लेकिन ओली मां सुरक्षा मानक बहुत अच्छे सन गढ़वाल मंडल और ये आईटीबीपी सहयोग करते आईटीबीपी को बड़ो वक्त है और नेशनल इंटरनेशनल भी हमारे लोग स्लालम उन्होंने ग्लैंड स्लालम उन्होंने गेम उन्होंने वे ना तो ये स्लालम्स वगैरह होने रहना तो गढ़वाल मंडल को बहुत बड़ा योगदान से स्कीइंग में और फिर दूसरी जगह भी ट्राई हुए स्कीइंग की बहुत जगह तो सबसे बड़ो कैंप गढ़वाल मंडल विकास निगमों को ओलिमा से और ओलिमा रहने की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और जो शीतकालीन जब रोड बंद हो जाती यख तक है कि हम उन गाड़ियों पर चेन लगे थे लोग थे ओली ले गया और वहाँ स्कीइंग कराए
1: एक चर्चा बहुत हो जब भी साहसिक पर्यटन या पर्यटन की बात आन कि हमारे पास एक शब्द आंद जो कि व्यावसायिक शब्द छे और वो छे प्रोफेशनल ने छे ना हमारे पास बल शिक्षण प्रशिक्षण को कुछ अभाव छे वे का चलदा कखी हम बहुत तेजी से एथर विकसित नहीं हो सकना चाहूँ ये क्षेत्र में साहसिक जन की अगर हम बात करा ट्रैकिंग की ही तो क्या हम चाहे पोर्टर छन चाहे गाइड छन वाकई प्रशिक्षित छन या दूसरी जगह हम ये देखना कि और बहुत सारा क्षेत्र छन जख मे प्रोफेशनल नहीं छन बल तो सच एक मैं बात छे छे कि
0: सर बिल्कुल ठीक बात है आपकी पर मैं एक बात बोलना चाहूँ आपसे कि जैसा हमारे पोर्टर छन मतलब एक किस्म से प्रशिक्षण देने पर जितना खर्चा होलू तो पोर्टर समझ तब तक खर्चे लेना तब तक मैं इतना कमाई दे लू हमारे बेरोजगारी की बड़ी प्रॉब्लम है सबसे बड़े टेक्निकल ये चीज कि सपोज एक पोर्टर जो है बोल भाई तू अब वो चल जा ऑस्ट्रेलिया चल जा या फिलीपीन चल जा के ट्रैकिंग तो पहले बात तो नहीं जा सकते दूसरा वैसे बोले तेरे प्रशिक्षण पर हम लोग 10,000-20,000 खर्च तो 10-20,000 देने में वे प्रॉब्लम आज तू तो ये समझ तब तक है तो मैं कर दो फिर तीसरा यह कि हम तो बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की उम्मीद जरूरत नहीं है क्योंकि वे क्षेत्र का छनो और वो बार बार जाने रहन वही तरफा ट्रैकिंग वा लेकिन हाँ जो बड़े हाई एल्टीट्यूड छन जब बहुत ज्यादा एडवेंचर चलता वो बिना प्रशिक्षण को आज भी कोई नहीं जा सकते वो गाइड भी प्रशिक्षित होना पोर्टर भी प्रशिक्षित होना जो हमारा जो कैंप फॉलोअर बन जाते हैं वो भी प्रशिक्षित होना तो नए लोग कोई नहीं जा सकते और गढ़वाल मंडल विकास निगम या नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग या कि प्रशिक्षण दे दो कि हाई एल्टीट्यूड में कनेक्शन गाइड क्या होना माउंटेनियरिंग कन कर दन सब हमारे फैसिलिटी होंगी लेकिन थोड़ा और जरूरत हो लेकिन कुछ लोग इन उनके एक एक्सपीरियंस भी होता है बहुत बड़ा प्रशिक्षक बने दो
1: बिल्कुल बिल्कुल अनुभव बहुत बड़ी
0: चीज है अनुभव के ही प्रशिक्षक बन जाना
1: अच्छा एक सवाल जो कि जनतक सवाल छ कि ये राज्य में पिछला 25 सालों में नीतियों था लेक कुछ स्पष्ट छवि नहीं रहा है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति बोले जाए जगह बोले जाए कई बात कुछ भी बोल देते अब ये था हमने बना देना और उन हुआ तब इन कला नहीं बोलना मेन वो सब चीज लेकिन फिर भी क्या हमारी पर्यटन नीति सरकारी दृष्टिकोण से ठीक चलनी चाहिए?
0: सर जन आपन संकेत करी, मैं भी वही नाव में सवार छू।
1: जी जी,
0: तो पर्यटन नीति एक्चुअली पर्यटन विकास के हिसाब से बनी चाहिए हमारे। हमारे क्या होंगी कि घोषणाएं हुई जाने लेकिन उसमें अमल करना तब तक धीरे धीरे कर दूसरी गवर्नमेंट है जानते अमल नहीं हो। वह हमसे बहुत चुनौती भी चंद सर एक्चुअली हम लोग पर्यटन बढ़ाओ बढ़ाओ तो कर देना ना, लेकिन जन हम आपके हमारा कचरा प्रबंधन नीचे
1: बिल्कुल
0: रास्ता मार देखा तो टनों हजारों टन कचरा पड़े नीचे, कोई उठाने वाले नहीं चाहते कुछ नहीं चाहिए, कुछ ऐसा नहीं। तो वो सबसे बड़े कचरा प्रबंधन हो जाए। तीसरा हमारे सतत विकास हो जाए। अगर हमारी कैपेसिटी वे शहर की या वे जगह की कम छे तो हम कम में पर्यटन भेजा
1: बिल्कुल
0: स्टिक कर दे कम पर्यटन के लिए। अगर हम बहुत ज्यादा भेज ले तो तय से नहीं भेजा। चौथा वो रोजगार, वो रोजगार भी हो चाहते कि अगर रोजगार नहीं दो हम कहते हैं तो वो पर्यटन को कोई महत्व नहीं। अगर जो रोजगार लोकल रोजगार देने में विदेश बिटियाने और कमाते हैं ले जाना, जन सपोज हम लोग समझ जाए हेलीकॉप्टर वाले एक चे हेलीकॉप्टर कंपनी कोई भी उत्तराखंड नहीं चल, सब बहर वाले कोई बेंगलोर वाले चे कोई दिल्ली वाले चे कोई कैक वाले, हमारे केवल लेबर छ। ये बात से आप सहमत हो?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: लेबर कथा हूं तो 20-25 हजार रुपए देते खुश कर दे और बाकी सारी कमाई उठे बहर ले जाना, क्या इकोनॉमी
1: बिल्कुल।
0: ये इकोनॉमी और पर्यटन विकास नहीं कर सकते। हम तब विकास कर सकते हैं जबकि लगभग कमाई का 70% खर्चा उत्तराखंड में हो, तब हम होते हैं विकास, पर्यटन विकास के श्रेणी में लोला। अगर वो पैसा उत्पन्न होने हो और सीधा बाहर में जाना तो विकास हमारे थोड़े, विकास तो बेंगलोर को है, विकास तो दिल्ली को है।
1: बिल्कुल
0: तो ध्यान देना चाहना
1: बिल्कुल बिल्कुल। इन भोले जांद के साहब कठोर सवाल जो आप छोड़ी जाना चाहें कि सच में अगर ये राज्य की अर्थव्यवस्था में हम पर्यटन तक बड़ू मन ना चुना तो वे से आने वाले आय भी तो यखा का लोगों को रोजगार मुहैया करा। बडोनी जी आपक अनुभव का आधार पर एक सुंदर चर्चा पर्यटन पर हुए और खासकर एक साहसिक पर्यटन पर। उम्मीद बहुत छ, संभावनाएं बहुत छ, नीति स्पष्ट होनी चाहिए और यखा का लोग थे सीधा वैसे जोड़े जा। इन बात का खातिर और महत्वपूर्ण सुझाव का खातिर आपका वास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। पर्यटन की नई संभावना ये विषय पर हम बात करना चाहे श्री ओपी बडोनी का दगड़ी देखा जो बात हमने पहले बोली हुई उन भी बोली।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही बोली उन। और साहसिक पर्यटन की तो अपार संभावना के बारे में उन बडोन जी ने बताई याली। और सौभाग्य से उत्तराखंड जो पूरा भारत में सबसे ज्यादा साहसिक जो ट्रैकिंग रूट्स हैं वो हमारा उत्तराखंड में ही छिन।
1: बिल्कुल
2: वो हिमाचल में भी नहीं, कश्मीर में भी नहीं, अन्ना तो नॉर्थ ईस्ट में छिन,
1: यानी हिमालय जो राज्य छिन सबसे
2: सबसे एहतर छा ये मामला में।
1: और एक बात तो और बोली उन बडोनी जी, अन्ना बडोनी जी भी बहुत सुंदर बात बोली, बल हम रोज तो ट्रैकिंग करना हूँ घास लेना कोण हमारे जो माता मैडम जो जाना है टुकु टुकु है ना
2: बिल्कुल
1: डाल चढ़ जाना चाहो तो हमार रॉक क्लाइंबिंग भीड़ा चढ़ जाना चाहो हम रॉक क्लाइंबिंग
2: बिल्कुल।
1: तो साहसिक खेल तो हमारे पुटुक छन
2: बिल्कुल बचपन ही बिटेन।
1: हाँ लेकिन जो अब व्यवसायिक तौर पर साहसिक पर्यटन होना चाहिए ना वो माँ ये जरूरी चाहिए कि हम सुरक्षा मानकों को ध्यान रखें
2: बिल्कुल
1: है ना। और फिर भी बात आन कि हम ठीक चाहिए यख की पहाड़ की खूबसूरती यख को जो प्राकृतिक माहौल चे वो आनंद जरूर लियो लेकिन सुरक्षित पर्यावरण का दगड़ी
2: बिल्कुल।
1: तो कार्यक्रम में अब शामिल करना एक कुमाऊनी गीत और जैसे स्वर दीने छन मीना बिष्ट।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दगड़े अभी आप सुनना छा कुछ रंत रैबार और वे से पहले आपन सुनी मीना बिस्कर स्वर मा सुंदर सी कुमाऊनी गीत।
5: गणित माँ जौन सार की भी बारी आई, लेकिन हम ये बात मौसम की बात करला।
4: जी जी बिल्कुल,
5: कहला की मौसम विभाग ना आज भी यार बोल भी बोली हुई की बरखा हो,
4: तीन दिन बोली और डेढ़ दिन में बरखा नहीं पड़ी।
5: लेकिन माहौल तो बन्यो छे ना,
4: माहौल तो बन्यो छे।
5: पर जब जब घाम लगणो ना, वे लगणो के अरे कद धरती में कद आग छे जो भाव आणो फिर दोबारा से।
4: अरे घणो इन छे की पहला दिन तो सुबह उठी शाम तक ठीक रहे बरखा, और दूसरा दिन तो सुबह बरखा मौसम रहे और शाम चटकता रहे घाम।
5: बिल्कुल, और ब्याल तो जरा तरसाई छे, दो चार बूंद पड़ी ना, वो एक बात कुछ ना। आज भी अपार सुबह बुटे साफ ही छे। हां हां, वे जा के पता जब हम छी लगला स्टूडियो वृक्षारोपण का खातिर सबसे बढ़िया छे, क्योंकि आप तो पैण देने की
4: जरूरत। एक आध महीना तक अगर लापरवाही भी हो जाए पैण नहीं डाला तो कम से कम जो डाली लगाई वो जम जाली।
5: हाँ, तो नथरी हूं ना कि हम अपना जो गमला छे ना आजकल, तभी हम हफ्ता में दिखा दो पैंट।
4: जी जी,
5: लगे आजकल पूरी जानो
4: चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल,
5: जो भीतर धरिया छे वो मतलब खैर डाल जरूरी छे, लेकिन जो हम खुला आकाश का तौल लगाना छुआ, वृक्षारोपण करना छुआ अपना पुंगड़ो मा या रास्ता का इना उना, तो ऊते देख रेख की बहुत जरूरत है, क्योंकि गोर बछर भी बहुत हुआ छे।
4: हाँ, और आपन देख लो कि एक नयू एक तरीका लोग लगाना छे आजकल के लोग छतों में भी जो डाला बटोला लगाना शुरू कर लेन
5: खेती साग होवन बट गेन।
4: बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है, और सब तो यू काम करियो चंद कि कम से कम अपना छत में कई चीज पैदा कर सकते हैं।
5: धने अभी अगर लिमा दे ला क्या लासन मिर्च मिर्च है ना, कटक मना खोन
4: वे जानो जो कई उन तो अमरुदा डाला भी लगाए।
5: आप ही देखा कि नींबू
4: नींबू
5: लगाना छन लोग, लेकिन का की इतनी कि कखे मकान था कोई नुकसान होना तो नहीं छे, अगर बंडी दबाव वाले पर
4: इतना ज्यादा भी दबाव नहीं छे, थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ रहा जो पानी को मैनेजमेंट छे।
5: हाँ,
4: वो तो थोड़ा देखना पड़ रहा है, और बाकी न तो वैसे बढ़िया तो कोई काम ही नहीं छे।
5: चला हम भी एक बढ़िया काम कर देना। हाँ, और आप थे राहुल वर्मा और दगड़ियों का शोर में सुनाना चाहूंगा जौन सारी गीत।

0: दगड़ियों, अभी आप सुनना छा जौनसारी गीत स्वर छ राहुल वर्मा और दगड़ियों को।
1: तो आज ये कार्यक्रम छे 6:50 तक और छुए आप दगड़ होली, लेकिन ये बात सुना उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
2: यूं तो अवसर प्रत्येक इंसान की जिंदगी में आता है, लेकिन इंसान उसका स्वागत न कर पाए तो वो लौटने में देरी नहीं करता। कार्डिनल आनंद हर आदमी के अंदर है और वो पूर्णतः सत्य की खोज से मिलता है। महात्मा गांधी। सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्पवान बनो, परिश्रमी बनो और साहसी बनो। स्वामी विवेकानंद। जिसने
3: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
4: PLI है ना?
5: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 187 नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। युवाओं से बिना किसी दबाव के ईमानदारी से अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में UNDP प्रतिनिधि इजाबेल ने मुलाकात की। विभिन्न कार्यक्रमों और भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों पर हुआ मंथन। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अगस्त माह तक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर शत प्रतिशत नियुक्ति करने के निर्देश दिए। और पिथौरागढ़ जिले में कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। यात्रियों का पहला दल आगामी रविवार को पिथौरागढ़ पहुंचेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में PCS मुख्य परीक्षा 2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों और कृषि व कृषक कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक के पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों का आह्वान किया कि वे किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होकर संविधान, कानून और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और निष्पक्षता से कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के साथ राज्य सरकार पूरी मजबूती से खड़ी रहेगी।
7: साथियों, आज हम सब मिलकर ये विकल्प रहित संकल्प लें कि हम अपने व्यक्तिगत हितों से उठकर इस देवभूमि की सेवा करेंगे। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ईमानदारी से काम करने वाले प्रत्येक अधिकारी, प्रत्येक कर्मचारी के साथ हमारी सरकार चट्टान की तरह खड़ी रहेगी। आपको कहीं किसी भी दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ नियम, न्याय और उत्तराखंड की जनता के प्रति ईमानदार रहना है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के हमारी सरकार के इस संकल्प के पूर्ति में आप सभी का निरंतर सहयोग हमें अवश्य मिलेगा।
6: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज सचिवालय में भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की भारत

0: तकनीकी सहयोग और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को और मजबूत करें। वहीं इजाबेल ने बताया कि यूएनडीपी उत्तराखंड में सार्वजनिक नीति और सुशासन के साथ सतत विकास लक्ष्यों को तेजी से बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लघु उद्योग फास्ट फूड प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संस्थान के निदेशक सुखविंदर कादियान ने बताया कि प्रतिभागियों को फास्ट फूड व्यवसाय की तकनीकी जानकारी के साथ केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न स्वरोजगार और वित्तीय सहायता योजनाओं की भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर अपना उद्यम स्थापित कर सकें।
1: 12 दिवसीय फास्ट फूड की ट्रेनिंग है। इसमें जो है पिज्जा, चाउमीन, बर्गर, इडली, डोसा, सांभर, जितने भी फास्ट फूड के प्रोडक्ट हैं वो सभी सिखाए जाएंगे। इसके अलावा ट्रेडिशनल खाना जो है बनाना वो भी सिखाया जाएगा, जिससे जो है 27 युवक युवती जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो आगे जाके अपना छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक का अपना कार्य शुरू भी कर सकते हैं। जैसे स्टॉल लगाने से लेके रेस्टोरेंट खोलना हुआ, या होम स्टे खोलना चाहते हैं तो उसमें अगर खाना बनाने से संबंधित है, या कोई आगे अपना जो है किसी होटल में भी काम करना चाहते वो भी अपना कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सभी को जो है केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाएं, राज्य सरकार की विभिन्न सब्सिडी की योजनाएं, उसकी भी जानकारी दी जाएगी।
0: वहीं कपकोट तहसील के किलपारा गांव के प्रशिक्षणार्थी सोनू आर्य ने कहा कि इस प्रशिक्षण से उन्हें भविष्य में स्वरोजगार शुरू करने में मदद मिलेगी।
2: हमको फास्ट फूड से रिलेटेड बताया जाता है, जैसे मोमो कैसे बनाए, स्प्रिंग रोल कैसे बनाए, अन्य प्रकार के फास्ट फूड संबंधित चीजें बताई जा रही है। हमारा जैसे क्षेत्र है पर्यटन के लिए हिसाब से काफी अच्छा क्षेत्र है सर, वहाँ को पिंडारी ग्लेशियर प्रसिद्ध है ट्रैकिंग के लिए, तो वहाँ काफी पर्यटन आते हैं, तो हम अपना फास्ट फूड का रोजगार खोल सकते हैं, जिससे हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में काफी हम अपना रोजगार कर सकते हैं, अपना आय का संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। सर,
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: ब्रेक के बाद उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज विधान भवन में विभागीय अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अगस्त माह के अंत तक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर 100% नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्रीमती आर्य ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के व्यस्त होने के बहाने के चलते विभागीय कामकाज प्रभावित होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश की हर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बीएलओ के रूप में काम करने के अलावा हर दिन कम से कम एक घंटा अपने केंद्र पर विभागीय कामकाज निपटाएंगी। इस बारे में विभागीय सचिव को सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखने के लिए कहा गया है।
4: आंगनबाड़ी केंद्रों में संचालित योजनाएं उनकी समीक्षा की गई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जिस प्रकार से लगातार जो SIR की ड्यूटी भी कर रही हैं, यानी कि वो BLO की भूमिका भी निभा रही हैं, साथ साथ में उनको विभागीय कार्य भी करने होते हैं, लेकिन चूंकि अभी समीक्षा कर रही थी तो ये पता चल रहा था कि विभागीय कार्य जो है वो हो नहीं पा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हिला हवली हो रही थी, जिसको लेकर दिशा निर्देश आज जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए हैं कि कम से कम एक घंटा जो है वो विभागीय कार्य के लिए, और साथ ही उनकी जो कहे हैं वो जरूर अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर ले, ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती उस रिकॉर्ड को फीड कर पाए पोषण ट्रैकर में।
0: पिथौरागढ़ जिले में कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रियों का पहला दल आगामी रविवार को पिथौरागढ़ पहुंचेगा। श्रद्धालु धारचूला स्थित बेस कैंप में रात्रि विश्राम के बाद 6 जुलाई को उच्च हिमालय क्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे। जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि सभी संबंधित एजेंसियों को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से निपटने के निर्देश दिए गए हैं।
5: इस साल की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है, तो उसमें 10 दलों को कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने हेतु जाना है, और उसी के क्रम में जो पहला जत्था है, हमारा पहला दल है, वो 5 जुलाई को हमारे जनपद में पहुंचेगा और उसका स्टे उस दिन धारचूला में होगा। उसके बाद फिर जो पूरा उसका जो रूट होता है उसमें वो अपने आगे बढ़ेंगे। तो सारी तैयारियां जनपद स्तर पर पूर्ण है, क्योंकि इस समय मानसून काल भी और लगातार बारिश हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखे हैं। हमारी सारी टीम जो है, जितनी हमारी NDRF SDRF है और ITBP, इसमें क्योंकि साथ में ही चलते हैं उनकी पूरी टीम, तो वो सब लोग साथ में लेके चलेंगे जो हमारे यात्रीगण है। पूरी तैयारियां की गई हैं और सिक्योरिटी और सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाएगा, इसके लिए विशेष निर्देश भी हमारे स्तर से प्रसारित किए गए।
0: प्रधानमंत्री गतिशक्ति मास्टर प्लान के तहत चंपावत में जिला स्तरीय कार्यशाला आयोजित।

0: आयोजित की गई। आदर्श चंपावत के तहत इस कार्यशाला में 53 विभागों ने भाग लिया। मुख्य विकास अधिकारी डॉ. जीएस खाती ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य सभी विभागों के साथ समन्वय कर उन्हें सभी प्लेटफॉर्म में प्रभावी उपयोग के लिए प्रशिक्षित करना, ताकि भविष्य में आपसी समन्वय से विकास कार्य प्रभावी ढंग से हो सके।
1: ये कार्यशाला ऑनलाइन माध्यम से स्टेट स्तर से संपन्न की गई थी। इसमें हमारे सभी अधिकारी मौजूद थे। हमारे आदर्श जनपद चंपावत में 53 विभागों द्वारा सारी अपनी जो परिसंपत्तियां हैं, जो उनकी चल रहे काम हैं और जो भविष्य में होने वाले काम हैं, उन सभी को अपलोड कर दिया गया है सक्सेस। इस कार्यशाला का उद्देश्य यह था कि किसी भी जो हमारे विभागों के बीच अंतर समन्वय है और उसके जो इस प्लेटफॉर्म का उपयोगी प्रभावी उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 187 नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। युवाओं से बिना किसी दबाव के अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में यूएनडीपी प्रतिनिधि इजाबेल ने मुलाकात की। विभिन्न कार्यक्रमों और भविष्य में सहयोग के नए क्षेत्रों पर हुआ मंथन। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अगस्त माह तक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के रिक्त पदों पर शत प्रतिशत नियुक्ति करने के निर्देश दिए। और पिथौरागढ़ जिले में कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। यात्रियों का पहला दल आगामी रविवार को पिथौरागढ़ पहुंचेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर ग्राम जगत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं को हार्दिक स्वागत। मैं हूं आपको दगड़िया जयप्रकाश पंवार। और अब आकाशवाणी का 90 साल पूरा होने पर प्रस्तुत किया विशेष रिपोर्ट।

आकाशवाणी का 90 साल। दगड़ियों मेरा हाथ में उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक कवि, जन कवि और गीतकार स्वर्गीय गिरीश तिवारी गिरदा की जीवनी पुस्तक च। पुस्तक को नौच बोल व्यापारी तब क्या होगा, यी पुस्तक की संपादिका छन दीपा तिवारी। यी पुस्तक में कुमाऊनी गायिका श्रीमती बीना तिवारी, जो कि आकाशवाणी की शुरुआती गायिकाओं में शामिल छन, आजकल हल्द्वानी में रहनन्। गिरदा तै याद करदा उन यी पुस्तक में लिखी कि मैं तै 1963-64 को वो समय याद आउंदो जब लखनऊ आकाशवाणी केंद्र से उत्तरायण कार्यक्रम शुरू हुए छ।

कार्यक्रम का संचालन की जिम्मेदारी तीन लोगों ते दिए गए छे। हिंदी मा जयदेव शर्मा कमल, गढ़वाली मा जीत सिंह जरदारी और कुमाऊनी मा वंशीधर पाठक जिज्ञासु। ये तरीका से उत्तरायण कार्यक्रम तीन भाषाओं में संचालित करे जान छो। वे वक्त कलाकारों, गीतकारों, गायकों को बड़ो अभाव छो। जब ये टीम तय पता चली कि मैं भी भातखंडे संगीत विद्यालय की छात्रा छू, उन मैं ते भी गीत गाणों ते बोली तो मैं तुरंत तैयार हो गयूं।

आकाशवाणी मातब ब्रजेंद्र लाल साह केशव अनुरागी चारूचंद्र पांडे गोपाल भट्ट शेखर पाठक गिरदार जीत सिंह नेगी और चंद्र सिंह राही जना सम्मानित लोगों व साहित्यकारों से मेरे परिचय हुए। वे वक्त हम सब लोग आपस में मिल बैठी तय कार्यक्रमों की रिहर्सल व कार्यक्रम तैयार कर दछा। चारूचंद्र पांडे व गोपाल भट्ट जी की शहरी रचनाओं को मिन गायन करी।

वकी मिन पहली बार गिरदा की प्रतिभा तय पछाणी। शेखर पाठक गिरदा व मेरु एक सामूहिक गीत की भी रिकॉर्डिंग भेजे। मैं तय गिरदा जी से काफी कुछ सीखना होते मिली। बाद में नैनीताल में माटी से मंच तक कार्यक्रम में उमा भट्ट व बसंती पाठक से मेरी मुलाकात हुए। यही मंच में गिरदा जी और मिन ऋतु ओने रूनी गाई छो।

0: चखुली चुईचा अटकनी छन और बेटली फुदकण लगी छन, चखुली फैलोनी च पंखुड़ी और नौनी आकाश उड़नी छन।
1: बेटी उथे भी दिया खुलू आकाश, उथे भी उड़न दिया और अग्नि बढ़न दिया।
2: बेटी बचावा बेटी पढ़ावा।
0: तो दगड़ियों अभी आप सुनना चाह एक रैबार और वैसे पहली आकाशवाणी का 90 साल पूरा होने पर एक विशेष रिपोर्ट। अब ग्राम जगत कार्यक्रम तय बटोलना वक्त होने चु पर जानू आप ते सुनौंदा एक सुंदर सी गढ़वाली गीत स्वर्च प्रेरणा भंडारी को।

दगड़ियों, अभी आप सुनना चाह गढ़वाली गीत स्वर सौ प्रेरणा भंडारी को, और ये गीत का दगड़ा ही आज को ग्राम जगत कार्यक्रम यखिमु संपन्न बंधु। जयप्रकाश पवार ते आज्ञा देवा, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे पर्वतीय अंचलों के श्रोताओं का कार्यक्रम ग्राम जगत। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए गढ़वाली प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बिटन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार उगदगढ़ मी ममता बड़ोला। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में अलग अलग विभागों में चयनित 187 अभ्यर्थियों ते नियुक्ति पत्र सौंपे। राज्य में बहाल बिटेन 18 जुलाई तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा विशेष अभियान चलन। कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। पहलू जत्था 5 जुलाई को पिथौरागढ़ पहुंचल और आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को इनर लाइन परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक। और मौसम विभाग को आगामी 7 जुलाई तक राज्य में बरखा को येलो अलर्ट जारी कर। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में चयनित 182 अभ्यर्थियों और कृषि कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों ते नियुक्ति पत्र प्रदान करें। ये मौके पर मुख्यमंत्री ने बोल की ये नियुक्ति पत्र केवल सरकारी सेवा में प्रवेशक दस्तावेज नहीं बल्कि 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों को विश्वास अपेक्षाओं और जनसेवक संकल्पक प्रतीक। उनवाल की अब प्रत्येक अधिकारिक पहचान उनको पद से न बल्कि उनकी कार्यशैली संवेदनशीलता और जनसेवक प्रति समर्पण से भेल। मुख्यमंत्री उनवाल की राज्य सरकारक लक्ष्य उत्तराखंड के प्रत्येक युवते उनकी प्रतिभा और योग्यता अनुरूप मौका उपलब्ध कराण ताकि रोजगारक तलाश में युवाओं तय राज्य से बाहर जाण को विवश नहीं हो। उन अधिकारियों से आह्वान कर कि वो कै भी प्रकार के दबाव से मुक्त भे कनु संविधान कानून और जनहित सर्वोच्च प्राथमिकता दींद अपर दायित्वों को निर्वहन कार। राज्य सरकार ने प्रदेश भर में बहाल बिठेन 18 जुलाई तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय लिया। यह अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के दूसरे चरण अंतर्गत चले जा। सेवा पखवाड़ा के दौरान अलग अलग विभाग जन कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक प्रचार प्रसार कर और पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने को विशेष अभियान चले जा। दगड़ ही विकास कार्यों और सरकार के जनहितकारी उपलब्धियों की जानकारी भी आम जन तक पहुंचे जाए। ये संबंध में नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रायल ने बताया कि विकास खंड और तहसील स्तर पर विशेष शिविर लगे जाए। यूं शिविरों में अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहाल और लोगों की समस्याओं को मौके पर ही समाधान करे जा।
2: 4 जुलाई से प्रदेश व्यापी अभियान जो चलाया जा रहा है उस सेवा सप्ताह के लिए जिला नैनीताल में विकास खंडवार रोस्टर डिसाइड कर लिया है। बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन होगा और जो प्रमुख 2 दर्जन विभाग हैं वो स्टॉल्स का संचालन करेंगे और उसके साथ जन उपयोगी सुविधाएं हैं वो मौके पर ही निस्तारित की जाएंगी। इसके अलावा जो

0: खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं और जो उपलब्धियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन की प्रकार की, उस पर भी परिचर्चा की जाएगी।
1: पिथौरागढ़ जिलामा आगामी कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी भे गई। यात्राक पहलू दल 5 जुलाई को पिथौरागढ़ पहुंचल, जबकि श्रद्धालु 6 जुलाई को धारचूला से उच्च हिमालय क्षेत्र को रवाना भल। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि यात्रा के सुचारू संचालन को सभी संबंधित विभागों तय आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगी। उनवाल की मानसून और वर्षा की स्थिति तय देख पूरी यात्रा मार्ग पर विशेष सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था करेगी। संवेदनशील जगहों पर SDRF और NDRF की टीम भी तैनात करेगी।
2: इस साल की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो उसमें 10 दलों को कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने हेतु जाना है और उसी के क्रम में जो पहला जत्था है, हमारा पहला दल है, वो 5 जुलाई को हमारे जनपद में पहुंचेगा और उसका स्टे उस दिन धारचूला में होगा। उसके बाद फिर जो पूरा उसका जो रूट होता है उसमें वो अपने आगे बढ़ेंगे। तो सारी तैयारियां जनपद स्तर पर पूर्ण है क्योंकि इस समय मानसून काल भी और लगातार बारिश हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखे हैं। हमारी सारी टीम जो है, जितनी हमारी NDRF SDRF है और ITBP इसमें क्योंकि साथ में ही चलते हैं उनकी पूरी टीम, तो वो सब लोग साथ में लेके चलेंगे जो हमारे यात्रीगण है। पूरी तैयारियां की गई हैं और सिक्योरिटी और सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाएगा, इसके लिए विशेष निर्देश भी हमारे स्तर से प्रसारित किए गए।
1: ये साल लिपुलेख मार्ग बिटेन कैलाश मानसरोवर यात्रा को 10 दल जाल। जिला प्रशासनक बुलुण चिकी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करना को सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी करें।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: उना मानसून के मद्देनजर आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को इनर लाइन परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक लगेगी। धारचूला को उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि मौसम की स्थिति में सुधार होने पर प्रशासन परमिट जारी करने के संबंध में दोबारा निर्णय लिया।
4: क्षेत्र में लगातार हो रही अतिवृष्टि को देखते हुए आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा के लिए जारी होने वाले इनर लाइन परमिट पर प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हालांकि बीच बीच में मौसम के स्थितियों को देखते हुए इनर लाइन पास जारी करने पर प्रशासन द्वारा समय समय पर विचार किया जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में लगातार लैंडस्लाइड्स कई जगहों पर एक्टिव रहती हैं, इसी को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं जितने भी इसमें ट्रेवल टूरिस्ट लोग चलते हैं उनके सभी की सेफ्टी को पैरामाउंट रखते हुए इनर लाइन परमिट को
1: केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालकों की तरफ बिटे तीर्थयात्रियों दगड़ अभद्र व्यवहार और मनमानी की लगातार मिलन व शिकायतों के बाद रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ाई है। प्रशासन ने स्पष्ट कौर की बिना पंजीकरण के भी घोड़ा खच्चर संचालक तय यात्रा मार्ग पर संचालन का अनुमति नहीं दिए जाए। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी विशाल मिश्र ने सभी घोड़ा खच्चर संचालकों से जिला पंचायत में अनिवार्य रूप से अपर पंजीकरण कराने का अपील कर।
5: श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल मार्ग में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कभी कभी घोड़े खच्चर की सेवा लेनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं जहां पर घोड़े खच्चरों के जो संचालक हैं, जो हॉकर हैं, उनके द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है और जो प्रकरण संज्ञान में आए उसमें कार्रवाई भी की, परंतु इस तरीके के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो इस संदर्भ में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो भी हॉकर घोड़े खच्चर का संचालन करेंगे उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जिला पंचायत में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, वो दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, फाइन भी होगा, अन्य विधिक कार्रवाई भी होगी। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा सभी होकर अपना रजिस्ट्रेशन जिला पंचायत रुद्रप्रयाग में करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यदि कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार।
1: नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच को एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ कर। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के सहयोग से ये उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य स्वास्थ्य आम जन और निगरानी एजेंसियों के बीच समन्वय के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को स्वास्थ्य निगरानी तय मजबूत कंच ताकि जोखिम वाले यात्रियों को शीघ्र पता लग सकूं। और अब एक नज़र आज के मौसम पर। प्रदेश में मानसून सक्रिय बनो च। मौसम विभाग ने आगामी 7 जुलाई तक राज्य में बरखा का येलो अलर्ट जारी करो। विभाग के अनुसार पौड़ी पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में भारी बरखा की संभावना छ। ये दौरान हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिला में आकाशीय बिजली चमकण, भारी से अति भारी बरखा होण और तेज बथों चलणक भी आशंका जताई गई। मौसम विभाग बोलण छ कि अगला कुछ दिनों तक यानी स्थिति बनी रह सके। विभाग ने लोगों से संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहण और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतण की अपील कर। आखिर में मुख्य समाचार एकदम फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में अलग अलग विभागों में चयनित 187 अभ्यर्थियों ते नियुक्ति पत्र सौंपी। राज्य में भोहाल बटे 18 जुलाई तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा विशेष अभियान चलन। कैलाश मानसरोवर यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। पहलू जत्था 5 जुलाई को पिथौरागढ़ पहुंचल। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को इनर लाइन परमिट जारी करने पर फिलहाल रोक। और मौसम विभाग ने आगामी 7 जुलाई तक राज्य में बरखा को येलो अलर्ट जारी करियो छ। यांग दगड़ी गढ़वली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। आप सुनिए किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: सभी किसान साथियों को डॉक्टर जगदीश पांडे का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कृषि जगत कार्यक्रम में। और क्या हालचाल है हमारे किसान भाइयों के? वैसे हमें पूरा विश्वास है कि हमारे सभी किसान साथी स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और अपना ये दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत सुन रहे होंगे। किसान साथियों, अब आज के कार्यक्रम की यदि बात करें तो हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम में कुछ उपयोगी समसामयिक विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा भेंट वार्ता के क्रम में जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव और उपाय विषय पर डॉक्टर विनी जॉन के साथ बातचीत प्रस्तुत करेंगे। लेकिन कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से हमारे किसान साथी सुन रहे हैं अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। किसान साथियों, अब तो जानते हैं कि रागी यानी फिंगर मिलेट, जिसे उत्तराखंड और अन्य हिंदी भाषी क्षेत्रों में हम मडुआ नाम से जानते हैं, भारत में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण स्मॉल मिलेट यानी कि ये जो श्री अन्न है उनमें से एक है। ये एक कठोर सूखा प्रतिरोधी फसल है जो विभिन्न जलवायु परिस्थितियों में, विशेष रूप से वर्षा आधारित और सीमांत क्षेत्रों में फलती फूलती है। मडुआ या रागी को दुनिया का सबसे पौष्टिक मोटा अनाजों में से एक माना जाता है, जिसका उपयोग अनादिकाल से भोजन के रूप में किया जाता रहा है। मडुआ उच्च पोषण वाला मोटा अनाज है, इसमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा होती है। यूँ कह सकते हैं कि करीब प्रति 100 ग्राम मडुआ में लगभग 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। इसके अलावा आयरन, फाइबर और अमीनो एसिड युक्त होने के कारण यह हड्डियों के स्वास्थ्य, एनीमिया की रोकथाम और मांसपेशियों की मरम्मत के लिए उपयोगी माना जाता है। मडुआ के संबंध में एक तथ्य यह भी है कि यह उन महत्वपूर्ण फसलों में से एक है जो दीर्घकालिक वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि यह विभिन्न जलवायु परिवर्तनों जो परिस्थितियाँ हैं उनमें उगने में सक्षम है। किसान साथी जानते हैं कि मडुवे की उपयोगिता के कारण अब मडुवे का प्रयोग करने वालों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत सारे उपभोक्ता हैं बाजार में। यदि मडुवा जैविक विधियों से उगाया जाए तो इसका मूल्य भी अधिक मिलता है, इसलिए मडुवे की खेती अब लाभप्रद खेती की श्रेणी में आती है। इसलिए किसान साथियों को चाहिए कि वे उन्नत सस्य क्रियाओं के माध्यम से मडुवे की खेती करें ताकि गुणवत्तापरक उत्पादन प्राप्त हो सके। मडुवे की खेती के लिए जलवायु परिस्थितियों की यदि बात करें तो ये 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में उच्च तापमान को भी सहन कर सकता है, इससे भी अधिक। और मडुवे के लिए 400 से 1000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और यह समुद्र तल से 2400 मीटर तक बहुत अच्छी तरह से उगता है, जो इसे मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाता है। इसीलिए उत्तराखंड में भी मैदानी क्षेत्रों में भी मडुआ उगाया जा रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों में भी मडुआ बहुत उगाया जाता है। और मिट्टी के बारे में यदि बात की जाए तो मडुए के लिए हल्की से मध्यम मृदा संरचना वाली दोमट मिट्टी आदर्श होती है। उथली कम उर्वरकता वाली मिट्टी भी इसकी खेती में उसके हमारे किसान साथी बड़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं अगर ऐसी मिट्टी है। और अगर हम pH मान की बात करें तो यदि मृदा का pH मान 5.5 से 7.5 pH सीमा में होता है तो मडुवे का बहुत अच्छा उत्पादन होता है। इसके साथ ही ध्यान ये भी देना चाहिए किसान साथियों को कि जल भराव वाली भूमि में इसका उत्पादन प्रभावित होता है, उत्पादन कम हो सकता है। और भूमि तैयारी के लिए मैदानी क्षेत्रों में किसान साथी 2 से 3 बार जुताई के बाद खेत का समतलीकरण कर दें। अच्छी जुताई के लिए हैरो या रोटावेटर का प्रयोग करें। पर्वतीय क्षेत्रों के हमारे किसान साथियों को मृदा अपरदन रोकने के लिए सीढ़ी नुमा या कंटूर मेणबंदी करनी चाहिए और अत्यधिक ढलान की स्थिति में हाथों से खुदाई या फिर बैलों के माध्यम से भी इसे बो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि ढलानदार इलाकों में उचित जल निकासी सुनिश्चित की जाए। मैदानी क्षेत्रों के किसान साथी वैज्ञानिकों की संस्तुति के अनुसार GPU 28, 26, 45, 48 और ऐसी उन्नत प्रजातियों का प्रयोग कर सकते हैं और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए मडवे की VL वेराइटी जो होती हैं, जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए हैं, VL 352, 324 और 147 ये उपयोग कर सकते हैं। और मडवे की बेहतरीन पैदावार के लिए प्रारंभ के दिनों में ही जो 30-35 दिन होते हैं उसमें खेत में खरपतवार मुक्त उसको रखना चाहिए। खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई या फिर रोपाई के 20 से 22 दिनों के बाद पहली और उसके 15 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। यदि खरपतवार अधिक हों तो विशेषज्ञों की सलाह पर उचित खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जा सकता है। मडवे के खरपतवार नियंत्रण के बारे में बात की तो यांत्रिक या प्राकृतिक विधि से अगर उसका खरपतवार नियंत्रण किया जाए तो ये बहुत प्रभावी है। इसके लिए पहली निराई गुड़ाई बुआई के लगभग, जैसा हमने बात की, 20 से 25 दिनों के अंदर कर लेनी चाहिए। और किसान साथी जानते हैं कि मडवे को छिटक कर या फिर रोपाई के द्वारा बोया जाता है, लेकिन यदि पंक्तिबद्ध बुआई का तरीका अपनाते हुए आपने मडवे को कतारों में बोया तो खरपतवार निकालने के लिए कुदाल या फिर हैंडहो, जैसे खुरपी है, उसका प्रयोग कर सकते हैं और बड़ी आसानी से खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। और इस तरह से मिट्टी में हवा का संचार भी होता है और जड़ें भी मजबूत होती हैं। वैसे ये उपयुक्त तो नहीं, लेकिन यदि खेत बहुत बड़ा हो या फिर निराई गुड़ाई संभव ना हो तो रसायनों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि जो आपके स्थानीय कृषि विशेषज्ञ हैं या कृषि विज्ञान केंद्र हैं और मिट्टी की स्थिति के अनुसार जो भी उन्होंने संशोधित दी उसके हिसाब से उसे प्रयोग करें। और जैविक रूप से अगर उत्पादन करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन होता है, मूल्य भी मिलता है। तो इसलिए गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करके उसे धूप में छोड़ दें, इससे खरपतवार की जो बीज हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अतिरिक्त बुआई के लिए आप जब भी हम करें जो प्रमाणित बीज हैं और साफ बीजों का प्रयोग करें ताकि जंगली घास और बीज खेतों में न फैलें। तो इस तरह से किसान साथी खरपतवार नियंत्रण करते हुए अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं मडवे का। किसान साथियों, इस चर्चा के बाद कार्यक्रम में अब समय हो चला है एक लोकगीत का, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से हमारे किसान साथी सुन रहे हैं अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। किसान साथियों, आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जो वैश्विक स्तर पर हो रहा है, उसका असर पूरे देश और पूरे, हम कह सकते हैं, हमारे प्रदेश में है, बहुत ज़्यादा है। और उत्तराखंड जैसे जो हमारा पर्वतीय राज्य है, इसमें तो जलवायु परिवर्तन का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसान सीधे सीधे बारिश से जुड़े होते हैं और अब मौसम चक्र में भी परिवर्तन होने ही लगा है। तो किसान साथियों, इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव और उपाय विषय पर डॉक्टर विनी जान के साथ संतोष फुलरा की बातचीत।
1: किसान साथियों नमस्कार, आज हम बात करेंगे मौसम के बदलाव का कृषि पर प्रभाव पर। बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विनी जॉन। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार।
1: मैं सर, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज हम ये जानना चाहेंगे कि मौसम में आने वाले बदलाव का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके समाधान हम कैसे कर सकते हैं।
2: जी बिल्कुल, देखिए हम जो है हमारी फसलों में इसका प्रभाव जो है, सबसे पहले जो है अगर हम ये देखते हैं कि अत्यधिक बारिश हो रही है या अत्यधिक सूखा पड़ रहा है या फिर बहुत ठंड है, जिस वजह से हम जो फ्रॉस्ट की कंडीशन कहते हैं, ये वाली कंडीशन जब होती है तो इसमें क्या होता है, जो हमारी फसलें हैं वो एक स्ट्रेस में आ जाती हैं। तो वो स्ट्रेस जो है वह उनकी वजह से फल नाश होते हैं, हमारे फूल नाश होते हैं और इस तरीके से अल्टीमेटली हमारे जो है अच्छी जो है हमें उपज नहीं मिल पाती।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज़ महत्वपूर्ण बात यह है कि फसलें तो ठीक है, जब फसलें लगा दी उसके बाद उसका प्रभाव पड़ेगा, क्या मौसम का प्रभाव बीजों के अंकुरण पर भी पड़ता है? क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा बीज होगा वैसे ही फसल होगी, अंकुरण को बचाने के लिए हम क्या करेंगे?
2: देखिए जी बिल्कुल, जब हमने फसल लगा दी है और मौसम जब इस तरीके से परिवर्तित हो रहा है तो उसका असर बीजों पे पड़ेगा। और उसके लिए सबसे जो हम ट्रेडिशनल जो तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम अपने बीज का उपचारण करते हैं, अच्छी किस्म जैसे हम कहते हैं रेसिस्टेंट वैराइटीज़, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज जब हम एक आधुनिक भारत में हम हैं और बहुत हमने टेक्नोलॉजी में बहुत आगे भारत बढ़ गया है, तो हम आज के समय में जो है जो स्ट्रेस टॉलरेंस वैरायटी, ये एक वैरायटी भी हमारे किसान भाइयों को देखना चाहिए। हम डिजीज़ जो है बीमारी रोधक जो है किस्में तो इस्तेमाल करते हैं, वैसे बीज तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से हम अपने वातावरण में, जिस तरीके से हम जलवायु में परिवर्तन देख रहे हैं कि अचानक बहुत अधिक वर्षा हो रही है, वर्षा के मौसम में वर्षा नहीं हो रही है और बहुत अनियमितता हो रही है पूरे पर्यावरण में हम देख रहे हैं, तो अब हमारे किसान भाइयों को ये करने की आवश्यकता है कि जब वो बीज लेने जाते हैं तो वो एक और चीज़ का ध्यान दें कि वो जो है जो आपकी स्ट्रेस रेसिस्टेंस, मतलब जो तनाव है उसको जो झेल पाने के लिए, या स्ट्रेस टॉलरेंस भी हम कहते हैं, ऐसे किस्म के जो है बीज और ऐसे किस्म की वैरायटी का इस्तेमाल करें।
1: मैम, कैसे पता करें कि ये बीज मौसम के अनुकूल होंगे या विपरीत परिस्थितियों में भी ये ठीक ठाक उत्पादन देंगे? तो क्या इसको जांचने का कोई उपाय है या कोई विधि है?
2: हाँ देखिए, इसके लिए तो आपको जो है सीड टेस्टिंग जो है एक तरीका है। आप सीड टेस्टिंग जगह जगह, हमारे इवन उत्तराखंड में भी बहुत सारे जो सरकारी संस्थान हैं वहाँ पे सीड टेस्टिंग लैब्स हैं, तो आप वहाँ जाकर भी अपने जो बीज हैं उसकी जो है आप जांच करवा सकते हैं। और दूसरा ये कि जब हम अब बाजारों में या फिर केवीके होते हैं जहाँ से इन सब का वितरण किया जाता है, तो वहाँ पे जो है जो भी आप बीज लेते हैं तो उसमें उसका पूरा विवरण दिया होता है, तो आप वो विवरण को देखें पीछे जब आप बीज लेते हैं कि उसमें जो है ये बातें भी उसमें हैं कि नहीं है, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, उसमें जो है ह्यूमिडिटी लेवल कितना है, और साथ में आप ये भी देखिए कि स्ट्रेस टॉलरेंस जो है उसमें अगर है तो आप ज़रूर उस किस्म का, उस बीज का इस्तेमाल करें।
1: मैम, आज तक तो हमने यही सुना था कि जब हम खेतों में कोई उपज लगाएं या पैदावार करें तो मृदा परीक्षण कराएं, कम ही सुनने को मिलता है कि बीजों का भी परीक्षण कराएं, तो उम्मीद है कि किसान साथी इसका लाभ उठाएंगे।
2: जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से जलवायु का परिवर्तन हो रहा है तो हम किसी एक चीज़ पर निर्भर होकर अब बैठने का समय नहीं है। तो हाँ, हमें अपने फसल को बोने से पहले ही हमें पहले अपने जो है अपनी मृदा का जांच करानी ज़रूरी है कि उसमें किसी भी प्रकार के अगर जो है आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वो हमें उसमें ज़रूर मिलाने हैं। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे कि AI टेक्नोलॉजी अब बहुत ज़्यादा उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है और कृषि में भी उसका एक बहुत बड़ा जो है अहम भूमिका अब जो है बड़े किसान उसका इस्तेमाल करने लगे हैं और यही हमारे जो है उत्तराखंड के किसानों को भी करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आप ये पता लगा सकते हैं कि आप जब जिस फसल को बोने जा रहे हैं तो उससे उसके समय में किस तरीके से जो है मौसम रहने वाला है, किस तरीके से जलवायु रहने वाली है, तो आपको उस जलवायु का पहले से ही पता चलेगा, मौसम का पहले से पता चलेगा, कितनी आर्द्रता रहने वाली है, कितना वर्षा होगी या वर्षा नहीं होगी। तो आप ये सारी जानकारियां अगर ले लेंगे तो आप उसी हिसाब से अपना जो है खेत की तैयारी कर सकते हैं और उसी ही प्रकार के आप जो है बीजों का इस्तेमाल करें।
1: एक जो मैडम सबसे बड़ी बात ये आती है उर्वरक का इस्तेमाल। पिछले लगातार हम भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से जैविक खाद के लिए हम वर्मी कंपोस्ट का प्रचार कर रहे हैं कि आप इसको कीजिए, उससे अच्छा उत्पादन मिलेगा, बाजार भाव अच्छा मिलेगा। उत्पादन को लेकर के आप क्या कहेंगे कि कौन सा उर्वरक हमें इस्तेमाल करना चाहिए हमारे किसान साथियों को?
2: देखिए, जितने हमारे जैविक जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आराम से हर जगह उपलब्ध हैं, तो हम जिसको कहेंगे वो यही है कि बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं, यानी कि जैसे हमारा ट्राइकोडर्मा हो गया, राइजोबियम हो गए, एजेटोबैक्टर्स हो गए, इन सब का जो है नियमित रूप से अपने खेत में इस्तेमाल करना किसानों को जो है उसके लिए लाभकारी है, फसलों के लिए भी। ये एक सूक्ष्म जीव है तो ये आपकी फसल को क्या करेंगे, आपकी फसल की जड़ों को जो है एक मजबूती प्रदान करेंगे कि जब ऐसी जलवायु परिवर्तन और ऐसी स्ट्रेस वाली जो है फसलें जब उसको झेलती हैं तो वो आपको एक एक्स्ट्रा जो है प्रोटेक्शन जो है हमारे फसलों को देंगे। किसान भाइयों को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो हम अपने जो हमारी खाद है, गोबर खाद है, ये सारी चीज़ें जो हम डालते हैं, केंचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं, वो सब साथ में करना चाहिए। रसायन में हम तब जाते हैं जब हमारी फसलें एकदम उस हालत में पहुंच जाती है, जैसे हम हैं कि हम एकदम से ऑपरेशन थिएटर नहीं जाते, हम ऑपरेशन थिएटर तब जाते हैं जब दवाइयों से काम नहीं चलता। तो रसायन को भी जो है हमें अपने आखिरी विकल्प की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि पहले विकल्प की तरह।
1: एक चीज और समझ में आती है कि धीरे धीरे मौसम में बदलाव आ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ठंडा ज्यादा हो गया है पहले के मुकाबले और कहीं पहले के मुकाबले गर्मी ज्यादा हो गई है। तो ऐसे में जो फसलें पारंपरिक रूप से उगाई जा रही थी या बागवानी की जा रही थी, क्या उसमें भी प्रभाव पड़ता है?
2: जी बिल्कुल, हमारे पूरे फसल चक्र पे जो जलवायु परिवर्तन है उसका पूरा असर हम देख सकते हैं। हमने बीते दिनों में देखा कि गेहूं की कटाई के समय, कटाई का जैसे ही समय आ रहा था, मार्च के समय, फरवरी के आखिरी और मार्च के समय में हमने भीषण बारिश को देखा। अभी हम जैसे कि अभी खरीफ की फसलों की तरफ हम जाने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि जो औसतन जो है हमारा जो बारिश है, जो बरसात है, वो कम हुई है। तो ये भी जो है सारी जो हम अभी हालातों को देख रहे हैं अपने जलवायु का, तो इनका सीधा सीधा असर जो है वो किसानों के ऊपर, उनकी फसलों के ऊपर सीधे सीधे पड़ने वाला है। तो इसलिए मैं यही जो है किसान भाइयों को हमारे कहना चाहती हूँ कि इन सारे चीज़ों से हम इनको बदल नहीं सकते, पर इनसे लड़ने के लिए हमें अब सिर्फ एक या दो तरीकों के ऊपर निर्भर नहीं रखे खेती की जा सकती है। अभी हमें साथ में सभी तरीके को इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे वो हमारा जैविक तरीके का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर हमारे जो ट्रेडिशनल तरीके से हम जो खेती कर रहे हैं। आप एक ही फसल के ऊपर निर्भर मत रहिए, लेकिन एक समय में एक से ज्यादा फसल लगाइए और ज्यादातर वो फसलों को आप एज ए सपोर्टिंग फसल लगाइए जो कि जिसके अंदर टॉलरेंस हो, मतलब जो प्रतिरोधक जो हो क्षमता, चाहे वो रोगों के प्रति हो, चाहे वो वातावरण प्रतिरोधक क्षमता है उसको सह सके, ऐसी जो है फसलों को साथ में जरूर लगाएं।
1: जलवायु परिवर्तन का असर हमारे खेतों पर पड़ रहा है, हमारी दिनचर्या पर पड़ रहा है, क्या इसको हम सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से इंटीग्रेटेड फार्मिंग में भी जोड़ सकते हैं?
2: जी जी बिल्कुल, इंटीग्रेटेड ये जो है क्रॉपिंग सिस्टम जो है अब अपनाने का समय आ गया है कि हम कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहां जाकर जो है मौसम का जो है उनसे रिकॉर्ड ले लें, ताकि उनको पता हो कि वो फसल जिसको लगाने वाले हैं तो आने वाले समय में किस तरीके से मौसम जो है परिवर्तन लेगा। साथ ही वो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उसके लिए उनको अपने खेत और उनको बीज और उनके लिए किस तरीके से, जैसे कि अगर आने वाले समय में अगर ऐसा है कि पानी या बारिश की में कुछ कमी आएगी तो वो जैसे कि हम वो बनाते हैं तालाब बनाते हैं, इस तरीके से पानी का संरक्षण किया जा सकता है। जैसे अगर जिनके खेतों में ऐसी समस्या आ रही है कि जो है पानी जल भराव की स्थिति आ जाती है, तो वो उन जल भराव वाले जो है उसको हटाने के लिए मेड़े बना सकते हैं। और अगर ऐसा है कि सूखे की स्थिति है तो भी वो मेड़े बना के जो है जल का संरक्षण कर सकते हैं, या सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर जो है वो एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने स्प्रिंकलर जो है इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ परिवर्तन हैं जो अब समय आ गया है कि किसानों को अपनाने होंगे।
1: किसान साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मौसम के बदलाव का कृषि पर प्रभाव, और हमने तमाम तरह की जानकारियां हासिल किया। एक महत्वपूर्ण बात, हम मौसम को नहीं बदल सकते, हमारे हाथ में नहीं है। जलवायु परिवर्तन में हम और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम जरूर कर सकते हैं कि नुकसान से बचाव कैसे हो। तो एक फसल बीमा योजना है
2: जी,
1: तो उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे।
2: जी हाँ, देखिए हमारे जो है अभी जो है फसल बीमा योजना के तहत जो है आप अपनी कोई भी फसल लगाने जा रहे हैं तो आप उसका बीमा करवा सकते हैं, जो कि किसी भी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा है उसमें जो होने वाली आपको नुकसान होने वाला है उसमें जो है आपको आर्थिक सहायता मिलती है। अगर ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है और आपकी उसमें फसल नाश होती है तो आप उसमें सीधे रूप से जाके आप आर्थिक मदद ले सकते हैं। आप कृषि विभाग द्वारा जो है कई सारी योजनाएं हैं जो अभी संचालित हो रही हैं, उनसे आप अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
1: किसान साथियों, आज हम बात कर रहे थे मौसम के बदलाव का कृषि पर प्रभाव, जलवायु परिवर्तन कैसे हमारी कृषि को प्रभावित कर रहा है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, सरकारी कौन कौन सी योजना है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर मिमी जॉन आज हमारे साथ थी और आपने इतने महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हुई और हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
0: 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की देहरादून केंद्र से अपने दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत में हमारे किसान साथी सुन रहे थे जलवायु परिवर्तन का कृषि पर प्रभाव और उपाय विषय पर डॉक्टर विनी जॉन के साथ संतोष फुलारा की बातचीत। किसान साथियों, इस भेंटवार्ता के बाद अब समय है एक लोकगीत का, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से हमारे किसान साथी सुन रहे हैं अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। किसान साथियों, उत्तराखंड के दृष्टिकोण से बरसात का ये मौसम बहुत अधिक संवेदनशील होता है, क्योंकि इस मौसम में मृदा क्षरण और भूस्खलन की घटनाओं में बहुत वृद्धि हो जाती है। जहां तक खेती बाड़ी का प्रश्न है, तो राज्य में वर्षा आधारित खेती अधिक होने के कारण मानसून की बरसात के कम या अधिक होने का सीधा असर खेतों में पड़ता है। इसलिए सभी के लिए मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करते रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मौसम संबंधी जानकारी के आधार पर ही यात्रा के कार्यक्रम तय होने चाहिए और उसी अनुसार खेतों में की जाने वाली सस्य क्रियाओं का भी निर्धारण किया जाना चाहिए। मौसम विभाग विज्ञान केंद्र के देहरादून के द्वारा जो जानकारी दी गई थी, तो पिछले दो दिनों में मौसम में कई जगह बारिश हुई। नैनीताल, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, इन जनपदों में बारिश की जैसे की संभावना बताई गई थी, तो बारिश काफ़ी हुई थी। और आगामी 7 जुलाई तक के लिए मौसम विभाग ने सभी जनपदों में, जैसा कि आप जानते हैं, येलो अलर्ट जारी किया है। और कल यानी 4 जुलाई के लिए राज्य के जो पौड़ी और बागेश्वर जनपद हैं, उनमें कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना बताई गई है। अन्य पर्वतीय जनपदों में भी कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने तथा वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा बताई गई है। इसके अलावा हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपदों में कहीं कहीं गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की और बौछारों की संभावना दी गई है। और मौसम विज्ञान केंद्र ने यह भी परामर्श दिया कि भारी बारिश के कारण चट्टान खिसकने या मलबा आने की वजह से सड़कें अवरुद्ध हो सकती हैं, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और पिघलती हुई बर्फ में होने वाली वर्षा के कारण गधेरों और बरसाती नालों में अचानक जल का प्रवाह बढ़ सकता है और इससे फ्लैश फ्लड की संभावना होती है, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। और मौसम विज्ञान केंद्र ने यह भी कहा है कि जो इन दिनों में बागवानी और कृषि फसलों में मक्का, बाजरा तथा चना आदि फसलों की गुणवत्ता भी इन जो महाबारिश है उससे प्रभावित हो सकती है। तो किसान साथियों, हमें सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। और आजकल तो संचार के बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा मौसम संबंधी जानकारी मिलती है, और सरकार के द्वारा भी हर स्तर से मौसम की जानकारी का प्रसार किया जा रहा है। तो आप जानकारी लेकर ही सभी अपने कार्यक्रम तय करें। अब आज के कृषि जगत को समाप्त करने का समय हो चला है। आप हमें पत्र अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी, देहरादून, 248001। आप हमें jagatkrishi@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। अब आज के कार्यक्रम से डॉक्टर जगदीश पांडे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:30 हुए हैं। आप सुनिए कुमावनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बठे कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचार नगदगढ़ में ममता पांडे। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादून में अलग अलग विभागों में चयनित 187 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र सौंपिन। राज्य में भोलबठे 28 जुलाई तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा विशेष अभियान चलौल। कैलाश मानसरोवर यात्रा की सपे तैयारियां पूरी। पहली दल 5 जुलाई के पिथौरगढ़ पुजल और आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारीकरण पर एल रोक। और मौसम विभाग ऊणवा 27 जुलाई तक राज्य में बरखक येल्लो चेतावनी दी राखी। और अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 में चयनित 182 अभ्यर्थी और कृषि कल्याण विभाग में वैयक्तिक सहायक पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करें। यो मौक पर मुख्यमंत्री को की नियुक्ति पत्र केवल सरकारी सेवा में प्रवेशक दस्तावेज नहा बल्कि 125,000 उत्तराखंड वासियों का विश्वास अपेक्षा और जन सेवा संकल्प प्रतीक छू। उन्होंने कहा कि अप्रत्येक अधिकारी की पहचान वैक पदल न है बल्कि वैक कार्यशाली संवेदनशीलता और जनसेवा प्रति समर्पण होली। मुख्यमंत्री को की राज्य सरकारक लक्ष्य उत्तराखंडक हर युवा के वैक प्रतिभा और योग्यता अनुरूप मौक उपलब्ध करूण छू। जैल रोजगारक तलाश में युवाओं के राज्य बठे बिहार जानक लिजी विवश नहीं होन पड़ोल। उनल अधिकारियों थे आह्वान करो कि उ क्वेले प्रकारक दबावल मुक्त है बेर संविधान कानून और जनहित के सर्वोच्च प्राथमिकता दीबेर अपूर्ण दायित्वों ढंगल पुर करो। राज्य सरकार प्रदेश भर में भोलबठे 28 जुलाई तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा आयोजित करने का निर्णय ले। यो अभियान जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रमक दूसर चरणक भीतर चलाई जाल। सेवा पखवाड़ा के दौरान अलग अलग विभागों जन कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार कराल और पात्र जानिन के सरकारी योजनाओं फैद दिलोणक लिजी विशेष अभियान चलाई जाल। दगड़े विशाल कामों में सरकारक जनहितकारी उपलब्ध की जानकारी ले आम जनिन तक पुजाई जाली। यो संबंध में नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयालल बताए कि विकास खंड और तहसील स्तर पर विशेष शिविर लगाई गई और शिविरों में विभिन्न विभागों अधिकारी ले रोल और मनखियों समस्याओं को मौक पर ही समाधान करी जाल।
2: 4 जुलाई से प्रदेश व्यापी अभियान जो चलाया जा रहा है उस सेवा सप्ताह के लिए जिला नैनीताल में विकास खंडवार रोस्टर डिसाइड कर लिया है। बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन होगा और जो प्रमुख 2 दर्जन विभाग हैं वो स्टॉल्स का संचालन करेंगे और उसके साथ जन उपयोगी सुविधाएं हैं वो मौके पर

0: उच्च हिमालयी क्षेत्र के लिए नह जल। पिथौरगढ़क जिलाधिकारी आशीष भटगाईल बताए कि यात्रा के सुचारू ढंगल संचालन करने के लिए सपे संबंधित विभागों के जरूरी दिशा निर्देश दी गई। उनलकों की मानसून और बरखक स्थिति के देखभेर पूर्व यात्रा बाट पर विशेष सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था करेगी। संवेदनशील जगहों पर SDRF और NDRF की टीम ले तैनात करी गई।
1: इस साल की जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है तो उसमें 10 दलों को कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने हेतु जाना है और उसी के क्रम में जो पहला जत्था है, हमारा पहला दल है, वो 5 जुलाई को हमारे जनपद में पहुंचेगा और उसका स्टे उस दिन धारचूला में होगा। उसके बाद फिर जो पूरा उसका जो रूट होता है उसमें वो अपने आगे बढ़ेंगे। तो सारी तैयारियां जनपद स्तर पर पूर्ण है क्योंकि इस समय मानसून काल भी और लगातार बारिश हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखे हैं। हमारी सारी टीम जो है, जितनी हमारी NDRF SDRF है और ITBP इसमें क्योंकि साथ में ही चलते हैं उनकी पूरी टीम, तो वो सब लोग साथ में लेके चलेंगे जो हमारे यात्रीगण है। पूरी तैयारियां की गई हैं और सिक्योरिटी और सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए विशेष निर्देश भी हमारे स्तर से प्रसारित किए गए।
0: यो साल लिपुलेख बाट बठे कैलाश मानसरोवर यात्रा 10 दल गुजरल। जिला प्रशासन कूण छू कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित और भल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सपे जरूरी व्यवस्था पूर्ण कर ली गई।
2: मौनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
0: वहीं मानसून के देखभेर आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करण पर एल रोक लगा हाली। धारचूला उप जिलाधिकारी आशीष जोशील बताए कि मौसमक स्थिति में सुधार होने पर प्रशासन परमिट जारी करणक संबंध में दोबारा निर्णय लेल।
3: क्षेत्र में लगातार हो रही अतिवृष्टि को देखते हुए आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा के लिए जारी होने वाले इनर लाइन परमिट पर प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हालांकि बीच बीच में मौसम के स्थितियों को देखते हुए इनर लाइन पास जारी करने पर प्रशासन द्वारा समय समय पर विचार किया जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में लगातार लैंडस्लाइड्स कई जगहों पर एक्टिव रहती हैं। इसी को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं जितने भी इसमें ट्रेवल टूरिस्ट लोग चलते हैं उनके सभी की सेफ्टी को पैरामाउंट रखते हुए इनर लाइन परमिट को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है।
0: केदारनाथ धाम यात्रा बाट पर घोड़ खच्चर संचालकों की ओर बठे तीर्थयात्रियों दगड़ अभद्र व्यवहार व मनमानी की लगातार मिलनवार शिकायतों के बाद रुद्रप्रयाग जिला प्रशासनल सख्ती बढ़ा हली। प्रशासनल साफ कह हलो कि बिना पंजीकरणक कुएले घोड़ खच्चर संचालक के यात्रा बाट पर संचालन की अनुमति नहीं दी जाली। रुद्रप्रयागक जिलाधिकारी विशाल मिश्राल सपे घोड़ खच्चर संचालकों थे जिला पंचायत में अनिवार्य रूपण अपूर्ण पंजीकरण करुण अपील करी।
4: श्री केदारनाथ धाम की यात्रा में पैदल मार्ग में जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कभी कभी घोड़े खच्चर की सेवा लेनी पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं जहां पर घोड़े खच्चरों के जो संचालक हैं, जो हॉकर हैं, उनके द्वारा तीर्थ यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है और जो प्रकरण संज्ञान में उसमें कार्रवाई भी की, परंतु इस तरीके के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न हो इस संदर्भ में प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जो भी हॉकर घोड़े खच्चर का संचालन करेंगे उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जिला पंचायत में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वो दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, फाइन भी होगा, अन्य विधिक कार्रवाई भी होगी। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा सभी होकर अपना रजिस्ट्रेशन जिला पंचायत रुद्रप्रयाग में करवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में यदि कोई कार्रवाई होती है तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार।
0: नागर विमानन मंत्रालय देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डन पर इबोला स्वास्थ्य जांचक लीजिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल शुभारंभ करो। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड सहयोगल यो उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्मक उद्देश्य स्वास्थ्य आव्रजन और निगरानी एजेंसियों के बीच तालमेलक माध्यमल अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य की निगरानी के मजबूत करण छू जैल जोखिम वाले यात्रियों के झट पताई ला जगा सकल। और अब एक नज़र आजक मौसम पर। प्रदेश में मानसून सक्रिय बनी छू। मौसम विभागल ऊणवल 7 जुलाई तक राज्य में बरखक येल्लो चेतावनी दी राखी। विभागक अनुसार पौड़ी पिथौरगढ़ बागेश्वर जिलों में बहुत तेज बरखक अंदाज छू और यो बीच हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में चाल चमकण और बहुत तेज बर्फ हुणक तेज बयाव चलनक रे अंदाज जता रखो।

मौसम विभागक कूण छ कि अगिल थोड़ा दिनों में यसे मौसम रूण वाल छ और विभागल सपनथे संवेदनशील जागो में होशियार रूण और यात्रा दौरान विशेष सावधानी बरतनक अपील कर रखी। और आखिर में मुख्य समाचार एक बार आजी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल आज देहरादून में विभिन्न विभागों में चयनित 187 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र सौंपिन। राज्य में भूल बैठे 28 जुलाई तक 15 दिवसीय सेवा पखवाड़ा विशेष अभियान चलोल। कैलाश मानसरोवर यात्रा सपे तैयारियां पुर पहली जत्थ 5 जुलाई के पिथौरगढ़ पुजल। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट जारी करण पर एल रोक। और मौसम विभागल ऊन व 27 जुलाई तक राज्य में बरखक येल्लो चेतावनी दी राखी। ये कदगढ़ ही कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक यही खत्म हो। नमस्कार।

कुमार शानू की आवाज में गीत अभी आपने सुना, फिल्म का नाम 1942 अ लव स्टोरी। संगीत निर्देशन था आर डी बर्मन का और गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है अंदाज अपना अपना। एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज में ये अगला गीत। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत निर्देशन तुषार का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। शाम के 7:50 हुए हैं। अब सुनिए आरएनयू देहरादून की विशेष प्रस्तुति विषय संवाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम सीरीज अदम्य साहस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अक्सर युद्धभूमि के पराक्रम की कहानियां सुनाते हैं, लेकिन आज की कड़ी उस वीर के नाम है जिसने शांति काल में ऐसा साहस दिखाया कि इतिहास में अमर हो गए। आज हम बात करेंगे भारत के सर्वोच्च शांतिकाल वीरता सम्मान अशोक चक्र के पहले सम्मानित सैनिक नायक नर बहादुर थापा की। और हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं लेफ्टिनेंट रवि प्रताप सिंह। लेफ्टिनेंट रवि, आपका बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: जय हिंद। ऐसे महान वीर की कथा साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है।
1: लेफ्टिनेंट रवि, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए कि नायक नर बहादुर थापा कौन थे और वे किस सैन्य इकाई से संबंधित थे, साथ ही उनके जन्म, बचपन, गांव और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी विस्तार से बताइए।
2: नायक नर बहादुर थापा भारतीय सेना की प्रतिष्ठित 5वीं बटालियन 5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स के वीर सैनिक थे। उनका सैन्य क्रमांक 10341 था और वे अल्फा कंपनी की नंबर 3 प्लाटून में तैनात थे। उनका पूरा नाम नर बहादुर थापा था और वे श्री जंगबीर थापा के पुत्र थे। वे नेपाल के निवासी थे और एक साधारण गोरखा किसान परिवार में जन्मे थे। उनका जन्म 1920 में हुआ था। उनका बचपन पहाड़ों की कठोर परिस्थितियों में बीता। उनके परिवार की आजीविका खेती और पशुपालन पर निर्भर थी। बचपन से ही वे शारीरिक श्रम, अनुशासन और आत्मनिर्भरता के वातावरण में पले बढ़े। वे रोज कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाते थे, घर के कामों में हाथ बटाते थे और कठिन मौसम में भी परिवार की जिम्मेदारियां निभाते थे। पहाड़ी जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें बचपन से ही मानसिक रूप से दृढ़, सहनशील, साहसी और अनुशासित बनाया। गोरखा समाज में सेना में भर्ती होना सम्मान और गौरव की बात माना जाता है। अपने पूर्वजों की वीर परंपरा से प्रेरित होकर उन्होंने युवावस्था में भारतीय सेना में शामिल होने का निश्चय किया और अपने प्रशिक्षण के दौरान अद्वितीय साहस, निष्ठा और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। गोरखा रेजिमेंट का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य कायर होनु बंदा मरनु रामरो, अर्थात कायर होने से मर जाना बेहतर है, उनके व्यक्तित्व में साफ दिखाई देता था।
1: जी, लेफ्टिनेंट रवि, उस ऐतिहासिक घटना के बारे में विस्तार से बताइए जिसने उन्हें अमर बना दिया, साथ ही ऑपरेशन पोलो की पृष्ठभूमि, उसका महत्व और उस अभियान में उनकी भूमिका को विस्तार से समझाइए।
2: जी जयवीर जी, यह घटना वर्ष 13 सितंबर 1948 की है और यह भारत के अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य अभियान ऑपरेशन पोलो से जुड़ी है। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था, लेकिन तत्कालीन रियासतों का भारत में विलय अभी जारी था। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सभी रियासतों का एकीकरण। हैदराबाद रियासत, जो भौगोलिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, के निजाम ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वहां रजाकार नामक सशस्त्र संगठन सक्रिय था जो हिंसा और विद्रोह फैला रहा था और आम नागरिकों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। भारत की राष्ट्रीय एकता, आंतरिक सुरक्षा और दक्षिण भारत की स्थिरता के लिए यह स्थिति अत्यंत खतरनाक थी। इसलिए भारत सरकार ने सैन्य कार्रवाई का निर्णय लिया और ऑपरेशन पोलो प्रारंभ किया, जिसे पुलिस एक्शन भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य हैदराबाद रियासत का भारत में विधिवत विलय

0: सुनिश्चित करना था। यह अभियान 13 से 17 सितंबर 1948 तक चला और अंततः हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हुआ। यह अभियान भारत की अखंडता को मजबूत करने वाला निर्णायक कदम सिद्ध हुआ। इसी अभियान के दौरान नायक नर बहादुर थापा की बटालियन को हैदराबाद राज्य के रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तुंगभद्रा रेलवे पुल पर कब्जा करने का दायित्व सौंपा गया। यह पुल दक्षिणी क्षेत्र में सेना की आवाजाही, संचार और रसद आपूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक था। यदि यह दुश्मन के नियंत्रण में रहता तो आगे की सैन्य कार्रवाई बाधित हो सकती थी।
1: लेफ्टिनेंट रवि प्रताप सिंह, जरा उस समय की सैन्य परिस्थितियों के बारे में कुछ बताइए।
0: बिल्कुल, परिस्थितियां अत्यंत चुनौतीपूर्ण थी। दुश्मन ने पुल के पार ऊंचाई वाले स्थानों और बंकरों में मशीन गन तथा ऑटोमेटिक हथियार तैनात कर रखे थे। उनकी अल्फा कंपनी की नंबर 3 प्लाटून पुल के बाएं किनारे से आगे बढ़ रही थी। तभी दुश्मन की ओर से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। दुश्मन ऊंचाई और मजबूत बंकरों में सुरक्षित था, जबकि हमारे सैनिक खुले मैदान में थे। विशेष रूप से दुश्मन की एक मजबूत ब्रेन गन पोस्ट और दूसरी स्नाइपिंग पोजीशन से लगातार फायर हो रहा था और टुकड़ी की प्रगति में बड़ी बाधा बन रही थी। लगातार हो रही गोलाबारी के कारण आगे बढ़ना लगभग असंभव हो गया था। सैनिकों को भारी हताहत होने का खतरा बढ़ता जा रहा था और मिशन विफल हो सकता था।
1: लेफ्टिनेंट रवि प्रताप सिंह, जरा उस निर्णायक क्षण के बारे में कुछ बताइए, उसमें क्या हुआ था?
0: बिल्कुल जयवीर जी, यहीं पर नायक नर बहादुर थापा का असाधारण साहस और नेतृत्व सामने आया। उन्होंने स्थिति का आकलन किया और समझ लिया कि यदि ब्रेन गन पोस्ट को तुरंत निष्क्रिय नहीं किया गया तो मिशन असफल हो सकता है और टुकड़ी भारी नुकसान उठा सकती है। उन्होंने बिना किसी आदेश की प्रतीक्षा किए स्वयं आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यह सच्चे नेतृत्व का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्हें लगभग 100 गज खुले मैदान को पार करना था जहां चारों ओर से गोलियां चल रही थी। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ना शुरू किया। गोलियां उनके आसपास गिर रही थी लेकिन उनका संकल्प अडिग था। जैसे ही वे ब्रेन गन बंकर के निकट पहुंचे उन्होंने अपनी पारंपरिक खुखरी निकाली और अत्यंत साहस के साथ दुश्मन के गन क्रू पर धावा बोल दिया। हाथापाई में उन्होंने मशीन गन क्रू को निष्क्रिय कर दिया। उनकी इस वीरता ने दुश्मन को मुख्य फायरिंग पोजीशन को शांत कर दिया और उनकी प्लाटून को आगे बढ़ने का अवसर मिला और उन्होंने पुल पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। यह कार्रवाई अभियान की सफलता में निर्णायक सिद्ध हुई। यह केवल व्यक्तिगत साहस नहीं था, यह अपने साथियों की रक्षा के लिए किया गया सर्वोच्च त्याग और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण था।
1: तो क्या उनके इस कदम से पूरी स्थिति बदल गई?
0: जी बिल्कुल, ब्रेन गन पोस्ट के शांत होते ही भारतीय सैनिक तेजी से आगे बढ़े और तुंगभद्रा रेलवे पुल पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया। इस कार्रवाई ने मिशन की सफलता सुनिश्चित की और अनेक सैनिकों के प्राण बचाए। उनकी वीरता ने यह सिद्ध कर दिया कि एक दृढ़ निश्चयी सैनिक पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है।
1: वाकई लेफ्टिनेंट रवि प्रताप सिंह, यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह वास्तव में अनुपम वीरता का उदाहरण है। क्या इस घटना के बाद उन्हें तुरंत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया?
0: जी, उस समय भारत में वीरता पुरस्कारों की नई संरचना विकसित की जा रही थी। वर्ष 1952 में भारत सरकार ने शांतिकालीन वीरता के लिए अशोक चक्र की स्थापना की। नायक नर बहादुर थापा को उनके 1948 के अदम्य साहस के लिए भारत का पहला अशोक चक्र प्रदान किया गया। इस प्रकार वे इतिहास में दर्ज हो गए देश के पहले सैनिक जिन्हें शांति काल में वीरता के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत किया गया।
1: लेफ्टिनेंट रवि, गोरखा सैनिकों की वीरता की चर्चा विश्व भर में होती है, क्या इस घटना ने गोरखा रेजिमेंट की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया?
0: निश्चित रूप से जयवीर जी, गोरखा रेजिमेंट पहले से ही अपनी निडरता के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन नायक नर बहादुर थापा की वीरता ने उस परंपरा को और सुदृढ़ किया। उनकी कार्रवाई ने यह सिद्ध कर दिया कि नेतृत्व पद से नहीं साहस से आता है। उन्होंने अपने साथियों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया कि सच्चा सैनिक वही है जो सबसे आगे खड़ा हो।
1: लेफ्टिनेंट रवि, उनके व्यक्तित्व, नेतृत्व और बलिदान से आज के युवाओं को क्या प्रेरणा मिलती है?
0: जयवीर जी, नायक नर बहादुर थापा का जीवन हमें सिखाता है कि कर्तव्य सर्वोपरि है। जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न हो तब व्यक्तिगत भय या स्वार्थ का कोई स्थान नहीं होता। नेतृत्व का अर्थ है संकट की घड़ी में पहल करना और साहस का अर्थ है खतरे को देखकर पीछे न हटना। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महान नायक साधारण परिस्थितियों से ही निकलते हैं। एक छोटे से पहाड़ी गांव में जन्मा बालक जिसने कठिनाइयों को अपना शिक्षक बनाया, आगे चलकर राष्ट्र की रक्षा में अपना अमिट योगदान दे गया। उनसे हमें यह सीख मिलती है
1: जी।
0: पहली, कर्तव्य सर्वोपरि है। दूसरी, सच्चा नेतृत्व जोखिम उठाता है। तीसरी, राष्ट्र के लिए किया गया बलिदान अमर होता है। और चौथी, साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं बल्कि भय पर विजय है। उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
1: वाकई आज के युवाओं के लिए यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अनुशासन, निष्ठा और देश प्रेम ही सच्ची सफलता का आधार है। श्रोताओ, आज हमने सुनी नायक नरबहादुर थापा की वह प्रेरक गाथा जिसने भारतीय इतिहास में साहस का नया अध्याय लिखा। 13 सितंबर 1948 को तुंगभद्रा रेलवे पुल पर दिखाया गया उनका पराक्रम केवल एक सैन्य विजय नहीं था बल्कि वह राष्ट्र की एकता और संकल्प की जीत थी और भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। नेपाल के एक साधारण परिवार से निकलकर भारतीय सेना के इस वीर ने यह सिद्ध कर दिया कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और देश प्रेम से कोई भी व्यक्ति अमर बन सकता है। गोलियों की बौछार के बीच 100 गज खुले मैदान में दौड़ना, खुकरी से ब्रेन गन पोस्ट को शांत करना और साथियों की जान बचाते हुए मिशन को सफल बनाना, यह अदम्य साहस की पराकाष्ठा है। ऐसे वीर सपूतों के कारण ही हमारा तिरंगा आज भी गर्व से लहराता है। तो आज हमारे स्टूडियो में नायक नरबहादुर थापा के बारे में जानकारी देने के लिए मौजूद थे लेफ्टिनेंट रवि प्रताप सिंह। इसी प्रेरणा के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।
2: अभी आप सुन रहे थे आरएनए देहरादून की विशेष प्रस्तुति। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए वार्ता टैगोर के रचनाओं में प्रकृति, प्रेम और आध्यात्म।
3: मानव सभ्यता के आदिकाल से ही विचार, अनुभूति और ज्ञान को सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति रही है। जब कलम और कागज का आविष्कार हुआ तब यह प्रवृत्ति और सशक्त हो गई। पहले जहां ज्ञान मौखिक परंपरा के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था, वहीं लेखन कला ने इसे स्थायित्व प्रदान किया। दुनिया के इतिहास में अनेक महान व्यक्तित्व हुए हैं जिनकी चिंतन शक्ति, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता साधारण मनुष्यों से कहीं ऊंची रही है। इन महापुरुषों ने न केवल अपने समय को प्रभावित किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शन का कार्य किया। विश्व की महान विभूतियों को चुना जाए तो भारत के रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसा नाम है जो भारतीय साहित्य और संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठित करता है। रविन्द्रनाथ ठाकुर न केवल एक महान कवि थे बल्कि वे एक दार्शनिक, संगीतकार, नाटककार और शिक्षाविद भी थे। उनकी प्रतिभा बहुआयामी थी। उनकी रचनाएं जीवन के हर पहलू को छूती हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई सन 1861 को कोलकाता में हुआ था। वे एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से विकसित परिवार में पले बढ़े। बचपन से ही उनमें साहित्य और संगीत के प्रति गहरी रुचि थी। उन्होंने बहुत कम आयु में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उनकी रचनाओं में प्रकृति के प्रति गहरा प्रेम, मानवता के प्रति संवेदनशीलता और आध्यात्मिक गहराई स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम लें, शाम का समय हो, सूरज धीरे धीरे ढल रहा हो और आकाश में सुनहरी आभा फैल चुकी हो, हवा में हिलती हुई पेड़ों की पत्तियां जैसे धीमी भाषा में कुछ कह रही हूं, यह संवेदनशील मन यदि इस दृश्य को देखे तो उसे केवल प्रकृति का सौंदर्य नहीं बल्कि जीवन का कोई गहरा रहस्य भी महसूस होगा। रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसे ही रचनाकार थे जिनके लिए यह सब केवल दृश्य नहीं बल्कि अनुभूति का संसार था। टैगोर की रचनाओं को पढ़ते समय यह स्पष्ट हो जाता है कि वे जीवन के टुकड़ों में नहीं देखते थे जीवन को। उनके लिए प्रकृति, प्रेम और अध्यात्म अलग अलग विषय नहीं बल्कि एक ही सत्य के 3 रूप थे। उनकी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में यह त्रिवेणी निरंतर बहती रहती है और पाठकों के भीतर तक स्पर्श करती है। प्रकृति के प्रति टैगोर जी का प्रेम अत्यंत आत्मीय और गहरा है। वे प्रकृति को केवल बाहरी दुनिया के रूप में नहीं बल्कि एक जीवंत साथी के रूप में देखते हैं। पेड़, नदी, आकाश, वर्षा, ये सभी उनके साहित्य में मानो बोलते हैं, हंसते हैं और कभी कभी मनुष्यों के साथ दुख भी साझा करते हैं। उनकी प्रसिद्ध कृति गीतांजलि में प्रकृति का यह रूप अत्यंत सुंदरता से प्रकट होता है। जहां एक साधारण फूल या एक हल्का सा हवा का झोंका भी मानो यह कहता है कि ईश्वर यही है। टैगोर जी का मानना था कि प्रकृति हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। एक पेड़ बिना शिकायत के खड़ा रहता है, धूप और वर्षा सहता है और फिर छाया भी देता है। एक नदी निरंतर बहती रहती है, चाहे रास्ते में कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए। इन उदाहरणों के माध्यम से वे यह संदेश देते हैं कि जीवन में धैर्य, निरंतरता और निस्वार्थता कितनी आवश्यक है। उनकी अन्य रचनाओं में प्रकृति का यह जीवंत चित्रण देखने को मिलता है। द गार्डनर में प्रकृति प्रेम की भावनाओं का माध्यम बनती है, जबकि गोरा में प्रकृति पात्रों की मानसिक स्थिति को दर्शाने का कार्य करती है। इस प्रकार टैगोर जी की रचनाओं में प्रकृति केवल सजावट नहीं बल्कि भावों की भाषा बन जाती है। प्रकृति से जुड़ते जुड़ते टैगोर प्रेम की ओर ले जाते हैं और यहां उनका दृष्टिकोण और भी गहरा हो जाता है। उनका प्रेम किसी सीमित परिभाषा में बंधा हुआ नहीं है। यह केवल स्त्री पुरुष के आकर्षण तक सीमित नहीं बल्कि एक व्यापक मानवीय और आध्यात्मिक अनुभूति है। उनकी कहानियों में प्रेम का यथार्थवादी चित्रण देखने को मिलता है। चोखर बाली में प्रेम जटिल है, संघर्षपूर्ण है और सामाजिक बंधनों से टकराता है। वहीं काबुलीवाला में प्रेम पिता और पुत्री के स्नेह के रूप में आता है और जो भाषा और देश की सीमा को पार कर जाता है। उनकी कहानियों में प्रेम का यथार्थवादी चित्रण देखने को मिलता है। द होम एंड द वर्ल्ड में प्रेम कर्तव्य और राष्ट्रवाद के बीच का द्वंद्व दिखाई देता है। इन रचनाओं के माध्यम से टैगोर यह स्पष्ट करते हैं कि प्रेम केवल सुखद अनुभूति नहीं अपितु जीवन का एक जटिल और शिक्षाप्रद अनुभव है। टैगोर का प्रेम बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वे मानते थे कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें अधिकार नहीं बल्कि समझ और समर्पण हो। यह प्रेम व्यक्ति को अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठाकर एक व्यापक दृष्टि प्रदान करता है। कई बार उनकी कविताओं में प्रेम एक प्रतीक्षा के रूप में आता है, ऐसी प्रतीक्षा जो आत्मा को शुद्ध करती है और उसे किसी उच्च सत्य की ओर ले जाती है। यहीं से प्रेम धीरे धीरे अध्यात्म में परिवर्तित हो जाता है। टैगोर का अध्यात्म अत्यंत सरल, सहज और व्यापक है। वह किसी विशेष धर्म या परंपरा तक सीमित नहीं है। वे ईश्वर तक पहुंचने के साधनों में प्रकृति, मनुष्य और प्रेम को देखते हैं। उनकी दार्शनिक कृति साधना में यह विचार स्पष्ट रूप से आता है कि मनुष्य और ईश्वर के बीच कोई वास्तविक दूरी नहीं है। यह दूरी केवल हमारे अहंकार और अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। इसी प्रकार द रिलीजन ऑफ मैन में उन्होंने मानवता को ही धर्म का केंद्र बताया है। उनके अनुसार सच्चा धर्म वही है जो मनुष्यों को प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व की भावना सिखाए। गीतांजलि में यह आध्यात्मिकता अपने चरम पर दिखाई देती है, जहां कवि ईश्वर से सीधे संवाद करने का प्रयास करता है। यह संवाद किसी भय या औपचारिकता पर आधारित नहीं बल्कि एक सच्चे और सरल हृदय की अभिव्यक्ति है। टैगोर यह भी स्पष्ट करते हैं कि अध्यात्म का अर्थ संसार से भागना नहीं है। वे जीवन के बीच में रहकर अपने कार्यों और संबंधों के माध्यम से आध्यात्मिकता को जीने की प्रेरणा देते हैं। जब मनुष्य अपनी दैनिक जीवन में प्रेम, ईमानदारी और संवेदनशीलता को अपनाता है, तभी वह सच्चे अध्यात्म का अनुभव कर सकता है। यदि हम उनकी रचनाओं का समग्र रूप से अध्ययन करें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रेम, प्रकृति और अध्यात्म एक दूसरे से गहराई से जुड़े होते हैं। प्रकृति हमें संवेदनशील बनाती है, प्रेम हमें व्यापक बनाता है और अध्यात्म हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। टैगोर इन तीनों को मिलाकर जीवन की एक ऐसी दृष्टि प्रस्तुत करते हैं जिसमें संतुलन, शांति और सत्य का समन्वय है। आज के आधुनिक समय में जब मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, संबंधों में स्वार्थ बढ़ता जा रहा है और अध्यात्म केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है, तब टैगोर की रचनाओं से हमें नई दिशा प्राप्त होती है। वे हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल भागदौड़ का नाम नहीं बल्कि अनुभव का नाम है। वे हमें सिखाते हैं कि यदि हम थोड़ा ठहरें और प्रकृति को महसूस करें, सच्चे मन से प्रेम पूर्वक अपने अंदर के इंसान का अवलोकन करें, तो हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं को पढ़ना केवल साहित्य का अध्ययन करना नहीं है, यह एक ऐसे संसार में प्रवेश करना है जहां हर वस्तु जीवंत प्रतीत होती है। उनकी दृष्टि में जीवन केवल दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह गहराई से महसूस करना है जिसमें प्रकृति, प्रेम, अध्यात्म सब आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि जब सुबह होती है उसके दृश्यों को देखिए, आकाश देखिए, नदी, पंछियों की आवाजें सुनिए, ठंडी ताजी हवाओं की सरसराहट को महसूस कीजिए, जब पहली किरण धरती को स्पर्श करती है और पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को भर देता है, तब यह केवल एक नई शुरुआत नहीं होती बल्कि यह नई चेतना का प्रतीक होती है। टैगोर इन क्षणों को विशेष महत्व देते हैं क्योंकि वे इसे दिल से महसूस करते हैं। उनकी कृतियों में यह भाव स्पष्ट दिखाई देता है। एक साधारण फूल भी एक संदेश देता है, एक हवा का झोंका आनंद का आभास कराता है। प्रकृति एक सौंदर्य ही नहीं बल्कि हमारा शिक्षक भी है। आकाश बहुत विशाल है, वो हमें व्यापक सोच की ओर प्रेरणा देता है। आज का अधिकतर मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है, वह मशीनों और तकनीक में उलझ गया है। ऐसे समय में टैगोर अपनी रचनाओं के माध्यम से हमें वापस बुलाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि शांति प्रकृति में भी है और अपने भीतर भी है। हमारा काम है कि हम प्रकृति से जुड़ें और उसको महसूस करें। प्रकृति से यह जुड़ाव धीरे धीरे प्रेम में बदलता है। प्रेम भी सीमित नहीं है, यह केवल दो या कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं रखा जा सकता। यदि हम किसी की मदद करते हैं तो यह भी प्रेम बढ़ाता है, यह भी अध्यात्म है। जब हम किसी के दुख को समझते हैं तो यह भी अध्यात्म है और एक दूसरे के प्रति लगाव उत्पन्न करती है। प्रकृति आकर्षित करती है, प्रेम हमें जोड़ता है और अध्यात्म उसे पूर्णता देता है। अब अगर संध्या के समय का दृश्य देखें तो हम पाते हैं कि ढलता हुआ सूरज और उसकी सुनहरी आभा से भरा आकाश, पेड़ों की पत्तियों हवा में धीरे धीरे हिलती हैं, तो यह केवल सामान्य दृश्य नहीं रह जाता। टैगोर के लिए यह गहरा अनुभव बन जाता है जिसमें जीवन के रहस्य छुपे होते हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे शोएब सामी की वार्ता। विषय था टैगोर की रचनाओं में प्रकृति, प्रेम और आध्यात्म। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:13 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत चंदन दास की गाई गजल।

कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई गजल। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आप सुनिए फिल्म संगीत।

महल फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। संगीत निर्देशन था कल्याण जी आनंद जी का और गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। अगला गीत अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मेरा साया। संगीत निर्देशन है मदन मोहन का और गीत के बोल लिखे हैं रजा मेहंदी अली खान ने।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मौसम से। संगीतकार हैं मदन मोहन और गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में अंतिम गीत अब आपको सुनवा रहे हैं गीता दत्त की आवाज में। फिल्म का नाम मिस्टर एंड मिसेस। संगीत निर्देशन है ओपी नैयर का और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

0: इसी अंतिम गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
2: India's development assistance.
3: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
1: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
4: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान

0: महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद को मंजूरी दी गई है, जो भारतीय सेना को दुश्मन के ड्रोन से प्रभावी सुरक्षा देगी। इसके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। वहीं भारतीय नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के लिए भूमि आधारित परीक्षण केंद्र शामिल है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह तथा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
2: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
3: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया

ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे तुम अभी तक जाग रही हो, क्या सोच रही हो ममता?
1: कुछ नहीं।
0: तो सो जाना।
1: नहीं अरे दिनेश, तुम्हें अगर ठंड न लग रही हो तो पंखा खोल दो। मेरी जिंदगी भी क्या है, बस इस छत पर लटके पंखे की तरह जिसमें तीन प्लेट लगे हैं, तीन प्लेट अलग अलग अपनी जगह पर स्थिर, समान दूरी बनाए हुए तीन प्लेट। मैं, दिनेश और नरेश कितने सालों से
0: ममता, रोज शाम में तुम्हारा ऐसे इंतजार करते करते अब थक गया।
1: तो एक काम करो।
0: क्या?
1: कल से किसी और जगह इंतजार किया करो।
0: तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। देखो ममता, आई एम सीरियस।
1: तो
0: मैं चाहता हूँ अब हम शादी कर लें।
1: तो कर लो ना।
0: फिर वही बात।
1: दिनेश, तुम बार बार भूल जाते हो, अभी मेरी उम्र 18 साल नहीं हुई, तुम्हें 3 महीने और रुकना पड़ेगा।
0: 3 महीने? खैर 3 साल से तुम इंतजार कर ही रहा हूँ, 3 महीने और से। पर सुनो ममता, कल से मैं तुम्हें इस चर्च कंपाउंड में न मिलकर कंपनी भाग में मिला करूंगा।
1: क्यों?
0: चर्च का ये सूना वातावरण मुझे पसंद नहीं।
1: दिनेश, चर्च मंदिर या मस्जिद का वातावरण कभी सूना नहीं होता, ये तो अपनी अपनी नजर अपना अपना ख्याल है। ऐसे जितनी शांति तुम्हें इस वातावरण में मिलेगी उतनी शायद ही कहीं और मिले। और दिनेश, तुम्हें
0: प्लीज ममता, उपदेश नहीं, प्लीज।
1: अरे पंखा क्यों बंद हो गया? शायद लाइट चली गई। दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा है। और उस दिन चकाचौंध कर देने वाली रोशनी थी। आज से 10 साल पहले जब मेरी शादी दिनेश से हुई, कितनी खुश थी मैं। और आज इतनी ही उदास। पति और 3 बच्चों के होते हुए भी उदास। आज जैसे सब कुछ थम गया है, मेरी जिंदगी भी थम गई है।

0: सो नहीं पाओगे।
1: दिनेश प्लीज तुम सो जाओ, तंग मत करो। कितनी गर्मी है, कम वक्त बिजली को भी इसी वक्त जाना था।
2: अच्छा भाई, प्लीज योर सेल्फ। ओके, गुड नाइट।
1: दिनेश ठीक कहता है, मैं इसके बाहों के सहारे के बगैर कभी ना सो पाई। वो तीन साल जब दिनेश बाहर रहा, मैं एक रात भी ठीक से सो न सकी। मेरे मन के अलावा मेरा तन भी उसकी बाहों के लिए तड़पता रहा, और उसका बाहर जाना मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ बन गया। मुझे वो अकेला छोड़कर जाते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं लग रहा?
0: अरे अकेला कहाँ, अपनी नन्नी बिटिया मिन्नी को जो तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ।
1: शरारती कहेंगे। तुम्हें अभी से क्या पता?
0: क्यों,
1: हो सकता है मिन्नी ना होकर
0: ना, हो? ना ना, मुझे पता है मिन्नी ही होगी, तुम्हें लड़कियाँ पसंद है ना।
1: दिनेश मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं अकेले नहीं रह पाऊंगी।
0: मुझे पता है ममता, तुम अकेली नहीं रह पाओगी, पर मजबूरी है डार्लिंग, क्या किया जाए।
3: हेलो दिनेश, अबे साले तू यहाँ?
0: कौन नरेश?
4: आई एम सॉरी यार, मैंने देखा नहीं था।
0: अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे व्हाट अ सरप्राइज यार, ए कितने दिन के बाद मिला है। अरे मेरी एक अदद बीबी, धर्मपत्नी यानी कि वाइफ ममता, और ममता ये मेरा बहुत पुराना दोस्त नरेश।
1: नमस्कार।
0: अब बता तू यहाँ क्या कर रहा है?
4: अरे यार मैं तो एक अरसे से यहाँ हूँ, पर तू?
0: अब मैं भी नहीं था, लेकिन आज ट्रांसफर पर जा रहा हूँ, वैसे आता जाता रहूंगा। सुनो, ममता से मेरे घर का पता ले लेना, और देख आते जाते रहना। हाँ ममता, यू विल फाइंड हिम एन एक्सीलेंट कंपनी। अच्छा यार, बाय बाय। मैं जा रहा हूँ।
5: और तो इतनी दूर खड़ी है ममता?
1: दिनेश।
5: ओके माय लव, गुड लक, अपना ख्याल रखना।
0: ओके बाय बाय।
4: आइए चले, आपकी इस तरह निहारते रहने से ट्रेन रुक तो नहीं जाएगी, बहुत दूर निकल गई है।
1: जी हाँ, चलिए। आप कैसे आए थे स्टेशन?
4: अच्छी मैं
1: जी
4: बस यूं ही आ गया था। चलिए मैं आपको घर छोड़ दूँ, इसी बहाने घर भी देख लूंगा।
1: नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट कर रहे हैं?
4: अच्छी इसमें कष्ट की क्या बात है, आइए चले।
1: अच्छा आइए चले।
6: बात ये है,
1: और धीरे धीरे नरेश मानसिक रूप से मेरे बहुत करीब आने लगा। हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, सिर्फ दोस्ती। मैंने हमेशा उसे अपने दुख में बांट लिया, और उसने भी एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा मेरा साथ दिया। वक्त वक्त न थकने वाली रफ्तार से बढ़ता रहा। दिनेश जब भी छुट्टियों में कराता, हम तीनों के प्रोग्राम साथ ही बनते।
4: अरे तुमने गाड़ी क्यों रोक दी?
0: यार मैं तो थक गया हूं तुम्हारे इस प्रोग्राम के मारे, तुम तो आराम से पीछे लेते हो, और हम हैं कि तुम्हारी कार के ड्राइवर बने हुए।
4: बीवी के साथ बैठे हो ना, कौन सा अकेले बैठे हो। चलो चलो चलाओ गाड़ी।
0: सुन यार, तू एक काम कर, मैं पीछे लेता हूँ और तू गाड़ी चला। पर वैसे भी ये सारे प्रोग्राम तो ममता और तूने मिलकर बनाए। मैं सोच कर आता हूँ कि घर पर चलकर आराम करूंगा, और जनाब यहाँ आने पर होता कुछ और।
1: मेरी खातिर प्लीज, मैं कौन सी रोज रोज घर से बाहर निकलती हूँ, मुझे तुम आते हो तभी तो।
0: वॉट? अरे यार नरेश, मेरी एब्सेंस में कभी कभी ममता को बाहर क्यों नहीं ले जाता? अरे क्या मेरी बीवी से डर लगता है?
4: दिनेश ये अपनी बीवी से पूछो, वो बगैर तुम्हारे बाहर जाना ही नहीं चाहती।
0: व्हाट नॉनसेंस।

0: 여기 이마야. 민희.
1: जीतू ने क्या किया? मैं कहता हूँ दिनेश पिस्तौल मुझे दो। तुम यह समझो?
0: नहीं
1: नहीं। तेरे सोचने का वक्त नहीं है दिनेश। दिनेश मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। तुम्हें अपने बीवी बच्चों को देखभाल करनी है।
0: नहीं नहीं। मेरे खातिर तुम क्यों अपनी जान जोखिम में डाल लिया? गलती मेरी है नरेश। ममता ने ऐसे पहले मुझसे कहा था, पर मैं इस कैलाश को इतना नीच और कमी ना नहीं समझता।
1: ओ देखो दिनेश, बहस का वक्त नहीं है। तुम इसे भाग जाओ, जल्दी करो।
0: हरगिज नहीं।
1: प्लीज दिनेश, प्लीज।
0: नहीं, मैं कहता हूँ नहीं नरेश, खून मैंने किया है।
1: दिनेश, तुम्हें अपने बच्चों की कसम।
0: ओ नरेश,
1: प्लीज भाग जाओ, भाग जाओ दिनेश।
2: नरेश, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो?
1: ममता, कैलाश ने तुम्हारी इज्जत लेने की कोशिश की और तुम।
2: ठीक है, ठीक है, पर खून तो मेरे पति ने किया है, फिर तुम क्यों?
1: ममता, क्या मैं तुम्हारा कोई भी हूं?
2: क्यों नहीं, फ्रेंडशिप,
1: सिर्फ फ्रेंडशिप? नहीं नहीं नहीं ममता, नहीं, ऐसा न कहो। मन से न सही, मन से तो मैं तुम्हें अपनी ही मानता हूं। ममता, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकता। दिनेश से इस समाज से नहीं तोड़ा सकता।
2: नरेश, नरेश, मैं नरेश।
1: ममता, तुम कह नहीं पाओगे, आज भी कुछ नहीं कह पाओगे। खैर, दिस इज माय लक।

0: ती कही हो ममता तुम नरेश को, कोई कहेगा कल सुबह से फांसी लगने वाली है।
1: दोस्त, सिर्फ दो घड़ी के लिए मुझसे आखिरी बार मिलने आए हो और फिर वही बातें शुरू कर दी। अरे यार, मुझे मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम दोनों को साथ साथ देखकर। बच्चों को भी ले आते तो उन्हें भी आखिरी बार देख लेता।
0: बात यह है नरेश, बच्चों के सब पता नहीं, और फिर जेल का वातावरण।
1: हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि मैं जेल में हूं।
0: अरे ममता, तुम चुप क्यों हो? कुछ कहोगी नहीं नरेश से?
1: दिनेश, औरत अपनी खामोशी में ही बहुत कुछ कह डालती है, क्यों ममता?
2: मगर आज एक बात पूछ रही हूं और उम्मीद करती हूँ इसका जवाब मुझे ठीक ठीक मिलेगा।
1: तुम हमेशा एक ही बात पूछती हो, दो नहीं, और मैं हमेशा।
2: तुम फिर मजाक में टालना चाहते हो?
1: खैर, पूछो। वादा रहा जवाब, ठीक ठीक दूंगा।
2: चुमका इल्जाम अपने ऊपर क्यों लिया? बोलो बोलो, हो गए?
1: मैं इसका जवाब दे चुका हूँ।
2: वो झूठ है नरेश, झूठ है।
1: फिर सच क्या है?
2: वही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताओ नरेश, बताओ ना।
1: ममता, सच के भीतर छुपी सच्चाई शायद सुनना पसंद न करो।
2: जो कुछ भी हो, आज ये खामोशी तोड़नी ही पड़ेगी।
1: तुम सुनना ही चाहती हो?
2: ओ नरेश
1: जी, कैंसर।
2: नहीं, नहीं।
1: डॉक्टर नाथुर ने साफ साफ कह दिया है कि मैं 6 और 8 महीने से ज्यादा जी न सकूंगा। आधा वक्त तो गुजर ही गया है, और फिर अगर तुम्हारे, मेरा मतलब है अपनों के लिए, अगर कुछ वक्त के पहले ही
3: टाइम ओवर प्लीज।
1: वक्त हो गया। अरे अरे, ये क्या? मैं तुम दोनों के उतरे हुए चेहरे नहीं देखना चाहता। अरे जालिमो, आखिरी बार तो मुस्करा दो। क्यों दिनेश, ममता ऊपर तो देखो। अरे अरे, मुंह मोड़ कर जाना ही है तो ऐसे नहीं, मुस्कराते हुए जाओ। बच्चों को प्यार करना अच्छा। भगवान तुम दोनों को खुश रखे, लंबी उम्र दे।
2: नरेश,

0: ममता, क्या वक्त हो रहा है?
1: सात बजकर 20 मिनट।
0: जेलर का फोन होगा। नरेश का 7 बजे का वक्त है ना?
1: सॉरी, मुझसे ना होगा, तुम फोन अटेंड करो।
2: हेलो, क्या बोल रहा हूँ? जी जी, मैं क्या कहूँ, वो तो आपका फर्ज था। बॉडी आप तस्वीर दे देंगे ना? शुक्रिया।
1: हेलो जी, हाँ, मैं मिसेस गुप्ता बोल रही हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर माथुर जी। क्या कहा आपने? रिपोर्ट में फिर बदल हो गई थी, नरेश को कैंसर नहीं है।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक बर्फ में उठी आग। लेखक थे नारायण गबलानी, प्रस्तुतकर्ता थे सुशील बनर्जी, कलाकार थे संतराम, प्रीति गुप्ता, अनिल रस्तोगी और चंद्र प्रभा भटनागर।
1: सुनो ना।
2: हाँ,
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।
1: ओ, 8700001424242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424242 पर।

0: सुना है रात उसे चांद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अहमद फराज साहब की इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं पुष्पा पुंडीर आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्रोग्राम हेलो फरमाइश में। जी हाँ, आज भी बातों का सिलसिला चलेगा, मुस्कुराहटें होंगी, कुछ मन की कहेंगे, कुछ दिल की सुनेंगे और आपकी फरमाइश पर आपके पसंदीदा गीत भी होंगे। और एक बात जानते हैं, जितनी बेसब्री से आप हमारा इंतजार करते हैं ना, आपसे बात करने को हम भी उतने ही बेकरार रहते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम आपसे जुड़ने का एक प्यारा सा जरिया ही तो है। तो फिर देर कैसी, वक्त की नजाकत को देखते हुए लेते हैं आज के कार्यक्रम की पहली कॉल और जानते हैं कि कौन है हमारे पहले कॉलर, कहां से बोल रहे हैं और किस गीत की फरमाइश लेकर आए हैं हमारे पास। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन है?
1: उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार जी है जी।
0: गुलजार जी उत्तर प्रदेश से बात कर रहे हैं, शामली से?
1: हाँ जी।
0: कैसे हैं आप?
1: जी दीदी जी, मैं बहुत अच्छा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी। आप कैसी हैं दीदी जी? और आप?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की दुआएं हैं, हमारे श्रोताओं की दुआएं हैं। अच्छा तो
1: जी आज तो बहुत दिनों बाद आई है हेलो फरमाइश कार्यक्रम में।
0: जी जी बहुत टाइम बाद, बहुत समय बाद। तो मेरी आपसे पहले भी बात हो चुकी है क्या गुलजार जी?
1: हाँ पहले तेरी बात हुई थी।
0: हुई थी बात?
1: हाँ जी।
0: अच्छा ये बताइए कि करते क्या हैं आप?
1: दीदी जी उर्दू की पढ़ाई करता हूँ जी।
0: अच्छा उर्दू की पढ़ाई करते हैं?
1: हाँ जी।
0: कब से करते हैं पढ़ाई?
1: साल 2005 से।
0: अच्छा, और पढ़ाई के साथ साथ क्या हमारा रेडियो स्टेशन जो है, हमारा आकाशवाणी देहरादून, वो भी सुनते हैं?
1: हाँ जी, आकाशवाणी देहरादून 100.5 में सुनता हूँ जो कार्यक्रम आते हैं। पर विचार आपके गीत हमारे और हेलो फरमाइश कार्यक्रम आता है, हेलो लोक मंदिर कार्यक्रम आता है
0: जी जी,
1: और
0: जी।
1: हेलो रेडियो सिटी कार्यक्रम आता है और वो जो संडे के दिन युवाणी कार्यक्रम में फोन इन कार्यक्रम आता है हेलो फ्रेंड्स, वो भी सुनता हूँ, वो भी इसी पर ही आता है।
0: अच्छा तो पढ़ाई के साथ में कैसे मैनेज करते हैं आप, हमारे प्रोग्राम्स भी सुनना और पढ़ाई भी करना कैसे हो पाता है?
1: सुबह नमाज के लिए उठ जाता हूँ, नमाज पढ़ने के बाद अपना सबक याद करता हूँ उसी के 1 घंटा, फिर उसके बाद रेडियो का कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: क्या बात है। अच्छा गुलजार जी कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं आप?
1: दीदी जी पहले तो ये बताओ आपके यहाँ मौसम कैसा हो रहा है?
0: मौसम ठीक है, कभी बारिश कभी धूप अभी तो बरसात है तो मौसम बारिश वाला ही है। और आपके यहाँ कैसा मौसम है ये भी तो बताइए।
1: हमारे यहाँ भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हुई, कल बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थोड़ी सी, इससे ठंड हो रही है, गर्मी से राहत मिल रही है और कभी धूप निकल जाती है कभी भाग जाती है, आज का मौसम यही हो रहा है
0: जी। तो उमस होती होगी काफी ना बारिश के बाद धूप?
1: हाँ जी बारिश के साथ धूप।
0: अच्छा गीत बताइए कौन सा सुनना चाहते हैं?
1: दे दीजिए फिल्म का नाम तो रहेगा अमानुष।
0: अमानुष फिल्म से? अमानुष फिल्म से कौन सा गीत?
1: दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा।
0: अरे किसी ने तोड़ा है आपका दिल क्यों पसंद है आपको ये गीत बताइए?
1: अजी ये गीत मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, मैं सभी मित्रों को सुनाना चाहता हूँ ये गीत। और इस गीत में खास इसकी वजह ये है कि ये किशोर कुमार ने गाया है ये गीत, इस फिल्म में लड़ा

0: बहुत ज्यादा है। हाँ,
1: अच्छा, तो लड़ाई पसंद है आपको
0: लड़ाई भी पसंद है, कॉमेडी पसंद है मुझे।
1: जी। अच्छा, और किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं ये गीत, या अपने मित्रों का, साथियों का, दोस्तों का नाम लेना चाहते हैं?
0: हाँ जी, दोस्तों का भी नाम लेना चाहता हूँ जी। इसमें मेरे मित्र है, महराज मलिक है, सहताज मलिक है, सामने मलिक है, सब अब्बासी है, रामपुर से है, नरगिस है, मुजफ्फरनगर से है, खातून, और ये साकिराबादी है, समाजाबादी है, और ये और भी मेरे मित्र है, महबूब दुकानदार है, मकसूद हुसैन है, और ये मेरे मित्र है, और इसके साथ साथ जो है हिना कोसर है, वकार फरीदी है, यही मेरे मित्र है जी।
1: तो
0: और आप हो हमारे साथ,
1: जी,
0: और
1: मैं
0: आकाशवाणी गुरुक्षेत्र और आकाशवाणी देहरादून की पूरी टीम हमारे साथ है।
1: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा गुलजार जी, आपकी पसंद का गीत आपके सभी मित्रों के लिए, आपके लिए ये रहा।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: जी। नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं जीशान वारसी बात कर रहा हूँ, ग्राम सिंधौली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली, यूपी से।
0: विशान वारसी जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताएं, आकाशवाणी देहरादून में सभी लोग कैसे हैं?
0: जी सब बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, आप सभी की दुआएं हैं। अच्छा ये बताइए कि क्या करते हैं आप?
1: मैं टेलरिंग का काम करता हूँ और बाकी आपके आकाशवाणी केंद्र से कनेक्ट रहता हूँ, आपके दिन भर प्रोग्राम सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा, कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं हमारे?
1: देखिए, मैं फरमाइशी प्रोग्राम ज्यादा शौक से सुनता हूँ, आपका व्हाट्सएप फरमाइश हो गया, रात वाला जो आपकी फरमाइश है, हेलो फरमाइश है,
0: जी,
1: और नमस्कार देहरादून जो आता है उसको भी सुनता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है। अच्छा कैसे सुनते हैं, अपने रेडियो सेट पर या फिर फोन पर?
1: मैं एप्लीकेशन के माध्यम से मोबाइल पर ही सुनता हूँ।
0: अच्छा, जिशान जी आपका कोई एक रेडियो श्रोता संघ भी है अगर
1: जी
0: मैं गलत नहीं हूं तो?
1: जी जी बिल्कुल,
0: कौन सा है?
1: मेरा वारसी ग्रुप के नाम से मेरा एक रेडियो श्रोता संघ है, उसमें हम 4 मेंबर थे और हम लोगों ने काफी रेडियो स्टेशनों पर जाकर वहाँ भ्रमण किया है और वहाँ के अनाउंसरों को सम्मानित भी किया है।
0: जी, आप देहरादून भी आए थे, मुलाकात हुई थी आपसे।
1: जी,
0: जी अच्छा, अभी कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: अभी मुझे गीत सुनना है, मूवी का नाम है दोस्ताना
0: दोस्ताना।
1: जी, और गीत के बोले हैं, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, और ये सॉन्ग सुनना चाहेंगे मेरे साथ करूला मुरादाबाद से अय्यूब खान और आकाशवाणी देहरादून को सुनने वाले सभी लोग।
0: अच्छा ये बताइए कि गीत पसंद क्यों है आपको, क्यों फरमाइश की आपने इस गीत की?
1: देखिए, इसकी फरमाइश करने की वजह सिर्फ ये है क्योंकि अय्यूब भाई जो है मेरे रेडियो गुरु हैं और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं,
0: क्या बात है।
1: तो मैंने सोचा क्यों ना कि आज के इस प्रोग्राम में दोस्ताना मूवी का गीत हो जाए एक दोस्ती के ऊपर, तो इसलिए मैंने ये गीत सुना।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा और भी कोई रेडियो स्टेशन सुनते हैं आप देहरादून के अलावा आकाशवाणी के?
1: जी, मैं बहुत सारे रेडियो स्टेशन सुनता हूँ, आकाशवाणी बरेली है, रामपुर, नजीबाबाद, आपका देहरादून हो गया, गोरखपुर हो गया, आकाशवाणी आगरा, दिल्ली,
0: जी।
1: इंद्रप्रस्थ और FM रेनबो दिल्ली, सभी बहुत सारे केंद्र सुनता हूँ।
0: अच्छा और आपने बताया कि आप टेलरिंग का काम करते हैं, तो क्या आप लेडीज सिलते हैं कपड़े या फिर जेंट्स के?
1: मैं वैसे काम तो सारा कर लेता हूँ, जेंट्स लेडीज दोनों, लेकिन मैं फिलहाल लेडीज ही काम कर रहा हूँ।
0: अच्छा
1: मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी देहरादून को सभी लोग सुने और यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं बहुत ज्ञानवर्धक होते हैं, क्योंकि
0: जी
1: हम मनोरंजन तो करते ही हैं, उसके साथ साथ कुछ हासिल करें, कुछ सीखें, तो
0: जी बिल्कुल।
1: ये बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए।
0: जिशान जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद है आप आगे भी हमसे यूं जुड़े रहेंगे, हमारे प्रोग्राम सुनेंगे और आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए।
1: आपका भी।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। हेलो फरमाइश जी, हम भैया हमारे यार दोस्त बैठे हैं यहाँ पे। मैं
0: जी, कौन बात कर रहे हैं ये तो बताइए।
1: तस्वीर अली बात कर रहा हूँ जी।
0: तस्वीर अली जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं बात कर रहा हूँ, ये पड़ता जिला रामपुर, स्वार तहसील, गांव बमना।
0: गांव बमना से, रामपुर से।
1: जी।
0: अच्छा तस्वीर जी, क्या करते हैं आप?
1: हम ये सलून का काम करते हैं, बाल कटिंग का।
0: बाल कटिंग का काम करते हैं?
1: जी, हमारा जो है पार्लर है ना, ये बाल कटिंग का जलवा नाम से मशहूर है।
0: अच्छा, जलवा नाम से मशहूर है आपका जलवा है।
1: जी।
0: और कटिंग करते करते, अपना काम करते करते आप प्रोग्राम भी हमारे सुनते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रोग्राम सुनते हैं रात को, पूरा सुन के प्रोग्राम जब सोते हैं।
0: तब सोते हैं?
1: हाँ जी,
0: अच्छा, और
1: हाँ।
0: कौन कौन से प्रोग्राम्स हमारे सुनते हैं ये भी तो बताइए।
1: प्रोग्राम तो मैं ज्यादातर आपका एक ही सुनता हूँ, यही था हेलो फरमाइश वाला।
0: हेलो फरमाइश। अच्छा, और भी केंद्रों के
1: जी
0: प्रोग्राम सुनते हैं क्या?
1: जी जी और कोई नहीं, इसमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। सुबह
0: ओहो,
1: ही आ जाते हैं दुकान पे, और एक यहाँ से 9-10 बजे दुकान पे जाते हैं।
0: चलिए, आप अपना इतना बिजी शेड्यूल में हमारे लिए भी टाइम निकालते हैं, हमारे प्रोग्राम सुनते हैं, हमें कॉल भी
1: जी
0: करते
1: जी
0: हैं।
1: जी ये हमारे यार दोस्त बैठे हैं हमारे यहाँ पे, ये हमारे दीवान जी बैठे हैं, खाने मिला खाना भी बाल कटा रहे हैं, ये हमारे भाई बहन है फैजान भाई है, और ये हमारे क्या नाम है सुमित भाई हैं, और हमारे यहाँ प्रतिम भाई हैं, फुरकान अली, और ये हमारे सब हमारे भाई हमारे शमशेर अली, ये हम सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, काम करते हैं में भीड़ लगी है।
0: अच्छा, ये भी तो बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: हम गीत सुने हैं बरेली की बाजार में झुमका गिरा रे।
0: झुमका गिरा रे,
1: जी,
0: क्यों पसंद है आपको ये गाना?
1: ये पसंद ये है कि बचपन में भी ये मेरे सामने पहले रिकॉर्ड वाले चलते थे ना गाने, तो हमारे गांव में बाजार लगती थी, तो हम उस जगह जाके खड़े हो जाते थे, हमें बड़ा पसंद आता था ये गाना। 40 साल पुरानी बात बता,
0: 40 साल पुरानी बात।
1: 40-35 साल हो गए। फिल्मों
0: अच्छा, फिल्मों का भी शौक रखते हैं क्या? फिल्में देखते हैं?
1: का बहुत शौक रखता हूँ, मेरे यहाँ पे एलसीडी भी दिन में 1-2 फिल्म देखता ही हूँ रोज ही ना। ये हमारे पड़ोस में है सिपाही लाल उस्ताद है, सैकड़ों का काम करते हैं, ये हमारी पड़ोस में शकील उस्ताद है, ये जो है लोहार है, ये दराती है, साकल और खुरपे बनाते हैं, फावड़े बनाते हैं, ये भी सुनते हैं, ये सब हम मिलके सुनते हैं। हम
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
1: हमारी वालदा है वो घर में रहती है, 5 टाइम की नमाज पढ़ती है, और आप दुआ कर दीजिए, अब क्या सोच रहा हूँ मैं उनको हज को भेजने की।
0: जी बिल्कुल, अच्छे से भेजिए, बहुत अच्छे से जाएंगी, हमारी दुआएं
1: बेशक
0: हैं।
1: बेशक,
0: जी जी जी
1: सुभान
0: और आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं, कॉल करने के लिए आपका शुक्रिया।
1: अल्लाह, शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: जी मैम नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। रवि कुमार बोला जी, गाँव महेशपुर से, सहारनपुर जिले से मैम।
0: सहारनपुर, महेशपुर से?
1: हाँ जी, महेशपुर गांव पड़ता है जी, सहारनपुर जिले में मैम।
0: जी अच्छा, रवि जी कैसे हैं आप?
1: जी मैम बढ़िया, आप सुनाओ जी मैम।
0: बस हम भी बढ़िया, दुआएं हैं आप सबकी।
1: जी
0: और
1: आपकी दुआ भी, बस जी आपकी दुआ भी आज, भगवान जी की दुआ जी, माता रानी की
0: बिल्कुल
1: कृपा बनी रहा जी
0: बिल्कुल
1: सबके सिर पर जी।
0: बिल्कुल कृपा है। अच्छा
1: जी
0: ये बताइए कि क्या करते हैं?
1: जी मैम, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ जी मैम।
0: मेहनत मजदूरी करते हैं
1: जी
0: और साथ में हमारे प्रोग्राम सुनते हैं।
1: जी बस आपके पढ़े इस आपके प्रोग्राम जी मैम, इतने बच्चे अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जी मैम।
0: अच्छा कौन से प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं?
1: बस जी सारे बड़े लगते हैं जी मुझे तो, जोन से भी आते हैं, इस चैनल पे आते हैं ना आपके देहरादून वाले पर जी, सब बड़े लगते हैं जी मुझे,
0: सब बढ़िया लगते हैं।
1: क्योंकि ऐसी सी जानकारी मिलती है मैम, इसलिए तो दिमाग भी बढ़िया करता है जी, कंप्यूटर भी फैला सकता है जी, चैनल जब से चला दी हूँ
0: अच्छा ये बताइए
1: जी।
0: घर परिवार में कौन कौन है आपके?
1: जी बस बस घर पर।

0: मारे को मेरी मां ने जी माँ बाप गुजर गए थे जी।
1: ओहो
0: जी बस माता रानी की कृपा से यही दुआ करा जी, चैनल को किसी की नजर न लगा जी, बिल्कुल भी
1: आकाशवाणी देहरादून को।
0: हाँ जी, इसको किसी की नजर न लगा, इस पे इतने बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम चलते जी, मैम इसलिए बहुत अच्छा जानकारी दे, हर बार में जानकारी मिलती है मैम।
1: क्या बात कही आपने
0: जी, बस भगवान से दुआ करा जी, परसों जो आधा घंटा भजन चलाए ना मैम, 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक बहुत अच्छा लगा जी मैम।
1: अच्छा
0: मैम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक 11 बजे तक सुनता हूँ मैम, इसको चैनल को, इसी चैनल को सुनता हूँ और कौन सा चैनल नहीं सुनता जी मैम।
1: अरे वाह, बहुत मेहरबानी आपकी।
0: तो कि मैम मैं 2-3 साल से हार्ट पे पड़ा ना, रेडी कहती मैं छोड़ने लगी थी, तो मैं चैनल को सुनता हूँ, सही बात।
1: ओहो अभी ठीक है आप?
0: देखो मैम, देखो इस चैनल ने बहुत अच्छा करा जी, जब से चैनल चला मैम भगवान से, बीच में आलो परवेज बंद हो गया था जी मैम, ये
1: बिल्कुल हाँ हुआ था कुछ टाइम के लिए,
0: बीच में बंद हो गया था, फिर दोबारा चल होगा उसकी मैच की वजह से नहीं बीच में चल पाया कुछ दिन
1: जी,
0: फिर बस बजे दुआ जी मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपने हमारी कॉल उठाई, हम माता रानी से फिर दोबारा एक हाथ जोड़ के विनती करेंगे आपके करीब परिवार में सबकी कृपा बनी रहा जी, माता रानी की कृपा।
1: अच्छा अभी ठीक है आप, स्वास्थ्य ठीक है आपका?
0: हाँ जी, बस अब तो थोड़ा सा फिर लेता हूँ जी मैम, आपकी दुआ था जी, आपका आशीर्वाद से, माता रानी की कृपा से फिर लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो अब तो महीने 2 महीने से।
1: अच्छा गीत कौन सा सुनना चाहते हैं, फरमाइश क्या है
0: मैम
1: आपकी?
0: एक बात बताऊँ जी, ये चैनल ना होता ना आपका तो मैं चल पाऊँ था नहीं बिल्कुल भी, इस चैनल ने मेरे को खड़ा करा जी मैम।
1: आहो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप।
0: नहीं मैम बड़ी नहीं, देखो बताऊँ बात क्या है, ऐसी जानकारी मिलती है और ऐसे ऐसे गाने भजन भी बजते हैं ना आपके चैनल पर, तो इसने भी बहुत अच्छा कर रखा जी मैम।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: और आप जैसे जो श्रोता हमारे साथ हैं तो फिर प्रोग्राम तो अच्छे होने ही हैं
0: जी, बस बधाई मैम आप, मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, एक अपना पंकज भी मैम बहुत दिन पहले बात हुई जी, कलम पंकज मैम उन्हें भी नमस्कार कहना जी मेरा जी, और
1: जी
0: आपको तो
1: बिल्कुल
0: मैम देखो आज जोड़ के आपसे निमंत्रित, आपको तो नमस्कार आज आपने मेरी कॉल अटेंड करी मैम।
1: जी जी जी अच्छा
0: जी
1: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहते हैं
0: जी खिलाड़ियों खिलाड़ियों का गाना जी, माँ शेरा वाली तेरा बेटा आ गया जी,
1: अच्छा ये गीत आप सुनना चाहते हैं?
0: माता से माँ माँ के चरणों में रहोगे सब कुछ मिलेगा जी, माता रानी के चरणों में जी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी माई माँ है और माई बहन है, सब कुछ बात ही है जी, सब कुछ
1: जी बिल्कुल सही
0: जी।
1: बात कही आपने।
0: हाँ जी जी
1: अच्छा
0: हाँ मैम
1: किसी का
0: बिल्कुल
1: नाम
0: जी,
1: लेना चाहेंगे?
0: बस जी बस नाम सबके लिए है जी, सबकी खुशी में खुशी मैम।
1: रवि कुमार जी आपकी पसंद का गीत आपको सुनवा रहे हैं, कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम
0: नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी। मैं लखपत रोड गांव सुहा हेड़ी कस्बा पुरकाजी जिला मुजफ्फरनगर से मोहम्मद जागीर बात कर रहा हूँ। जी
0: मोहम्मद जागीर।
1: मैम। जी
0: मोहम्मद जागीर जी, कैसे हैं आप?
1: मैम अच्छे हैं, आप बताइए आकाशवाणी परिवार में सब लोग कैसे हैं?
0: सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मौसम कैसा है वहाँ?
1: मैम आज मौसम इतना अच्छा था कि 6 से 7 बजे से करीबन 9 साढ़े 9 बजे तक बहुत ही अच्छी बारिश हुई है।
0: ओहो, अच्छा। और तापमान भी थोड़ा कम हुआ होगा, गर्मी थोड़ी कम हुई होगी।
1: जी मैम बहुत गर्मी थी कई दिन पहले, अब तापमान बहुत अच्छा चल रहा है आज की तारीख।
0: अच्छा मोहम्मद जागीर जी, बताइए कि घर परिवार में कौन कौन है?

0: करने की फसल बहुत अच्छी है। मैंने
1: बहुत अच्छी रहे आपकी फसल साल दर साल, यही दुआ हमारी। और गीत कौन सा सुनना चाहते हैं, कौन सा गीत चुन के लाए हैं आप?
0: मैं गीत सुन के लाया हूँ फिल्म प्रेम रोग,
1: प्रेम रोग फिल्म से।
0: और जी गीत के बोल हैं मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, देखते तेरा इंतजार करता।
1: अरे किसका इंतजार करते हैं आप?
0: मैम बस ये गाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पुरानी फिल्म है।
1: क्यों पसंद है आपको ये गीत?
0: मैम इस फिल्म के गीत बहुत अच्छे हैं और पुरानी फिल्म है, बस सुरेश वाडेकर जी की आवाज है बहुत प्यारी लगती है, तो
1: अच्छा
0: इसलिए पसंद है।
1: आवाज पसंद है आपको।
0: जी मैम।
1: और कौन कौन से
0: और
1: सिंगर्स पसंद है?
0: जी मोहम्मद रफी हैं, उनकी बहुत प्यारी आवाज है। महेंद्र कपूर जी हैं, और जो है सोनू निगम हैं, और जो है अपना किशोर कुमार जी, उनकी भी आवाज बहुत अच्छी है। लता मंगेशकर दीदी है, उनकी भी आवाज बहुत प्यारी है।
1: जी
0: सभी सिंगर पसंद है मैम।
1: अच्छा, तो मुझे लगता है संगीत की समझ अच्छी है आपकी।
0: जी
1: अच्छा ये बताइए कि जब कोई गीत सुनते हैं ना आप, तो सबसे ज्यादा आपको जिस चीज का प्रभाव होता है आप पर, वो क्या शब्द होते हैं, संगीत होता है या आवाज?
0: जी मैम, जैसे कि कोई दर्द भरा गीत हो और उसकी आवाज इतनी अच्छी लगती है कि बस वो दिल को छू जाता है मैम, और जी चाहता है कि बस सुनते ही रहे।
1: अच्छा कभी ऐसे भी हुआ है कि आपको शब्द समझ नहीं आए लेकिन संगीत इतना अच्छा लगा?
0: नहीं मैम, देखो जो पुरानी फिल्म के गीत हैं उनके शब्द सब समझ में आते हैं, जो आजकल की फिल्में हैं ना उनमें तो कोई खास समझ में आता नहीं है, लेकिन पुराने गीत हम बहुत अच्छा सुनते हैं।
1: नहीं, मैं ऐसे गीतों की बात कर रही हूँ जिनकी भाषा कुछ और होती है, जिसे हम नहीं समझ
0: हाँ
1: पाते, लेकिन
0: संगीत दिल को छू जाता है, संगीत उनके बहुत प्यारे होते
1: जी
0: हैं, ये बात है। मैं
1: जी जी जी तो आप मानते हैं ना कि संगीत जो है वो भाषा का मोहताज नहीं होता?
0: मैम संगीत ये की ऐसी चीज है, अगर आदमी कोई टेंशन में हो तो थोड़ी देर संगीत सुन ले तो उनकी टेंशन फ्री हो जाती है मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और आपकी पसंद का आपका ये
0: मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी ये बरसात की मौसम चल रही है
1: जी
0: और इसमें बारिश हो रही है, और मैं सभी दोस्तों से भाइयों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि बरसात के मौसम में बिजली के करंट उतरने का खतरा रहता है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इसलिए इसलिए बारिश के मौसम में बच्चों को घर से बाहर ना आने
1: बाहर
0: दें,
1: ना भेजें। बिल्कुल
0: अपने
1: बहुत
0: बच्चों का
1: अच्छी
0: घर,
1: बात आपने कही।
0: अपने बच्चों का घर पर ही ध्यान रखें।
1: बिल्कुल
0: जी मेरे एक दोस्त हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ताज मोहम्मद अंसारी हैं।
1: ताज मोहम्मद अंसारी जी।
0: जी मैम, तो वह मुझे जो है फरमाइश के माध्यम से, जो हम फरमाइश भेजते हैं उनके माध्यम से मुझे मेरे घर पर मिलने 2 बार आ चुके हैं।
1: क्या बात है। अच्छा
0: जी तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आकाशवाणी देहरादून का, जो हमारे में इस तरीके से प्यार मोहब्बत बढ़ता है
1: जी,
0: और
1: ये
0: एक
1: तो
0: दूसरे में जो
1: हमारे लिए
0: है
1: भी
0: दोस्ती
1: बहुत खुशी की
0: होती है।
1: बात है कि हमारे जरिए आप लोगों की आपस में दोस्ती होती है और इस तरह के जो रिलेशन होते हैं, इस तरह के रिश्ते कायम होते हैं।
0: जी मैम बहुत खुश हुआ मैं जब मुझसे मिलने आए मैं पहली बार, और उनसे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ।
1: हमारी यही दुआ है कि आपकी दोस्ती यूं ही बरकरार रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद मोहम्मद जागीर जी आपका कॉल करने के लिए। आपकी पसंद का गीत ये रहा आपके लिए।

0: हेलो फरमाइश।
1: रोने की सजा है ना रुलाने की सजा है, ये दर्द मोहब्बत को निभाने की सजा है। हंसते हैं तो आंखों से निकल आते हैं आंसू, ये उस शख्स से दिल लगाने की सजा है।
0: क्या बात है, क्या बात है, इतना दर्द भरा शेर। कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैम, मैं मोहम्मद जुनैद कुरैशी, गांव बुढ़ा खेड़ा, कातला, जिला सहारनपुर से बात कर रहा हूँ।
0: जुनैद कुरैशी जी, कैसे हैं आप? आपकी शायरी सुन के तो, आपके ये शेर सुन के तो लग रहा है थोड़ा दर्द में हैं आप।
1: जी मैम, बस दर्द में तो है, जिंदगी जी रहे हैं, बाकी हंसी खुशी है सब, कोई दर्द का उमाव नहीं है। बाकी मुझे हाँ शायरी बहुत दर्द भरी पसंद है मैम, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ और
0: जी
1: शायरी पढ़ता भी रहता हूँ गूगल ऐप पे मैम।
0: क्या बात है। अच्छा, दर्द होने भी नहीं चाहिए, खुशी खुशी आप रहें, खुश रहें, यही दुआ हमारी।
1: जी
0: अच्छा,
1: मैम,
0: ये बताइए जुनैद जी कि क्या करते हैं आप?
1: जी मैम, मैं फास्ट फूड का काम करता हूँ।
0: फास्ट फूड का काम करते हैं। अच्छा, आपका जूस का सेंटर भी है शायद।
1: जी मैम, वो अभी मैंने बंद किया हुआ है, बस अभी तो मैं फास्ट फूड का ही काम कर रहा हूँ मैं रमजान, जैसे रमजान रोजे चलते हैं मैम, मैं उनमें काम चेंज कर देता हूँ, फिर फरूट लगा लेता हूँ मैं।
0: अच्छा,
1: और मैम अब की बार तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी है क्योंकि कुछ रेडियो श्रोता मुझसे 2-4 रोज पहले मिलने आए थे मैम, और मुझे इतनी खुशी है कि रेडियो के माध्यम से हमसे दोस्त मिलने आते हैं और हमारी दोस्ती हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है मैम।
0: अरे अच्छा, अभी एक कॉलर का कॉल आया था तो उन्होंने भी यही बात की थी।
1: जब से हम रेडियो सुन रहे हैं मैम, हमसे बहुत लोगों से संपर्क हो चुका है, बहुत लोगों से हमारा मेल मिलाव हो चुका है और हमें बहुत अच्छा लगता है। और एक नकुड़ के पास गांव पड़ता है गुआन हेड़ा, और वहां से सानिया मलिक है, और ये मारूफ भाई है और उनकी सिस्टर है बड़ी मैम, उनका तो नाम मेरे याद नहीं, पर वे मुझसे मिलने आए थे यहाँ 2-4 रोज दिन पहले, और हमसे हमारा पता पूछते पूछते वो हम तक पहुंचे मैम, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ रेडियो के माध्यम से कि वो मुझ तक पहुंचे, और मुझे उनसे मिलके बहुत ज्यादा खुशी हुई मैम, बहुत ज्यादा।
0: अरे वाह, क्या बात है,
1: और
0: रेडियो से आप
1: वो
0: लोगों
1: हमारे
0: के।
1: घर पे भी गए थे मैम,
0: अच्छा
1: लेकिन
0: अच्छा
1: मैं घर पे नहीं था, मैं शॉप पे था अपनी, तो इसलिए वो पता पूछते पूछते मुझ तक पहुंच गए मैम, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और उनके आने का, और मुझे बहुत दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैम। सानिया मलिक जी है, गुआन हेड़ा।
0: जी। अच्छा जुनैद जी, जितनी खुशी आपको हो रही है ना, उतनी खुशी हमें भी हो रही है, क्योंकि बहुत अच्छा
1: जी
0: लगता
1: जी
0: है कि रेडियो के माध्यम से जो आप हमारे श्रोता हैं उनके बीच इस तरह के संबंध होते हैं, ताल्लुकात होते हैं,
1: जी जी
0: दोस्ती होती है,
1: जी मैम
0: तो हमें भी अच्छा लगता है ना। अच्छा, गीत कौन सा सुनना चाहते हैं आज आप?
1: जी मैम, सलामी मूवी से गीत है और कुमार सानू जी की आवाज में है, और इसके बोल है, लेकिन बिछड़े थे हम मेरे साथ दुआ करना, ये गीत के बोल है
0: क्या बात है, गा के सुनाया आपने।
1: जी। बिल्कुल मैम,
0: गाने का शौक रखते हैं?
1: जी बिल्कुल रखते हैं, और रेडियो के माध्यम से सभी शौक ये जो शेरो शायरी के गीत के हैं सब रेडियो के माध्यम से हुआ है मैम, और हमें बहुत अच्छा लगता है, और रेडियो से जो जानकारी, और आप लोग हमारे लिए प्रोग्राम को संवारते हो, सजाते हो और फिर हमारे लिए पेश करते हो मैम, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम।
0: जी, आप लोगों का शुक्रिया, आप हैं तो हम हैं, श्रोताओं के बिना हम क्या करेंगे ना। आप लोग हमारे प्रोग्राम्स को इतनी तल्लीनता से सुनते हैं, इतनी शिद्दत से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और मोहम्मद जुनैद जी,
1: और
0: आप
1: मैम कुछ दोस्तों के नाम,
0: बिल्कुल लीजिए।
1: और ये मोहम्मद जरीफ अंसारी साहब कस्बा चिलकाना से, रवि कुमार राहुल जी है, इलियास मंसूरी जी है कस्बा गंगो से, और मेरे बड़े भाई हैं मोहम्मद महबूब कुरैशी, मेरी भतीजी है अलीशा, और ये हमारे गांव से है मोहम्मद शहजाद गौर मैम, इनका कॉल कभी नहीं लगता है, तकरीबन 2-2.5 साल से कॉल लगा रहे हैं आकाशवाणी देहरादून में, पर इनका फोन नहीं लगता, और
0: ओहो,
1: मुझसे कहते रहते हैं कि मेरा कॉल तो नहीं लगता, आप तो लगा कर बैठ जाते हो भाई, ये तो अपना अपना लक है, जिसका लग गया तो लग गया।
0: लगेगा, उनका भी लगेगा,
1: जी
0: प्रयास करते रहेंगे तो बिल्कुल लगेगा।
1: मैम, और
0: और
1: मैं
0: ये जो नाम अभी आपने लिए, ये क्या आपके मित्र हैं या परिवार के सदस्य हैं? क्योंकि ये
1: जी मेरे
0: ज्यादातर हम ये जो भी फरमाइशी प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम ये नाम सुनते हैं।
1: जी मैम, ये सब मेरे दोस्त हैं और ये रेडियो के माध्यम से ही इन लोगों से संपर्क हुआ है मैम मेरा, क्योंकि
0: अच्छा
1: मैं इनको जानता तक नहीं था, और आज मैं इनसे मिल भी सकता हूँ, इनका फोन नंबर भी है, कांटेक्ट कर सकता हूँ, सब रेडियो की देन है मैम, मैं रेडियो का बहुत बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने अच्छे अच्छे दोस्त हमें दिए रेडियो ने।
0: जी, शुक्रिया आपका, आप जैसे सभी श्रोताओं का, हमारे सभी श्रोताओं का।
1: जी मैम, और मैं एक शायरी के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। प्यार वो दरिया है जिसका साहिल नहीं होता, हर कोई मोहब्बत के काबिल नहीं होता, रोता वो भी है जो डूबा हो प्यार के दरिया में, और रोता वो भी है जिसे प्यार हासिल नहीं होता।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है। और आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं आपको, कॉल करने के लिए
1: शुक्रिया
0: आपका
1: मैम।
0: शुक्रिया, धन्यवाद।

हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सो ही जाएंगे। अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ श्रोताओं, अब रात के इस नर्म और पुरसुकून मोड पर आपसे विदा लेने का समय आ गया है। अब आप भी अपनी आंखों में कुछ मीठे मीठे से ख्वाब सजाइए और हमें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अलविदा कहिए। लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़कर अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं हर गुरुवार शाम 4 से 5 बजे तक। फोन नंबर है 7088001382। नंबर एक बार फिर 7088001382। और आपके अपने इस कार्यक्रम हेलो फरमाइश का प्रसारण किया जाता है हर शुक्रवार रात 10 बजे से। तो अब अपनी रेडियो दोस्त पुष्पा पुंडीर को दीजिए अनुमति। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगू।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242।
1: ओ, 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर।
0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
4: India's development assistance.
5: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
3: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
6: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
3: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट बीएमएस इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।